0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: शंभो। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आज मैं श्रावण मास में भगवान शिव और नवग्रह के पूजा का महत्व मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। नवग्रह और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व अपरंपार कहा गया है। हिंदू धर्म में नवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु मनुष्य के जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को नवग्रह के भी अधिपति और कल्याणकारी देव माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी शांत करते हैं और जीवन में सुख शांति तथा संतुलन आता है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप तथा शिव स्तोत्रों का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। श्रद्धा से की गई शिव आराधना से मन की शुद्धि होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों के संबंधित कठिनाइयां हो तो श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय जप और शिवलिंग पर गंगा जल आदि जल का अभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण करना, दूध और काला तिल से अभिषेक करना, ये सब भगवान शिव जी की आराधना करना, ऐसा विश्वास है कि इस ग्रह जनिक कष्टों में से राहत और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव सभी देवताओं में अत्यंत करुणामय हैं और भोलेनाथ कहलाते हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस श्रावण मास में शिव आराधना को केवल ग्रहों की शांति का ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति, सकारात्मक जीवन, स्वास्थ्य, सुख और मोक्ष की दिशा में भी महत्वपूर्ण साधन माना गया है। और भगवान शिव की आराधना करने में हम हमारे घर से भी जल लेकर शिवालय में शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके कोई भी शिव स्तोत्र का या तो महामृत्युंजय मंत्र का या तो पुराणोक्त मंत्रों का हम मंत्र से भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करें तभी हमारा ग्रह दोष निवारण होता है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। कामो हि नरकायेन तस्मान् क्रोधे अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहो मोयास्तं भ्रशन्ते तप। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप विनष्ट हो जाता है। कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगम त्रव्यादि उदात्मनाम लभे धनम श्रेमंगा मोचयेत लोह दारुणमस्य पश्ये दृढ़ाम बुद्धि सोपी मुंचयेत स्वस्तम दीपाशम शंभो मुंचते न कदाचन वंदते विषया स्वस्वास्थमालब्ध निकारिणः।

0: विषयद्विद्यायनाम नहो विषयो हितम् जनो विषय विन्याम साकहम् वार्ताम् पतितेक्षणम् विषय प्राहुचाराय सीतालिप्त द्रवणे रणे। संसार में बहुत से कुसंग है, परंतु उनमें स्त्री संग सबसे बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार के संबंधों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, किंतु स्त्री संग से उसका छुटकारा नहीं होता। लोहे तथा लकड़ी के पाशों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष उसके छुटकारा पा सकता है, किंतु स्त्री आदि के पास में बंधन हुआ कभी मुक्त नहीं होता है स्त्री संगत से। महाबंधनकारी विषय निरक्तन बड़े रहते हैं। विषयों से आक्रांत मन वाले वाले स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। यदि बुद्धिमान पुरुष सुख प्राप्त करना चाहे तो विषयों को भली भांति छोड़ दें। जिन विषयों से प्राणी मारा जाता है वे विषय विष के समान कहे गए हैं। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम वीनान पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री राम दूताय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिव

ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज वेनेसडे 5 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। शिव सती चरित्र जो बालकांड में इसका वर्णन हुआ है, इसका हम पाठ कर रहे हैं। चलिए, कल जहाँ से विराम लिया था हम लोग वहीं से आगे बढ़े और आज हम लोग बालकांड दोहा संख्या 51, दोहा नंबर 51 से आगे बढ़ते हैं।

देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे?

फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद

0: संशय असन धिये रही उरकाओ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, परंतु अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। चलिए आज इसको यही विराम दें, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र। ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेच्छतम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रिय श्रोताओं, इस वेद मंत्र के अंदर हमको क्या शिक्षा दी है? हमें परमात्मा ने दो पंख दिए, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं ना, एक ज्ञान का और दूसरा कर्म का। इन दोनों के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। परमात्मा ने वेदों के अंदर ज्ञान दिया, कर्म कैसे करने हैं ये शिक्षा भी हमें दी है। यहाँ पर कहा गया है इस मंत्र में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, अर्थात इस संसार में अय मनुष्य अच्छे कर्मों को करता हुआ, वैदिक कर्मों को करता हुआ जीने की इच्छा कर। जीजी विषेद माने जीने की इच्छा करनी चाहिए। हम केवल इच्छा मात्र कर सकते हैं, कितना जीना है, कैसा जीना है, ये सब भगवान के ऊपर हम छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें जीवन में जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितने वर्षों तक? तो वेद में बताया है शतम समाह, 100 वर्षों तक। अर्थात वेद में अन्यत्र भी ये प्रार्थना की गई है, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतम, अधीनास्याम शरद शतम। अर्थात 100 वर्षों तक देखें, सुने, जीवन में अधीन बन करके रहें, भूयश्च शरद शतात, और हमारी दिनचर्या अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्षों से भी ऊपर जियो, जीने की इच्छा करो, लेकिन कर्म करते हुए। कर्म कैसे करने हैं? वेदोक्त कर्म करने हैं, धार्मिक कर्म करने हैं, अच्छा सोचना है सबके लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता के अंदर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्मों को करते हुए, और ये न सोचें कि फल कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, इसलिए कर्म के ऊपर फोकस होना चाहिए, अच्छे वेदोक्त हों, धर्म के अनुकूल हों। इस प्रकार से जो कर्मों को अपने जीवन में करता रहता है तो वो संसार में आगे बढ़ता है। एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति, अर्थात इससे भिन्न तो और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है। जीवन को जीने के लिए हर पशु पक्षी, सारा संसार देख रहे हो आप, गतिमान है। बिना गति के, बिना कर्म के दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता। तो कहते हैं ना भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये कर्म हमको करने ही है, यज्ञ करना है। यज्ञ का मतलब है अच्छे कार्य, दान भी देना है, तप का मतलब है अच्छे कर्मों को करने में जो भी कठिनाई हो उसको सहन करने का नाम तप है। तो कृष्ण कहते हैं गीता के इस श्लोक में, यज्ञो दानम तपश्चैव, ये हमारे जीवन के अंदर पवित्रता भरने वाला है। तो ऐसा करते हुए हमें ये मंत्र शिक्षा देता है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम यत सूर्य उदीत्यस्तम् यत्र च गच्छति तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठम् तदुनातीति किंचन। जिस परमात्मा ने सृष्टि समय से सूर्य आदि उत्पन्न होते हैं, प्रलय काल में वे सब जिसमें लय हो जाते हैं, उस महान की उपासना सब लोग करें। ओ

वदन्ति आदित्यमेवते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्। जो परमात्मा तीनों काल तीनों लोक में वर्तमान और सत्य जानी है उसको विवेकी जन वेद विहित कर्म उपासना और ज्ञान से प्राप्त होकर मुक्ति सुख भोगते हैं। ओम सहस्राण्यम वियताव वस्य पक्षौ हरिहंस्य पतत स्वर्गम सदीवां सर्वानुरसुपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा। जैसे परमेश्वर अंतर्यामी रूप से अनंत कार्य कारण रूप जगत की निरंतर सुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का विचार करता हुआ कामों में सदा सावधान रहे। ओम सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणार्वां विपश्यति प्राणेन तिर्यं प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमधिष्ठितम्। जो मनुष्य अपने में परमात्मा को देखता है वह सत्य व्रत धारण करके ज्ञान द्वारा आत्मबल प्राप्त करके उपकारी होकर जीवन सफल करता है। ओ

निर्मथ्यति वसु सविद्वान् ज्येष्ठं मन्येत सविद्याद् ब्राह्मणं महत। जैसे लकड़ियों को रगड़कर आग निकालते हैं, वैसे ही विद्वान कार्य कारण की सूक्ष्मता को समझकर परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओ

0: तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ते ये केचात् महनो जनाः।
1: जो अपनी आत्मा का हनन करता है, अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है, अपने धर्म का तिरस्कार करता हुआ अपराध व पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, वह मरकर असूर्या नाम वाले लोक में बार बार जन्म लेता है, जहाँ न सूर्य का प्रकाश होता है और न ही ज्ञान व विद्या का प्रकाश। आत्मा के हनन करने वाले लोग घनघोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और दुखरूपी बंधन को प्राप्त होते हैं। आत्महत्यारे को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, वे अंधकारमय लोक में भटकते हुए अपने पाप कर्म का फल भोगते हैं।
0: ओम सरस्वती देवयन्तु हवन्ते सरस्वती वद्वरेतायमाने सरस्वती सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्।
1: स्त्री पुरुष विद्या की उपासना करके ही विदुषी और विद्वान बनते हैं। उस विद्या के द्वारा वे अनेक साधन और योजनाओं की रचना करते हैं। उन्हीं विशेष साधनों द्वारा विद्या का विस्तार होता है। विद्या से ही सबकी उन्नति होती है। हम विद्या द्वारा पुरुषार्थी बने, लगन और परिश्रम से विद्या अर्जित कर सबके सुख के लिए परोपकारी बने। विद्या से सुख साधन की प्राप्ति होती है। विद्या देवों को बुलाकर उन्हें शरण देती है।
0: ओम मिमी श्लोकम आस्य पर्जन्य इव तत्तरः गाय गायत्रम उक्तयम्।
1: हे विद्वान मनुष्यो, अपने मुख में स्वाध्याय द्वारा सुमधुर वाणी का निर्माण कीजिए। अपने मुख से वेद की शिक्षा से युक्त वाणी का प्रयोग कीजिए। उस वाणी को पर्जन्य इव, जैसे मेघ वृष्टि करता है, जैसे बादल सबके कल्याण के लिए जल बनकर बरसता है, वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि वे गायत्री आदि वेद मंत्रों को उपदेश के माध्यम से फैलावें। वेद में पाए जाने वाले ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुँचावे। वेद वाणी के स्वाध्याय से जो ज्ञान आपको प्राप्त हो, आप उसे ऐसे फैलाएं जैसे बादल वर्षा फैलाता है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: Hi, this is Radio Voices.
2: 您好
3: ，Assalamualaikum。
4: நமஸ்கார்
5: ஸ்ரோத்ரேந்திரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
0: ரேடியோ மொரிஷியஸ்
7: 819 kHz, யே ஹே ரேடியோ மொரிஷியஸ். ரேடியோ மொரிஷியஸ்
8: புதுவார் 5 அகஸ்ட் கடை மிலா லீஜியே சவரே கே 6 பஜ் ரஹே ஹே.
9: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
10: नमस्कार पूनम, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होगी, ये संदेश प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल शाम दिया। वे ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में मॉरिशस तेलुगु महासभा की 80वीं वर्षगांठ के अवसर

0: स्तर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट में मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर चिंता जताई गई है। सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता ऋण का अनुरोध किया है। 23 बिलियन रुपए से ज्यादा का ऋण दो चरणों में मिलेगा। कल दोपहर बाद लाप्रेरी में एक हाइड्रोप्लेन हादसे में 25 साल के पोलैंड के एक पर्यटक की मौत हो गई। वहीं बोबासे के रहने वाले पायलट को पुलिस के पहुंचने से पहले ही हाइड्रोप्लेन का संचालन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बचा लिया। गंभीर रूप से घायल पायलट को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। कोरल ब्लीचिंग के बीच मॉरिशस के अध्ययन से नई उम्मीद जागी है। कोरल रीफ्स के पुनर्स्थापन से 77% से ज्यादा जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। समुद्री तट, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए कोरल रीफ्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विदेश में ईरान समझौते की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। मस्करेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं और पूर्व से आने वाली अस्थिरता से जुड़े बादलों का असर आज दिन से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और दोपहर बाद को भी पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को बादल घिराएंगे। पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 और साहिली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:37 पर और शाम 5:53 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की मुख्य खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ RM3 ہے پرویزا کا ساتھ ہے اردو نشریات بنام سبا الخیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت سے ہوں گے روشنیوں، رحمتوں اور برکتوں سے سجی اس سے خوبصورت نشریات میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید سامعین، یہ وہ لمحات ہیں جب دل ذکر الہی سے منور ہوتے ہیں، روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ تو آئیے مزید سامعین، اس سے روح پرور محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کا بابرکت کلام سے، جو سراپا ہدایت اور سراپا نور ہے۔ بغور و با ادب سماعت فرمائیے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है।

अहले ईमान अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से ना बोला करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है।

ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

मोमिनों, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े।

और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राह हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है।

और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो, फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए, बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए।

मोमिनों, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों, और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ, और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं।

अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बास गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो। और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है।

लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सबसे खबरदार है।

देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए फिर शक में न पड़े और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, यही लोग ईमान के सच्चे हैं।

0: इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो, और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए, कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है।
1: सदकल्लाहुल अजीम। हकीकत ये है कि जब कलाम पाक सुनने को मिलता है तो दिन की शुरुआत हो या शाम का वक्त, दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है। मज़ीद सामीन, क़ुरान की तिलावत करने से दिल के जंग को दूर करता है और रूह को बालीदगी बख्शता है, यहाँ तक कि क़ुरान को खामोशी और तवज्जो से सुनने पर अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं। मज़ीद सामीन, क़ुरान पढ़ना इंसान की ज़ाती इस्लाह है, सुनना रूह की शिफा है और सुनाना खैर व हिदायत को फैलाने का ज़रिया है। अल्लाह हम सब को तौफीक दे, आमीन। अब वक्त हो चला अपने मालिक व खालिक की हम्द व सना का, एक ऐसी ज़ात जो हर चीज़ पर कादिर है और जिसकी रहमत हर शय पर हावी है।

अल्लाह पाक लामहदूद और अजमत वाला है। वो हाकिमों का हाकिम है, जिंदा को मुर्दा कर सकता है, बीमार को सेहतमंद और सेहतमंद को बीमार। खुदाए जुलजलाल एक है, उसकी ज़ात वहदहु ला शरीक है। ये और एम फ्री है, परवीज़ा का साथ है, उर्दू नशरियात सब अल खैर में दिन के 7 बजे तक। मज़ीद सामीन, ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हर दरवाज़ा बंद महसूस होता है, रिस्क में तंगी आ जाती है, दिल परेशान होता है और आँखें बेख्तियार हो जाती है, मगर एक मोमिन कभी नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब हर हाल में उसके साथ है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमें 5 अजीम नेमतें अता फरमाई हैं, सब्र, शुक्र, नमाज, इस्तग़फ़ार और दुआ। मज़ीद सामीन, यही वो खजाने हैं जो मायूसी को उम्मीद, तंगी को आसान

0: आने और बेचैनी को सुकून में बदल देता है। तो आइए इन्हीं मौजू पर आज का ईमान अफरोज बयान सुनते हैं, समाअत फरमाइए।
1: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को दारुल आजमाइश बनाया है। हर इंसान हर हाल में हालते आजमाइश के अंदर है।

लेकर आजमा रहे हैं, किसी से लेकर आजमा रहे हैं, इसी तरह किसी को सेहत दे के आजमा रहा है और किसी को बीमारी देकर आजमा रहा है, किसी को अल्लाह रिज की कुशादगी देकर आजमा रहा है और किसी को अल्लाह रिज की तंगी देकर आजमा रहा है, इसी तरह किसी को अल्लाह औलाद देकर आजमा रहा है और किसी से अल्लाह औलाद की नेमत वापस लेकर या औलाद की नेमत से महरूम रख कर आजमा रहा है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश का निज़ाम बनाया है, बलाओं का, वबाओं का, तकलीफों का निज़ाम है कि परखा जा सके कि कौन मुखलस है और कौन मुखलस नहीं है, यानी हमारे ईमान को मापा जा सके, तोला जा सके। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन आमाल का निज़ाम भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सल से हमें अता किया है कि जब कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए तो उसमें से निकलना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सबरी वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई रंज आ जाए तो ईमान वालों तुमने क्या करना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सबरी वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करते रहो, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कहीं रब फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बु सबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। पहला काम क्या है कि हमने सब्र करना है। दूसरा काम क्या है कि सलातो तोबा, सलातुल हाजत का एहतमाम करना है। किसी तरह की भी कोई परेशानी आ जाए तो पहले तो ये दो आमाल करने हैं जिनका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में दिया है। इन दो आमाल के जरिए अल्लाह से मदद तलब करनी है कि या अल्लाह जिन हालात के अंदर मैं पकड़ा हूं या जकड़ा हूं तो मेरे लिए आसानी वाला मामला फरमा दे। जब सबर और नमाज के जरिए दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का वादा है कि मदद आ कर रहेगी, मदद आ कर रहेगी, जिन हालात के अंदर हम हैं उन हालात से अल्लाह निकाल कर दिखाएगा। बेशक नाकामी के हालात हैं, अल्लाह कादिर है नाकामी में से कामयाबी को निकाल कर दिखाएगा। इस तरह हालात जिल्लत वाले हैं तो अल्लाह जिल्लत में से इज्जत निकाल कर दिखाएगा। शर्त यह है कि जो तरीका अल्लाह ने बताया हम उस तरीके पर रहें, ये नहीं कि हम मलंगों के पास दरगाहों पे चले जाएं, उल्टा सीधा तवीज धागा जो है वो शुरू कर दें, या फिर घर बैठे ही वावेला शुरू करें, अल्लाह की शिकायतें लगाना शुरू कर दें। जितना वावेला करोगे, जितनी भाग दौड़ गलत रस्तों पे करोगे, उतनी आजमाइश या उतनी अल्लाह की पकड़ लंबी होती जाएगी, यानी उसका दुरानिया बढ़ता जाएगा। घर बैठे जितना सब्र शुक्र करेंगे और अल्लाह से मदद भी करें मांगेंगे आमाल के जरिए, यानी नमाज के जरिए, सबर के जरिए, दुआ के जरिए, सदके के जरिए अल्लाह से मदद भी मांगते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो राहें सुलझाएगा, अल्लाह हदायत अता फरमाएगा। जहां हमारी बिगड़ी बननी है या हमें शिफा मिलनी है या हमारी झोली में खैर डलनी है, अल्लाह उन रस्तों को आसान कर देगा, अल्लाह उन रस्तों पर हमें चलाएगा, तो यूं हम आसानी से आजमाइश में से निकल जाएंगे। जब बेसब्री का मुजहरा किया जाता है या उन रस्तों पे चलने की कोशिश की जाती है या चला जाता है जो रस्ते अल्लाह को पसंद नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो आजमाइश या वो पकड़ फिर लंबी होती जाती है, यानी उसका दौरानिया लंबा होता जाता है, अल्लाह की मदद नुसरत नहीं आती। जबकि रब ने क्या वादा किया है, फइन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा, कि बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। जब भी तंगी आएगी, जब भी कोई बुरा वक्त आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, माली तंगदस्ती आएगी, कोई भी मसला आपको दरपेश होता है तो अल्लाह ने क्या वादा किया है कि अगर तंगी आ गई है तो अब आसानी आकर रहेगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही बात को दो बार दोहराया है, एक ही बात को दो बार दोहराया है, फइन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। तो उलमा ये फरमाते हैं, मशायख ये फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ग़ज़ब के ऊपर गालिब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता उसकी पकड़ के ऊपर गालिब है,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर एक तंगी देगा फिर दो आसानियां भी देगा, अगर एक दुख देगा तो दो खुशियां भी देगा, दो सुख भी देगा। शर्त क्या है कि जो दुख

अल्लाह ने दिया है उसके अंदर सबर कर ले। अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर तो आप हैं बीमार, यानी बीमारी के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजमा रहा है, तो आपने क्या काम करना है? नमाज की पाबंदी करें, जो नमाज पंजगाना फर्ज है उसकी पाबंदी करें, दुआओं का एहतमाम करें और सबर करें। साथ जो अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है वो अमल करें, बजाय के मलंगों के पास जाके गलत तवीज धागा करें या रसाले किताब या यूट्यूब से लेकर गलत वजायफ करें और आपकी बीमारी बढ़ती जाए, मर्ज बढ़ता जाए, जू जू आप इलाज करते जाएं आपकी जिंदगी उलझती जाए। तो वो तरीका हमने अख्तियार करना है, असबाब के दर्जे में भी, तदबीर के दर्जे में भी, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाया है। बीमार खुद हैं या घर में कोई अजीज बीमार है या कोई छोटा मासूम बच्चा जो है वो बीमार है, आपने क्या करना है? एक गिलास पानी का लें, उस पे 40 बार आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। हर बच्चे बच्चे को ये आयत मुबारक आती है, जिसने कुरान नहीं पढ़ा हुआ उनको भी ये आयत मुबारक आती है, क्योंकि इतनी मारूफ ये आयत मुबारक है। 40 बार आयत करीमा पढ़ के अव्वलो आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, उसको पानी पे दम करके वो पानी, अगर तो आप खुद मरीज हैं तो वो पानी आप पी लें, इस तरह अगर कोई दूसरा मरीज है तो वो पानी दम करके उसको दे दे, अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता तो। अगर वो खुद पढ़ सकता है तो वो खुद पढ़े, उसकी अलग फजीलत है, उसका मैं जिक्र अभी करता हूं। अगर तो आप खुद पढ़ रहे हैं तो पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपना ऊपर से नीचे सारा उतारा करें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, शैतानी असरात हैं, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। जादू टूना या काली नजर की वजह से आप बीमार हुए हैं तभी अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और जब आप पानी पे दम करके, यानी 40 बार आयत करीमा पानी पे दम करके ये पिएंगे, जब वो पानी पूरे जिस्म के अंदर जो है वो जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, तो खुलिए खुलिए के अंदर सेल, हर सेल के अंदर जो बीमारी है या जिन्नाती असरात हैं या जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे, तो इंशाल्लाह अजीज आप सेहतियाब हो जाएंगे। इसी तरह कोई आपका अजीज है, वो इस हाल के अंदर है कि वो पढ़ नहीं सकता, तो आप उसको पढ़ कर दे सकते। इस तरह कोई मासूम बच्चा है तो वो पढ़ नहीं सकता, तो मां बाप या कोई भी बड़ा या कोई भी उनका प्यारा उनको पढ़कर दे सकता है। ये तो हो गया अमल का तरीका। अब हदीसे पाक क्या है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, जिसने हालत बीमारी के अंदर, हालत मर्ज के अंदर 40 बार आयत करीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नसीब में शिफा लिखी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नसीब में शिफा लिखी है, तो इस आयत करीमा की बरकत से अल्लाह उसको शिफाए कामला आजला अता फरमा देगा। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नसीब में इसी बीमारी के अंदर मौत लिखी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मौत तो देगा, क्योंकि वो तकदीर के अंदर लिखी है, लेकिन साथ उसको शहीदों की सफ में शामिल करेगा, यानी जो हालते मर्ज में आयत करीमा 40 बार पढ़ लेगा, अगर वो मर गया, शिफा नहीं मिली, मर गया, उसकी तकदीर में मौत लिखी थी, मर गया, तो अल्लाह मकामे शहादत अता फरमाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नसीब में, उसकी तकदीर में शिफा लिखी थी, सेहत लिखी थी, तो अल्लाह सेहत भी अता फरमाएगा, और जब वो बीमारी से निकलेगा अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे उसकी माँ ने आज जन्म दिया, यानी अल्लाह सारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत दो दो नफे दे रहा है, अगर मर गए तो मकाम में शहादत है, अगर बच गए तो सेहत भी मिल जाएगी और साथ यह गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अगर तो हैं आप बीमार, या भालते बीमारी में आपकी आजमाइश हो रही है, या घर में कोई अजीज बीमार है, तो फिर ये अमल आपने करना है, फिर ही अमल करना है। अगर कोई और तकलीफ है, जिस तरह बेटियों का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्चे ना फरमान है, या उनका कोई रोजगार नहीं है, या जादू के मसाइल हैं, जादू का इलाज करते हैं या करवाते हैं फिर जादू हो जाता है, या कोई और तकलीफ है, कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं, माली तंग दस्ती है, इस तरह के मसाइल ने आपको घेरा हुआ है, या कोई जायदाद बेचनी है, खरीदनी है, वो बिक नहीं रही, आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के असबाब पैदा नहीं हो रहे, इस तरह आपके ऊपर कर्ज है, या किसी से आपने कर्ज लेना है, अब वो जिससे लेना है वो देता नहीं है, और जिसका देना है वो आपको छोड़ता नहीं, यानी कोई परेशानी बीमारी के अलावा है, तो उसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अलग अमल तलकीन फरमाया। उसमें आप क्या करेंगे? दो सजदे आपने सिर्फ करने हैं। कितने?

सजदे, हर सजदे में आपने 40 बार आयत करीमा पढ़ने, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन। अब उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप बावजू होके, क्योंकि सजदा वजू के बगैर नहीं होता, आप बावजू होके खड़े हो जाएंगे, यूं हाथ नहीं बांधने, ना तकबीरे तहरीमा कहनी, कुछ भी नहीं कहना। जिस तरह हम रुकू में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द। अब इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाते हैं, वहां से अमल शुरू होगा। उससे पहले पहले जो कुछ होता है वो नहीं करना। आप सीधे खड़े होंगे, हाथ भी ऐसे ऊपर या निकलने, हाथ आप कैसे ही होंगे, सीधे आप सजदे में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर। तो सजदे में जाके पहले तस्बीह सजदा पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल आला, 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे आपकी आदत है तस्बीह सजदा पढ़ने की वो आप पढ़ें। उसके बाद 40 बार आप आयत करीमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। उसके बाद सजदे से सर उठाएंगे, फिर अगले सजदे में चले जाएंगे थोड़ा सा वक्फा देके। तो यूं 2 सजदे आप करेंगे, दोनों सजदों में आप पहले तस्बीह सजदा पढ़ेंगे और दोनों सजदों में 40-40 बार आप आयत करीमा पढ़ेंगे। जब आप दूसरे सजदे से उठ गए, बस अल्लाहु अकबर कह के आपने बैठ जाना, कोई सलाम नहीं, कोई कुछ नहीं, इंतहाई सादा अमल है। मैंने आपको डेमो भी दे दी, करने का तरीका भी बता दिया, ना खड़े होना है, ना बैठना है, ना उठना है, ना सलाम है, ना तकबीर तहरीमा है और ना ही कोई रुकू है, सिर्फ 2 सजदे। इसी तरह मैंने जैसे बताया कि आपने वजू किया, वजू करके आप खड़े हो गए, अगर आप बैठे कुरान पढ़ रहे हैं वैसे ही आपका वजू है, तो बैठे बैठे आप सजदे में चले जाएं, अल्लाहु अकबर, तस्वीर सजदा पढ़ें, 40 बार आयत करीमा पढ़ें, उसके बाद आप खड़े हो जाए यानी बैठ जाए, बैठने के बाद आप दूसरा सजदा जो है वो आप करें और तस्वीर सजदा पढ़ें और 40 बार आयत करीमा पढ़ें, अल्लाहु अकबर, सजदे से आप उठ जाएंगे। ये हजूर अलैहिस्सलाम ने जो अमल बताया है ये अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप 1 तस्बीह इस्तग़फ़ार की करें, बाज रवायत में आया है 70 बार, बाज में है 100 बार, तो आप एहतियात के जुमरे में आप 100 बार इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली, या रब्बनाग़फिरली रब्बनाग़फिरली, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, या अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु इलैही। यानी इनमें से कोई सीगा आपको आता है या जितनी आपको फुर्सत है आप 100 बार इस्तग़फ़ार करें, 100 बार कमली वाले पे दुरूद पढ़ें, या 70 बार इस्तग़फ़ार करें और 70 बारी कमली वाले पे दुरूद पढ़े, उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो मांगोगे अल्लाह अता फरमा देगा। तो 2 तरह की आजमाइश होती है ना, एक जान के ऊपर होती है और एक माल के ऊपर होती है। तो जो जान के ऊपर आजमाइश आई उसमें क्या करना है वो मैंने पहले आपको बता दिया, अल्लाह के नबी का फरमान आप तक पहुंचा दिया। अगर जान के ऊपर आजमाइश आ गई है, आप बीमार हो गए, आपका कोई अजीज बीमार हो गया, तो आप आयत करीमा 40 बार पढ़ के पानी पे दम करके पिए भी और अगर कोई है तो उसे पिलाएं भी। इसी तरह 40 बार जो आयत करीमा पड़ा हुआ है अपने पर फूंकें भी, ताकि बाहर भी आपका साफ हो जाए, जब पानी पिएंगे तो आपका अंदर भी साफ हो जाएगा। अगला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए अगर आप तवज्जो के साथ सुन लें कि ये अमल कितनी बार करना है। ये अमल बार बार करना है, ये अमल दिन में 100-100 बार कर सकते हैं। क्यों? जब तक हम उस आजमाइश से निकल नहीं जाते, चाहे वो हमारी जान पर आई है चाहे वो हमारे माल पर आई है, इसकी कोई तादाद नहीं है। दिन में ये अमल 5 बार करें, हर नमाज के बाद करें, दिन में ये अमल 2 बार करें, सुबह शाम करें, 3 बार करें, इसका इन्हिसार है आपके संजीदा होने पे, ठीक है, कि आप कितने संजीदा हैं, मसला अपना हल करना चाहते हैं, कितने मुखलस हैं के मसला अपना हल करना चाहते हैं, या आप कितनी तकलीफ में आप मसला हल करना चाहते हैं, या तकलीफ का दर्जा क्या है, शिद्दत क्या है। अगर शिद्दत ज्यादा है दिन में 3-4 दफा करें, शिद्दत कम है तो दिन में 2 दफा भी काफी है। इसी तरह आप किसी मुसीबत के अंदर फंसे हैं, यानी माल के ऊपर आजमाइश आ गई है, बच्चों का मसला है, अपनी जात का मसला है, जिस तरह मैंने कहा कि घर में लड़ाई झगड़े हैं, जादू है, नौकरी का मसला है, रिश्तों का मसला है, तो बजाय के टेढ़े मेढ़े वजाए शरायत के बगैर करो, जिंदगी उलझ जाए और आप बाद में रज्जत का शिकार हो, जो खुद भी मरो अपने साथ वालों को भी मार दो। तो उसके लिए अमल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को अता फरमाया वो क्या है कि 2 सजदे करने, दिन में 20 बार करो, हर नमाज के बाद आदत बना लो, जब नमाज पढ़ी मामूल की फर्ज, उसके बाद 2 सजदे बस कर ली, तो
हर सजदे के अंदर मैंने क्या कहा कि पहले तस्बीह सजदा पढ़ेंगे 3 बार 5 बार 7 बार, उस

उसके बाद 40 बार आपने आयत करीमा पढ़ना है, दो सजदे करके उसके बाद अल्लाह से मांगो, जो आप मांगना चाहते हैं अपनी परेशानियां तकलीफें हैं उनको अल्लाह की बारगाह में जो है पेश करो, अल्लाह सोना जो अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जुल्फों के सदके आसानी वाला मामला फरमा देगा। ये तो मसनून आमाल हैं या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अता करदा तरीके हैं। माल पे आजमाइश आए तो सजदे वाला अमल करना है, और अगर जान पे आजमाइश आए तो पानी वाला दम करने वाला अमल करना है। ये दोनों मैंने बता दिए, और दोनों के अंदर जो तादाद है आयत करीमा पढ़ने की वो कितनी है? 40। अमल का असूल ये होता है, यानी अमलियात के जो बुनियादी असूलो जवाबत हैं उन बुनियादी असूलो जवाबत में से एक असूल ये है कि अमल की एक खास तादाद होती है, जिस तरह मेडिकल के अंदर अद्वियात की एक पोटेंसी होती है, इसी तरह अमलियात के अंदर, क्योंकि ये रूहानी इलाज की अद्वियात हैं, इसके अंदर एक तादाद होती है। ये जो आज पीरों ने काम बना दिया है, खुला पढ़ो दिन रात पढ़ो, अल्लाह वालों अमलियात के अंदर खुला पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है, खुला सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है, इन्हें अल्लाह के जिक्र और अमलियात यानी वज़ाइफ का भी इल्म नहीं है। कोई भी वजीफा होगा उसके साथ शरायत होंगी, उसका एक तरीकाकार होगा, उसकी एक तादाद होगी, उसकी एक साथ होगी, उसकी इजाजत जरूरी है, उसके दिनों का तयन होगा, कितने दिन पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, खत्म कब करना है, खत्म करने के बाद फिर कितनी तादाद तकरार करनी, सारी जिंदगी पढ़नी, ये पूरा एक तरीकाकार एक प्रोटोकॉल होता है। अल्लाह का जिक्र जो होता है उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई शरायत नहीं है, दिन रात करो। तो इन्होंने औरादो वज़ाइफ को बना दिया जिक्र, और जिक्र बना के उम्मत में चूरन बेच दिया। अब उम्मत ये समझ के राजी नहीं है, वो ये कहती है कि ये अल्लाह का जिक्र है, जबकि वो अल्लाह का जिक्र नहीं है, वो जिक्र के दर्जे में नहीं आता, वो आता है औरादो वज़ाइफ के दर्जे में। अल्लाह का जिक्र और अमल है, इस तरह कुरान की तिलावत और अमल है। और हमें चूरन क्या बेचा गया 12 सदियों में, ये कुरान पढ़ो जी वो भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह अल्लाह करो वो भी अल्लाह का जिक्र है, और औरादो वज़ाइफ करो वो भी अल्लाह का जिक्र है। तो इसलिए अवाम बात को समझती नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बातें दोबारा आज दोहराई हैं कि अगर आप तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे तो आप इस अमल की हय्यत को बदल देंगे, शराइत को तोड़ देंगे। जब आप आयत करीमा 40 बार पढ़ेंगे और उसी तरीके पे पढ़ेंगे जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमल हमें अता किया है, तब तो ये अमल हजूर अलैहिस्सलाम का रहेगा और उनकी इजाजत खास हर उम्मती को है क्यामत तक, फिर तो हो गई बात खत्म। जब आप आयत करीमा पढ़ेंगे 39 बार या आयत करीमा पढ़ेंगे 41 बार, फिर ये अमल हजूर का अमल नहीं रह जाएगा, ये अमल नफली अमल बन जाएगा, फिर इसके नफे के और नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे या जो आपको करवार है वो नफे और नुकसान का जिम्मेदार होगा। जो सुन्नत तरीका है या जो अहादीस मुबारक है वो मैंने पहले बयान कर दिए। अब अगर आप में से कोई ये चाहे कि बीमारी की शिद्दत बहुत ज्यादा है या मैं आयत करीमा ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, मैं मरीज के पास बैठा हूं या मेरी घर में फलां तकलीफ है, मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, जादू का मारा हूं, तो जब आप इसकी तादाद को 40 से बढ़ाओगे तो ये अमल मैंने क्या कहा कि ये फिर सुन्नत के मुताबिक नहीं रह जाएगा या हदीस के मुताबिक नहीं रह जाएगा, इसमें हजूर की इजाजत अब शामिल हाल नहीं होगी, ये अमल मुस्तहब या नफली बन जाएगा। अब तमाम अमलियात की शरायत लागू होंगी। अब आप आयत करीमे को शरायत के बगैर पढ़ोगे तो नफा कम नुकसान ज्यादा होगा। पहली शर्त अब क्या लागू होगी कि जब आप एक तस्बीह करेंगे आयत करीमा की या इससे ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना हसार करना पड़ेगा और बैठकर पढ़ना पड़ेगा, चलते फिरते आज के दौर में आप नहीं पढ़ सकते। तो ये बुनियादी दो शर्तें फौरन लागू होंगी। इसलिए मैंने अर्ज किया है कि आप में से कोई सुन रहे तो उसके यहां तकलीफ ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, वो आयत करीमा ज्यादा तादाद में पढ़ना चाहता है, तो उन्हें मैं अर्ज करूंगा कि पहले आपने अपना हसार करना है, उसके बाद आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहे 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 313 बार पढ़ें, जितना आप पचा सकते हैं, हसार करेंगे, बैठकर पढ़ेंगे। फिर तीसरी शर्त क्या है, आज के दौर में जितना आयत करीमा पढ़ोगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, जितना आयत करीमा पढ़ोगे उससे 3 गुना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे तो आपको नफा होगा, वरना आपकी अपनी तबीयत के अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है, अगर आपने आयत करी

0: 40 से ज्यादा पढ़ने हैं हालात की नजाकत को देखते हुए, अपनी परेशानी को देखते हुए। तो पहला क्या है, हसार नबवी अलैहिस्सलाम, हम सुन के पहले हसार करेंगे। दूसरी शर्त क्या लगेगी, बैठकर करेंगे, एक जगह चलते फिरते नहीं करना। और तीसरी शर्त क्या होगी कि जितनी तादाद आप पढ़ेंगे उससे तीन गुना ज्यादा उसी मौके पर बैठे बैठे दुरूद पढ़कर आप उठेंगे, तो क्या होगा, जो जलाली असरात हैं वो मोतदल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप 100 बार आयत करीमा पढ़ते हैं तो आपको 300 बार दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप छोटा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये मैंने पूरा आयत करीमा पढ़ने का तरीका भी बता दिया। तो आज मैंने मुख्तसर बता दिया, क्यों जो लोग आप सुन रहे हैं ये मुमकिन है कि आप में से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और वो ये चाह रहा हो कि मैं 40 बार से ज्यादा पढ़ूं, तो मैंने मुख्तसर आपको ये बता दिया कि 40 बार से ऊपर जाएंगे तो कम से कम तीन शर्तें जो बहुत जरूरी हैं वो फौरन लागू होंगी। आए वो तमाम हजरात आप समेत जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हमारी जरूरतें हैं हम अल्लाह की बारगाह में तफसीलन अर्ज कर नहीं सके, अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
1: सुभान अल्लाह, बेहद ही खूबसूरत, मुअस्सिर और हिदायत से पूरा बयान अभी आपने सुना है। कितनी प्यारी बात है ना कि जिंदगी की सारी परेशानियों का हल इन्हीं बातों में छुपा है। अपनी गलतियों पर इस्तग़फ़ार, आजमाइशों पर सब्र, नेमतों पर अल्लाह का शुक्र, दिलों का सुकून नमाज, और अपनी हर हाजत के लिए अल्लाह के आगे दुआ के हाथ उठाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि इन बातों पर अमल करने वाला भी बनाए। आमीन।

शामिल मोहतरम, कितनी हसीन हकीकत है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी ही नहीं बल्कि रिस्क, बरकत, सुकून और आसानियों का भी ज़रिया है। शामिल मोहतरम, जब दिल घबरा जाए तो ज़बान पर ये अल्फाज सजा लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। फिर हाथ उठा कर दुआ कीजिए। शामिल मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगुनाह और मासूम थे। ये उम्मत के लिए एक अजीम सबक है कि इस्तग़फ़ार ज़िंदगी का रोज़ाना का मामूल होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र करने, नमाज की पाबंद करने, कसरत से इस्तग़फ़ार करने और इखलास के साथ दुआएं मांगने और हर हाल आजमाइश में अपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद करें। तकनीकी मदद अंजु की रही है, मशकूर और ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

हाँ वो हमारी साथ है happening right over here 94.6 रत्ना आप सब कोई नहीं साथ है and with this चलो mood ने हवे थोड़ू बदलिए अने मधुर गीतों ना सफर में छोटू खान ना voice में मुकायलू मालू माड़ी film नू आ गीत 2026 ना वर्ष में आवेली आ movie नू song तमारा माटे

रेडियो रेडियो रेडियो आवो अमारी साथे श्रोता मित्रों घणी वक्त आपणे जीवन ने ज्यारे बहु नजीक थी जोईए छे ने त्यारे आपणा नजीक

हल्का हल्का छाटा पड़ी रहा है, पण आवा धुम्मस भरेला वातावरण नी साथे अमे तो एज कहेशुं के भाई जो तमे अत्यारे ड्राइव करी रहा हो सो जस्ट बी वेरी केरफुल वेरी कॉशियस ऑन द रोड्स, कारण के आपणे कहीए ने के आवा धुम्मस भरेला ने आवा वरसादी वातावरण में ज एक्सिडेंट थवाना चांस वधी जता होय छे हो मारा वाला वावीरा। माडे बस एन्जॉय करो रेडियो ना गीतो, गो स्लो गो आराम थी अने धीमे धीमे करता आगळ वधो मारा वाला। तमारू जीवन जे छे तमारी जिंदगी छे वधारे मायने राखे छे। ने आ साथे ज कमिंग अप विथ द नेक्स्ट ब्यूटिफुल ट्रेक अने आ छे वरसाद नी हेली। मन में आव्यू के वरसाद वरसी रह्यो छे तो आपणे चालो आ गीत छे मां चलावी दईए तमारा माटे। ने आ पण एक वखत फरी मालू माडीमांथी लेवामां आवेलुं गीत छे, सोहम नायके आन साथ आप्यो छे ऐश्वर्या मजुमदारे वरसाद नी हेली नुं आ गीत। ભાઈ વરસાદી વાતાવરણ હોય ને પેલી વાત તો કામે જવાનું મન ન થાય, પણ હાલો કામે જો નીકળી ગયા હો તો ભાઈ રસ્તા ઉપર ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આપણે કહીએ ને કે આપણું જીવન વધારે માયને રાખે હું। ચાલો ઇટ્સ ઓલરેડી 10:30 એટલે કે 10:30 વાગવાના તૈયારીમાં છે। એન્જોય કરતા ચાલીએ આવો મારી સાથે ગુજરાતી ગીતોનો આ લાજવાબ સિલેક્શન ફક્ત તમારા માટે।

नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एमफ्री रेडियो, और आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। जी हाँ, आज बुधवार 5 अगस्त 2026 और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और एमफ्री पर, और उषा कौर आप लोगों का साथ देने के लिए। चले लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

11:05 हुए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, भगवान हमारे शब्दों से कम और हमारे कर्मों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब मन में अहंकार की जगह विनम्रता और नफरत की जगह प्रेम आ जाता है, तब समझ लीजिए कि भक्ति अपने सच्चे रूप में खिल उठी है। और आइए आज सब ये संकल्प ले कि हर दिन एक अच्छा कर्म करेंगे, हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे और हर सांस के साथ भगवान का आभार मानेंगे, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शक्ति जन्म लेती है और जहाँ भक्ति होती है वहाँ जीवन में शांति, संतोष और आनंद स्वयं चले आते हैं।

श्रोताओं कहते हैं हर कार्य हर शुभ कार्य से पहले हम सब एक ही नाम लेते हैं श्री गणेश जी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? गणेश जी सिर्फ विघ्नों को दूर करने वाले देव नहीं बल्कि हमें जीवन जीने की सबसे सुंदर कला भी सिखाते हैं। उनका बड़ा मस्तक कहता है बड़ा सोचो, उनके बड़े कान कहते हैं अधिक सुनो कम बोलो, उनकी छोटी आंखें सिखाती है हर लक्ष्य पर एकाग्रता रखो और उनकी सुंद बताती है जीवन में हर परिस्थिति के साथ स्वयं को ढलना भी सच्ची बुद्धि है।

प्यारे श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। 11:26 हुए हैं। ओशा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: 12 बजे है।
1: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
2: नमस्कार निलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में एफसीसी ने कल दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक पूर्व असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। राजकुमार सिंह और रंजीत देवजी से अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। दोनों अधिकारी जो स्पेशल इंटेलिजेंस सेल की स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट में तैनात थे, आज अदालत में पेश किए जाएंगे। ये जांच 30 मार्च 2024 को वाले दिपत के एक निवासी के घर पर की गई तलाशी कार्रवाई के से जुड़ी हैं, जहां से बड़ी मात्रा में नकद पैसे बरामद किए गए थे। एफसीसी की जांच से संकेत मिलता है कि दोनों अधिकारियों ने तलाशी वारंट के तहत मिले अपने अधिकारों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है। पूर्व एएसपी राजकुमार सिंह के खिलाफ एफसीसी की एक और जांच भी चल रही है, जो रिवॉर्ड मनी मामले से संबंधित हैं। उन्हें अगस्त 2025 में भी गिरफ्तार किया गया था। कल शाम पुतोदो में 54 साल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है। जाक लुई फिडेल को चाकू लगने के बाद गंभीर हालत में गुडलैंड स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में उन्हें एसएसओएन अस्पताल स्थानांतरित किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रेजिडेंस सेंट क्लेयर से इस नाबालिग संदिग्ध को गिरफ्तार किया। संदिग्ध, जो मृतक के भाई का सौतेला बेटा है, ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद उसने जाक लुई फिडेल पर हमला किया। सिग्नल माउंटेन पर प्रतिबंधित गतिविधियों को लेकर कृषि उद्योग मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जनता को सूचित किया जाता है कि फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स एक्ट की धारा 14(2) के तहत कोई भी व्यक्ति वन संरक्षक की लिखित अनुमति के बिना वन, पहाड़, नदी या प्रकृति में पौधों के लिए हानिकारक कोई भी वस्तु या सामग्री नहीं ले जा सकता। किसी आरक्षित क्षेत्र से वन पैदावार को नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना, खोदना, हटाना या अपने कब्जे में रखना, पशु को चराना, बंदूक या किसी प्रकार का अवसर अपने पास रखना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी आरक्षित क्षेत्र में कचरा, कोई वस्तु या खतरनाक या आपत्तिजनक सामग्री नहीं फेंक सकता। संरक्षित पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकता और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ₹5,000 का जुर्माना और 24 महीने की कैद की सजा हो सकती है, और इसके अलावा अदालत अन्य दंड भी लगा सकती है। अगर किसी उल्लंघन का संदेह हो तो फॉरेस्ट्री सर्विस को इन नंबरों पर फोन किया जा सकता है, 6707254 या 6707255 पर। और विदेशी खबरों में, रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये इस साल कीव पर हुए सबसे घातक जानलेवा हमलों में से एक माना जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। एवेन्यू ओलिये काथोबोन में 83 साल के 83-year-old के जनाब लतीफ़ कासिम साहिब, जो लतीफ कामियों से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी बीबी जाइना कासिम साहिब के घर एवेन्यू ओलिये काथोबोन से उठाकर काथोबोन की ले बों से जू मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स

0: का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट 2 पीएम शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को विनीता की ओर से नमस्कार, स्वागत है। दिन के 12:10 हुए हैं और हम आए हैं लेकर आपके लिए आप ही का प्रोग्राम जो कि है सुहाना सफर, जहाँ पर पुराने गाने चलते हैं। तो हमसे पहले हमारे दोस्त यहाँ पहुँच गए हैं, चलिए उनको हेलो बोल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कहेंगे हेलो विशाल को, जो साथ दे रहे हैं। दुर्गा जी कैसे हैं जी? हेलो जी, आपका वेलकम करते हैं। हाय श्यामली, कैसे हो भाई? और साथ में यहाँ पर हम बिल्कुल ठीक हैं, थैंक यू। और यहाँ पर सलाम आपको खतीबा मंगर, कैसे हो आप? साथ दे रहे हैं हमारे कल्याणी हरी, हमारे साथ हैं विनेश, नमस्कार। एंड नेक्स्ट गाना दुर्गा कहती है उनके फैमिली के लिए। बबीता कहती है हेलो, मैंने कहा आगे चलो हमारे साथ साथ। और फिर आयशा का हम वेलकम करते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं तो यहाँ पर वो आ गई हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू गाइज। चलिए इसी के साथ यहाँ पर खूबसूरत गीतों का जो सफ़र है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। एंड अभी बैराग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, आशा और रफ़ी साहब की आवाज़ में एक और प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आए हैं। अब की बारी हम ये गाना आपके लिए लेकर आए हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, और ये गाना होगा सरोज के लिए, वीर सिंह के नाम। और एके हाय, कैसे हो?

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। जी हाँ, समय हो गया है 12:16. आज है बुधवार 5 अगस्त, और आज अगर आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम देते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे दोस्तों ने हमसे बस हेलो कहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको भी हेलो कहूँ। यू नो, जवाब देना पड़ता है। तो आज सरोज का बर्थडे है, चलिए सरोज आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हैं। बबीता बंधु, रोशन, सविता, कविराज पूरन, विकास भातू। विकास भातू आज मूड में लग रहे हैं, कहते हैं कि लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसमलाई, ये सब खानी चाहिए। जी हाँ, आप भर पेट के खाइए, अच्छा है। लेकिन पता है, बॉडी में जब बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है तो बीपी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है, जब चीनी हो जाता है तो शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा फैट्स हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इसलिए जो भी करो थोड़ा थोड़ा करके करो। हफ्ते में एक बार लड्डू खा लिया ठीक है, हफ्ते में एक बार गुलाब जामुन खा लिया ठीक है, लेकिन एक साथ इतनी मिठाई मत खाया करो, ठीक है। यहाँ पर साहिल हमारे साथ हैं, उनका वेलकम करते हैं। वीमा पेंचा, रोशनी, देवीना, चिरंजीत, अमिताभ, बरखा, शमा और नीला, महजबीन, क्या बात है। ज्योति, चमन, परी आ गई हैं उड़ती उड़ती, और कहती हैं आ गई मेनका यहाँ पर हम सबकी तपस्या भंग करने, अरे नहीं, आपको एंटरटेन करने। निज़ाम बहादुर की तरफ से उनकी वाइफ सबीना के लिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे। वहीं पे शायलन बदारू, माधुरी और रेखा, 1 2 3 करते हुए सब आ गए। माधुरी जी कैसे हो आप, चलिए गाना आपके लिए होगा, और साथ में यही गाना प्यारा सा हम डेडिकेट करते हैं मुन्ना दलाल के लिए। और बेफिक्रे बॉयज अपना असली नाम लिख देते तो ज़्यादा मज़ा आता। चले जी, हमारे साथ हैं डीजे दया। जी हाँ, हम पे आपने दया की, हमारे प्रोग्राम के साथ अब जुड़ गए, तो अब डीजे वाले, अब हम यहाँ पर आरजे का कमाल दिखाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। सबको एंटरटेन करते हो, अभी मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की। रिया नमस्कार, स्वागत है आपका। सायरा बाहू आपका, सायरा बानू आपका स्वागत करती हूँ। अब्दुल के लिए गाना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ है रॉकी और ऋतिक, क्या बात है। चलिए जी, साथ देते रहिए और हमारे गाने गुनगुनाते चलिए। अभी नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं मुख्य फैसिलिटीज़ के लिए, जो इस समय गंगा तालाब में काम कर रहे हैं। थैंक यू, एंजॉय करें पारा प्यारा सा ये गाना।
1: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: हमने तुमसे प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना भाई हम तो करते हैं और मुझे पता है जहां तक मेरी नजर जाती है आपके दिल तक तो आप भी बहुत करते हैं क्योंकि ये है आपका अपना रेडियो मनोरंजन और यहां पर हम दिल के तारों के साथ ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ सिर्फ मॉरिशस में नहीं बल्कि राउंड द वर्ल्ड हमारे जितने भी लिसनर्स हैं हमें सुनते हैं उन सबको बहुत प्यार से हम वेलकम कहते हैं चलिए इसी के साथ शाहिद और अदिल जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से उनको कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष यादव वरुण रामधारी राधा कैसी हो राधे राधे यहाँ पर रॉबिनहुड पांडे भी हैं वेदना है कार्टरबोन से कहती है सागर फिल्म का कोई गाना आ गया तो चला देंगे और वहीं पे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं कौन चलिए देखते हैं किसी ने कहा हेलो चाची तो यहाँ पर कोई कहता है कि भी हेलो नानी भी बोलेंगे हाँ आपका मन जो करे जिससे बोलकर आपका दिल खुश होता है ना आप वही करो आपको मजाक करने की अगर आदत है तो हमें भी मजाक करने की उतनी ही आदत है अगर इंसान मजाक सह नहीं सकता तो उसे मजाक करने का भी कोई हक नहीं होता इसलिए हमें आपकी बातों में बहुत अच्छा लगता है अपनापन होता है पता है इंसान एक दूसरे को जब कोई पेट नेम देने लगते हैं ना तो क्या होता है कि देखो आयशा मुझे पैरट कहती हैं क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ वो नाम सिर्फ वही बोलती है मुझे और कोई नहीं बोलता क्योंकि वो उसका प्यार है उसको पता है कि वो बोलती है जब मैं सुनूंगी तो मुझे पता है कि ये पैरट सिर्फ मेरे लिए हैं कभी कभी लोग प्यार से नाम रखते हैं गोलू मोलू तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग बस कंफर्टेबल रहो मेरे साथ जुड़े रहो प्रोग्राम को एंजॉय करो पता है मेरी बस यही मकसद होती है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है ना जो दर्द है ना मैं उसको दूर कर दूँ अगर मेरे गाने ऐसा करते हैं तो मैं आई एम ब्लेस्ड और अगर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम सुनकर बीते दिन याद करके मुस्कुरा रहे हो तो मुझे खुशी होती है कहते हैं कि खुशियां जो होती है ना बांटने से बढ़ती हैं गम जो होता है उसे बांटने से वो कम होता है तो अब आप डिसाइड कर लो हमारा टिकटॉक लाइव है अगर आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहीं पे हम जो नेक्स्ट गाना होगा डेडिकेट करेंगे आपके लिए प्यार से कुछ भी कह सकते हैं लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सो थैंक यू सो मच और चलिए यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं मिस्टर नूरुद्दीन है रिया जुड़ी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर कोई बेवफा भी कहता है चलता है कोई कहता है थोड़ा शर्मा तो लो अच्छा ठीक है शर्मा लेते हैं चलिए जी यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे बेबो के लिए और स्पेशल सॉन्ग फॉर याशी सी बालक कहते हैं वापस इंडिया गई स्टडीज़ के लिए ओके आई होप कि जब वापस आएगी तो खुश होकर वापस आएगी और सक्सेस होकर ठीक है सक्सेसफुल होकर ओके तो चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा वो है आपके लिए जैसा आपने कहा सागर फिल्म का ये गाना ये मेरे लिस्ट में पहले से ही था मेरे सेकंड आवर में था मैंने अभी चला दिया क्योंकि इसकी फरमाइश आ गई है तो ऐसा है यहाँ पर हम जुड़न और दौलत फैमिली के लिए गाना चल डेडिकेट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गाना होगा फॉर मलिका एंड किशन बंधु हमारे साथ जुड़े हैं थैंक यू जी और साथ में यहाँ हम इंदिरा राम दुनिया

का वेलकम करते हैं जब तक कि म्यूजिक चल रहा है मैं कुछ बोल देती हूँ इंदिरा रामधुनिया एंड प्रतिमा चेष्टा रायना के लिए यहाँ पर गाना कुणाल सिवपाल के लिए सुरेखा नमस्ते जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू सो मच गीता जरी आपका भी हम स्वागत करते हैं यूरोप से साथ दे रही हैं सुमा हाय वेलकम आपका माला सलीमा तिवरीज आपका भी स्वागत करते हैं

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए देखते हैं सुहाना सफर में अभी कौन हमारे साथ है। तो यहाँ पर नम्रता जॉन, सरदा सिबारत, कविता अनु, अशोक गंगराम, उनकी वाइफ सुकवंती के लिए गाना मांग रहे हैं। वहीं पर हमारे साथ जुड़े हैं पूजा ताराचन, प्रतिमा भारती, एमजे वेंस, कैसे हो? सब बढ़िया, सब गुड, ऑलराइट। तरुण राम, कैसे हो? राम राम आपको। चलिए जी, यहाँ पर सुखदेव सिंह हैं, सत श्री अकाल आपको। ग्लासगो स्कॉटलैंड से मैं सुन रहे हैं, थैंक यू। स्कॉटलैंड से और भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, कहाँ गए, आएंगे आएंगे अभी थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ पर अकीम हमारे साथ हैं, हेलो। एंड फिजी से हमारे साथ हैं कौन, नाज और अब्दुल, थैंक यू। हाई वी

हाय जे वीना, राधिका बाचू थैंक यू सो मच, और साथ में यहाँ पर हमारे कौन है, यहाँ पर हमारे साथ है सिवा सन समुगम, थैंक यू सो मच, आपका हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू, जय हिंद जी हाँ मॉरिशस से, ओके थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एंड यहाँ पर निकाह फिल्म का गाना तो हमने चलाया था, और साथ में यहाँ पर उमेश जयपोल के लिए गाना होगा, वी हैव काजल कविता लाचा, वी हैव विमी ट्रैवल खुमान बोहारा, और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं खमन बोहारा नेपाल से, ओके चले जी नेपाल फिजी सब हमारे साथ हैं। ऑलराइट फिदू दलजीत नमस्ते स्वागत है, राधा सामी गुड मॉर्निंग आपको, एंड गुड आफ्टरनून जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, विराज का भी हम करते हैं स्वागत। चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, गीतों का सफर शुरू हुआ। गाना जाएगा शिवानी रामफल के लिए जिस समय गंगा तालाब में काम कर रहे हैं।

0: चलिए खूबसूरत गीतों के सफर में जगदीश राजीव उपाध्याय बबीता बुलाकी संजना मनोरथ नितिन जुड़ गए हैं कल्याणी हरी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और साथ में यहाँ पर आरती राम सहाय हमारे साथ है तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना उनको डेडिकेट करते हैं और गाना होगा चंदा जगू गुरु के नाम
1: RM3 Radio. Radio.
0: Sanveer Sandhya, हमारे साथ हैं नमस्कार और आरती थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सॉन्ग्स और यहाँ पर गाना आपके लिए होगा आप हैं हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं

0: मैंने चांद देखा है वाह कितना खूबसूरत गाना है ना
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गाना है मैंने चांद देखा है कभी कभी हमें लगता है कि हम

खुश हो जाएं, कोई अगर कहे कि मैंने चांद देखा है, कोई तारीफ करता है ना, कहता है कि देखो आपका चेहरा चांद जैसा है, लेकिन डाउट होता है कभी-कभी, है ना, कि इसका कहने का मतलब क्या है, चांद सा रोशन चेहरा या चांद जैसा गोल मुंह इसके दो ऑप्शंस होते हैं, आप समझ में नहीं आता, लेकिन खैर समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको जो कॉम्प्लीमेंट लेना है ले ले और हमारे साथ जुड़ जाए। यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा हम जगदीश राजीव उपाध्याय के लिए तो चला ही रहे हैं, साथ में अनिश्ता राम तोहल सरस्वती केविन और चंदा के लिए कर्सी हमें सुन रही हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड साथ में यहाँ पर रीना हमारे हैं जुड़ी हुई हैं। अवनीश कैसे हो, उन्होंने कहा पेट में थोड़ा सा दर्द है, तो ऐसा करो आप थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग कर लो एंड ट्राई टू ईट हेल्दी, अच्छा रहेगा। हाय आरती कैसे हो, एंड चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा मिस्टर सितालू के लिए, मिस्टर सितालू ओके उनके लिए गाना, चलो ठीक है। वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ माय सिस्टर इन लॉ शहनाज बहादुर ऑफ अमोगी, और ये हैं सबीना तबरेज, कैसे हो भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड अंजू कहती है, अंचल अंजू कहती हैं कि ये RM3 है, RM3 नहीं नहीं नहीं तुम तो ऐसा हो गया, नहीं ये RM3 है और ये रेडियो मनोरंजन ही है, ठीक है जी। यहाँ पर सेवी को हम कहेंगे वेलकम, स्वागत है आपका, और साथ में कर्सी कहते हैं इट्स 6:45 PM और हमारे यहाँ 12:46 हुआ है, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अंजी आर्मुगम का करते हैं स्वागत, साथ में राजेश जूतन और सुनंद और कृता महादेव हमारे साथ हैं, उनके बॉयफ्रेंड अजगन की तरफ से उनका गाना। सुनील मित्तू के फैमिली के लिए गाना होगा, आरती और उनके सभी दोस्तों के लिए जो इस समय काम कर रहे हैं CSST डिपार्टमेंट में, एंड हरंगी अर्जुन प्रसाद सूर्य नाम से साथ दे रहे हैं, दीनू मोहिनी आपका वेलकम है, और साथ में उत्तम जी का भी, मरियम कैसे हो आप, रेखा ताका आपका भी हम वेलकम करते हैं।

ब्यूटीफुल गाना लता जी और किशोर कुमार की आवाज में भी आप सुन रही थी और ये गाना साकुन दीपक राज जो कि फिजी आइलैंड से साथ दे रहे हैं रोहित सोइनाम से उत्तम आरती संजू फ्रॉम मिलान लोलिता कविता कुबलोर और सर्वेश तिजोरी के नाम चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से सुहाना को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच ऑन हर बिहाफ एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं एक बजे के समाचारों की ओर. मिलते हैं उस पार थोड़ी ही देर में. चलते चलते गाना देविका, प्रवीणा कुमारी, सलमाना चलम, अंजनी, मोहन प्रसाद जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं फ्रॉम द ट्विन आइलैंड रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. हाय, वेलकम, स्वागत है आपका. एंजॉय करें हमारे गाने. एंड यश, थैंक यू सो मच, स्वागत है. प्रीति सकराम, आपका भी वेलकम करते हैं हम. एंड देविना, स्वागत है आपका.
2: जब से

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था नमस्कार।
1: नमस्कार, एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बैंक अफ्रीकी बैंक विकास बैंक की नई रिपोर्ट में मॉरिशस के सरकारी वित्त को लेकर चिंता जताई गई है। 28 जुलाई को जारी कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सरकार ने जून की शुरुआत में बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 23 बिलियन रुपए से अधिक की बजटीय सहायता कर्ज की मांग की है। यह राशि दो बराबर किश्तों में मिलने का प्रस्ताव है। पहली किश्त 2026-2027 और दूसरी 2027-2028 में मिल सकती है। एमओआरई ने टैक्स वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल राज्यसभा में बताया कि वीएटी पंजीकरण की सीमा 60 लाख से घटाकर 30 लाख रुपए किए जाने के बावजूद अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच सरकार को 655 मिलियन रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। इस दौरान 8,764 नए कारोबार वीएटी में शामिल हुए, जबकि सिर्फ 84 कारोबार बाहर हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सभी कारोबारियों के लिए बराबरी का माहौल बनेगा और अनौपचारिक कारोबार भी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। 156 किलो गांजा तस्करी मामले में सांसद वेरोनिक लुगोबिन आज फिर आजसू के सामने पेश होंगी। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि 2 अगस्त को वो खुद आजसू पहुंची थी, लेकिन उन्हें अपने वकील के साथ आज फिर बुलाया गया। उनकी एसयूवी गाड़ी की जांच में गांजे का एक बीज और उसके कुछ अवशेष मिले हैं। वहीं उनके पति गुलशन गोविंद से कल पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने जांच में सहयोग करने और डीएनए नमूने देने का पर सहमति जताई है। उनसे आज भी पूछताछ होगी। वो उधर एफसीसी दंपति की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल ने आईसीटीए अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन संस्था का सदस्य है, इसलिए इन बैठकों और सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करना जरूरी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि खर्च कम करने के लिए अब जहां संभव होगा ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुंध 2 में 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। राक लुई फिडेल को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने रेजिडेंस सैंक्लेयर से आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में उसने विवाद के बाद हमला करने की बात कही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाला रसोई का चाकू भी बरामद कर लिया है। लाप्रेरी में हुए सी प्लेन हादसे में पोलैंड के 25 वर्षीय एक पर्यटक की मौत हो गई। विमान के पायलट को बचा लिया गया और गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। ये हिस्सा जनवरी 2025 में प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी। नासा ने कहा कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। टागोर रोड अर्नेस्ट फ्लोरों में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के राजनाथ बिमल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हरी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश बिमल के घर अर्नेस्ट फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू ओलिए काट्रोबोन में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की लतीफ कसीम साहिब इंतकाल कर गई हैं। लोग उन्हें लतीफ कामियों के नाम से अधिक जानते थे। उनका जनाजा आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी बेटी बीबी जैना कसीम साहिब के घर काट्रोबोन से निकालकर दफनाने के लिए फेनिक

0: का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 पीएम। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर के सिविल लिसनर्स को एक बार फिर से हम वेलकम कहेंगे। दिन के 1:11 हुए हैं, 5 अगस्त आप लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको। चलिए हम देर न करते हुए अपने डेडिकेशंस की ओर बढ़ते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, सो आई हैव टू कंप्लीट इट। संजनी, शोभा, ध्रुव का बर्थडे, उनको हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट गाना आरती, वरीना, प्रीति, अमंदा के लिए, विनय बुधू, बबीता निर्मल, साथ में जॉइस के लिए निर्मला। 2 अगस्त को उनको बर्थडे था, उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। एंड वी हैव मायरा, शमीरा, उनकी मम सलमा, पापा नैनो के नाम गीत मांग रहे हैं। दीप्ति के लिए होगा रियांश, मालिनी, बिसराम, संजय एंड शालिनी साथ दे रहे हैं। माया राम दोस्त अभी ज्वाइन किया है। ललिता चरण और गाना होगा आपके लिए, और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके पति के लिए भी। और हमारे साथ हैं हुस्ना, श्यामा महराली, और उन्होंने कहा है कि गाना जो है वो अगला गीत यजना, यति और आपके लिए। ठीक है जी, चलो ठीक है, चला देंगे। और साथ यही गाना हम सुबी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है अभी कविता चन्नू का वेलकम करते हैं, और साथ में जय किशन हमारे साथ हैं। कहते हैं कि रेडियो मनोरंजन के जितने भी स्टाफ हैं उन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार और थैंक यू। एंड आरती सरिवासन हमारे साथ हैं, वी हैव बिंता, और साथ में जुड़े हुए हैं अभी ड्राइव करते हुए कितने सारे लोग, तो उनको कहेंगे थैंक यू। और यहाँ पर मीट मी क्विक भी आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, हम जल्दी से आपसे मिलने आएंगे। और चलिए इसी के साथ अगला गाना आपके साथ गुनगुनाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड गाना है शोर फिल्म से।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ ये है सुहाना सफर एक ऐसा सफर जहाँ पर सब हम सफर बन जाते हैं सब एक दूसरे का साथ देते हैं सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर कुछ भी कर जाते हैं कभी किसी को हंसाते हैं कभी किसी के साथ छेड़खानी करते हैं कभी किसी का हौसला बनते हैं और कभी किसी का हमदर्द बन जाते हैं मनीषा जोराम रघुबर आपका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में यहाँ पर हमारे साथ है डॉली मिट्ठू देशिता केतिका वे दीता करण मनीषा

देवी वैदेही और हमारी प्यारी सी डीवा गर्ल जो साथ दे रही हैं। चलिए अभी मूड को थोड़ा बदलते हैं। जानती हूँ इस गाने ने थोड़ा सा हमारा जो इमोशंस हैं इसके साथ अत्याचार कर दिया होगा, लेकिन मूड बदलना आता है हमें। अब मेरे फेवरेट गीतों के लिस्ट में कुछ गाने ऐसे भी हैं जिसे सुनकर आप चुप नहीं बैठोगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग चुप मत बैठो, आप हमारे साथ इस गाने को गुनगुनाओ, अपना मूड बनाओ और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो रेडियो मनोरंजन पर विनीता के साथ। हमारे साथ है हितन कुमार, कहते हैं कि ये रेडियो स्टेशन कहाँ पे है भाई, ये मॉरिशस में है और ये है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जहाँ पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विनीता के साथ ऑन रेडियो मनोरंजन।

खूबसूरत गाना है आपके लिए और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं जी हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं हमारे लाइव टिकटॉक पे और हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अनिल जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए गाना होगा फॉर दीप डैनी संध्या नाजलीन के नाम। और ये गाना खास तौर पे हम डेडिकेट करेंगे हमारे प्यारे से दोस्त फैजल के लिए हुज लिस्टिंग इन फ्रांस। गाना होगा सिरिश्त की तरफ से फॉर सुषमा एंड देवीना के नाम।

नेक्स्ट गाना शिवांगी अनिल जो कि सूरीनाम और साउथ अफ्रीका से हैं उनके लिए गाना होगा. उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है मिस्टर नारायणन एंड सरिता के नाम एंड मनजिंदर हमारे साथ हैं. हेलो जी.

0: गापुची गापुची गम गम चलिए आपके दिल में ना रहे कोई गम आ गए हैं हम आपके संग
1: सुहाना सफर
0: दिन के 1:33 हुए हैं आप विजेता का साथ दे रहे हैं चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम आप सभी दोस्तों के नाम और लक्ष्मी हमारे साथ हैं और साथ में है ऐश ऐश कैश लक्ष्मी क्या बात है लगता है हमारी तो निकल पड़ी जगदीश जी हमारे साथ हैं रेणुका मारिया फ्रांस से साथ दे रही हैं नलेश भोजराज जो कि हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका हे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस चलो इसी के साथ एक आया है हेलो क्या हाल है दीदी जी दीदी जी का हाल तो एकदम कमाल है आप अपना सुनाओ लैला मदारन आप भी आ गए हैं वेलकम है आपका स्वागत है चलिए तो यहाँ पर कहते हैं कि हम तो सुबह से लेट नाइट तक प्रोग्राम सुनते हैं थैंक यू सो मच और हम हैं फ्रॉम वालिता और राइट लक्ष्मी जी थैंक यू आप सुनते रहिए लोलिता का भी हम वेलकम करते हैं और साथ में यहाँ पर गाना जाएगा बिलावड प्रेमिला कुंजल के लिए और बच्चे हैं वंश याजना और ईशा वहीं पे रोहित कहते हैं कि ओके जी अब हमारे जाने का टाइम हो गया है थैंक यू सो मच आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े रहे एंड इसी के साथ अगला गाना आपके लिए भी दीपक बिहारी का हम नमस्कार कहते हैं स्वागत करते हैं लक्की का हम वेलकम करते हैं रोहित आपका दिन बहुत अच्छा जाए काम पर जा रहे हैं बेचारे सो ऑल द बेस्ट टू यू चलिए इसी के साथ एक और प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आए हैं और गाना होगा

listening to RM3 Radio Manoranjan. चलिए हमारा अगला गाना मिला राम सामी के लिए जो कैटरमोन से साथ दे रही हैं मेरी ग्रेस हमारे साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कनाडा में हमें सुन रहे हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं और यहाँ नेपाल से हमारे साथ हैं दीपक सिरपाली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और डीजे करुणा भोला भी आ गई हैं साथ देने के लिए

0: ये दिल और उनकी निगाहों के साये, चलिए भाई ये निगाहों के साये साये हम भी निकल पड़ते हैं, आगे कहाँ इधर
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर
0: प्रोग्राम है सुहाना सफर। और चलिए यहाँ पर सुहाना सफर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन, विक्रम और वेदना अपनी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं, मोहनपुर सितालू गोतिया और पदर फैमिली की ओर से उनको बहुत सारा प्यार है। गाना होगा फ्रेंड आशना के लिए, आशा की तरफ से। नाजरीन हमारे साथ हैं और चलिए यहाँ पर साहिल के लिए उन्होंने गाना मांगा है, साहिल को हम खुश करेंगे, घबराए नहीं, उनके लिए खूबसूरत सा गाना भी डेडिकेट करेंगे। और यहाँ पर रिक्वायर से देवांश, दादी सीता और साथ में है श्वेता, राजन, उन सब के लिए गाना होगा। सुमन हमारे साथ है, नमस्कार। एंड चलिए यहाँ पर गाना होगा आप सभी के लिए, निशी हमारे साथ है, निशी सिंह हमारी ब्यूटीफुल सी गॉर्जियस सी फ्रेंड। साथ में यहाँ रोहित यादव, सुजाता पूरन, आशा सुबक, रागिनी गोवर्धन, नीरू हमारे साथ हैं, नीरू रामसन, सुनैना, मोनिक, जिमी, मोहिनी लता, सारा फ्रॉम नेदरलैंड्स, उर्वशी एंड कुणाल की शादी हो रही है या हो गई है मुझे पता नहीं, लेकिन उन दोनों के लिए स्पेशली ये खूबसूरत सा गाना।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: चलिए अगला गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आंटी के लिए जो कॉम्फोको से साथ दे रही हैं और उनकी पूरी फैमिली के लिए। यही गाना हम अबीना स्वरूप जोहरा और विदुषी के नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस समय टिकटॉक पे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इस गाने को सुनकर काफ़ी लोगों की आंखों में नमी तो आ ही गई होगी, हमारे आंखों में भी नमी आ रही है क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर प्रॉमिस करूँगी कि मैं फिर आ रही हूँ आपका साथ देने के लिए कल दिन के 12 बजे। सो आप लोग निराश मत होइए, कल मिलेंगे 12 से लेकर 3 बजे तक। 3 घंटे का खूबसूरत सफ़र होगा जहाँ पर हम एंड में कुछ 90s के भी गाने ऐड करेंगे। तो आप लोग बस हमारे गीतों के साथ जुड़े रहना और खुश रहना। खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त, और खुश रहने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सारी टेंशन भूल जाएं और हमारे साथ जुड़े रहें आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र।
2: RM3 Radio.

0: टाइम चेक 2 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। अमोरे ने टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल राष्ट्रसभा में बताया कि VAT पंजीकरण की सीमा 60 लाख से घटाकर 30 लाख रुपए किए जाने के बावजूद के बाद अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच सरकार को 655 मिलियन रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। इस दौरान 8,764 नए कारोबार VAT में शामिल हुए, जबकि सिर्फ 84 कारोबार बाहर हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सभी कारोबारियों के लिए बराबरी का माहौल बनेगा और अनौपचारिक कारोबार भी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बनेंगी। 156 किलो गांजा तस्करी मामले में सांसद वेरोनिक लुगोविन आज फिर अदसू के सामने पेश हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रसभा में बताया कि वो 2 अगस्त को खुद अदसू पहुंची थी, लेकिन उन्हें अपने वकील के साथ आज फिर बुलाया गया है। उनकी SUV गाड़ी की जांच में गांजे का एक बीज और उसके कुछ अवशेष मिले हैं। वहीं उनके पति गुलशन गोविंद से कल पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने जाँच में सहयोग करने और DNA नमूने देने पर सहमति जताई। उनसे आज भी पूछताछ चल रही है। उधर FCC दंपति की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। पुदुदो में 54 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में 14 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। रक लुई फिडल को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रेजिडेंस सैंक्लेयर से आरोपी को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में उसने विवाद के बाद हमला करने की बात कही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाला रसोई का चाकू भी बरामद कर लिया है। लाप्रेरी में हुए सी प्लेन हादसे में पोलैंड के 25 वर्षीय एक पर्यटक की मौत हो गई। विमान के पायलट को बचा लिया गया और गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि ये उनके कंधे और रीढ़ की हड्डी में कई फ्रैक्चर भी हुए हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा इस समय चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। यह हिस्सा जनवरी 2025 में प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। नासा ने कहा है कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। चौहत्तर साल के श्री चमिल चंद्रन उदन की मृत्यु हो गई है। श्री चमिल चंद्रन उदन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विनोद के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज बल्कि कल दिन के पौने बारह बजे एलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉपुलसेस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट क्वार्टर टू नून। पेटी पाके रोड मोंटाई ब्लांश में 70 साल की 70 years old के दयानंद कटुना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से अधिक जानते थे। दयानंद कटुना की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे अशीव कटुना के मकान पेटी पाके रोड मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: RM3 Radio. RM3 Radio.
4: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
5: नमस्ते।

धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हमें अरविंद साथ में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू तुकु की आज हमनी के कार्यक्रम तैयार करे में हमनी के सहयोग दुआ थुआन बहुत स्वागत बात लोग के। और जैसे जनबे करेला हमने के जो कार्यक्रम है धरोहर के सरोवर ई मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक विभाग दिने से तैयार करल जात बा। तो लोग के बोली राजा फिर से बोला थी जा कि मॉरिशस में भोजपुरी के पढ़ाई होता कहां पर ही होता तो लोग के बताए ला जा। देखा अभी हम के बैठका लोग में लड़का लोग के भोजपुरी सिखावल जात बा और हमनी महात्मा गांधी संस्थान देने से कोशिश कर लजा कि जो सामग्री चाहेला उ सामग्री तो लोग के तोहक तक सकब जा पहुंचाई अये जाहे जा परी अध्यापक लोग अध्यापिका लोग तो लोग के सकब जा ई सामग्री दे त अपन लड़का लोग के सकब जा सुनाए सकब जा पढ़ाए ताकि तनी तनी तनी लोग भोजपुरी सीखबे करी। अब ये देखा हमारे हाथ में भी एगो पुस्तक चला ई पुस्तक के नाम है भोजपुरी टीचर्स हैंडबुक स्टैंडर्ड वन। तो स्टैंडर्ड वन यानी ग्रेड वन के लड़का लोग खातिर ई पुस्तक तैयार करल गल बा जो तो लोग के लड़का लोग खातिर बहुत काम आए। ई चलते हम धन्यवाद देव ई सब टीम के जो लोग ई पुस्तक तैयार करे में हमने के सहयोग दिल हुन जा जैसे कोऑर्डिनेटर हम और दाऊ सिंह जी रहलन जय गणेश हमी के पैनल में रहलन जा डॉक्टर मिसिस भगत राम याद गौतमी डॉक्टर हेमराज सुंदर डॉक्टर लाल बिहारी जयचंद डॉक्टर संध्या आंचराज फिर साथ में श्रीमती जिंगन योगेश्वरी लोडा ब्रिजलाल जी रहल चंद्रदेव ओबिलक लाल धन सिबुआ जी रहलन जा। सब मिल के पुस्तक तैयार करल गल बा और एकर में जो उद्देश्य बा कि लड़का लोग के धला भोजपुरी से अवगत कराए के। अब एकर में जो पहल का पाठ ही जो बा चंदा मामा जन्मे करेला चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के तू खैबा थाली में हमरा देबा प्याली में प्याली गल टूट मामा गल रूट प्याली लेलन और मामा ऐलन दौर। एगो गीत बा साथ में एगो लोरी भी बा इतना जन्मे करेला रे चंदा मामा आरे आव पारे आव नदी आ किनारे आव सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आव बबुआ के मुआ में घुटूक सोजा बाबू सोजा बाबू सोजा। इतना तो लोग के बोलत है जा एकर हमनी ऑडियो भी तैयार कर ले है जा एकर ऑडियो जो लड़का लोग कैसे बजा सिखाए सुनाए और एकर कैसे बोला जाए संजो ओकरा कराओके ओकर खाली ओकर म्यूजिक रहे ओकर संगीत रही त लड़का लोग सकेंजा गाय तैसे वार्षिक उत्सव रही कोनो ऐसन कार्यक्रम रही त सगबजा ई लड़का लोग के ई सुनाए ई गवाई त ई आज हमी के कार्यक्रम लगभग ई पर केंद्रित करब जा कि कौन ची सकब जा हमी अपन लड़का लोग के पढ़ाए जब भोजपुरी पढ़ावत है जा। कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा गीत सुनब जा फिर मुलाकात हुई फिर से।

0: RM3 Radio.
1: अभी चर्चा कर रहे थे जब भोजपुरी पढ़ाई के लड़का लोग के खास तौर पर कम उम्र के लड़का लोग के तो जो पुस्तक महात्मा गांधी संस्थान में तैयार होल बा एकर में एक दुगो कहानी भी बा सिंह और चूहा के कहानी साथ साथ में एक दुगो कविता एक दुगो सुनला जाए जा लड़का लोग के धला जब बताए खोजब शरीर के अलग अलग अंग कोची है तो एक में एगो बा चलक हिले सुन सुन तक ऐसे होला सुन सुन सुन कान से सुन तई जब लड़का लोग के जब ई बोलब दोहराए के तो लोग के बोलब लोग के कान पकड़े के तो लोग जानी कि कान माने हमने के कान फिर बोलबा देख देख देख कुछ से देख संजू कुछ से देखबा आंख से देख देख देख देख आंख से देख बोल बोल बोल मुंह से बोल गिन गिन गिन कुछ से गिनबा उंगली से कैलकुलेटरी से नहीं गिन गिन गिन उंगली से गिन दे दे दे हाथ से दे चल चल चल गौर से चल तो ई सब लड़का लोग जानी गौर को चीहा हाथ को चीहा उंगली को चीहा मुंह को चीहा आंख को चीहा नाक को चीहा तो ऐसे लड़का लोग सकेंदा सीखे थे ई कविता बा ई पुस्तक में हयो में वो खेल के वो गीत बा हाथ ल हाथ द ई सब बजा लड़का लोग के धला लोग के अलग अलग तीन चार गो लड़का लोग रही वो लोग के बोलबल के हाथ लेके से हाथ ल हाथ द आवा घेरा बनावा घेरा माने इसे गोल करके तो घेरा शब्द जान जी अंजा आवा घेरा बनाए बनावा नाच गावा खुशी मनावा हाथ खोला हाथ छोड़ा जोर जोर से ताली बजावा देखो खेल हो गल लड़का लोग के बोलबा आवा हाथ में हाथ आवा घेरा बनावा नाच गावा खुशी मनावा हाथ खेला हाथ खोला हाथ छोड़ा जोर जोर से ताली बजावा इसे के कुनल हिरीलाल के वो गीत याद चला तालीमार निकालो खुशी रे लाई गीत तालीमार तो ई हमने याद चर्चा कर थी जा ई पुस्तक पर जो लड़का लोग खातिन बनावल गलबा भोजपुरी के इकर में चंगन मैंगन के गीत भी बाजाने ला चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा भला बाम्बू में डिग्री डाले पानी नहीं बा चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा
2: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे

0: RM3 Radio. Radio.
1: ते जोन गीत सुनना जा चंगन मेंगन पानी भरे ई भोजपुरी इंस्टीट्यूट देन से तैयार करल गरहल और जब हम के ई पुस्तक तैयार करल गल लैका लोग के त एकर में एक गीत शामिल करल गल ई इरादा से कि ई गीत आप लैका लोग के सुनई बजा एकर में ढेर कुछ सकी हुई धला लैका लोग के जे खुजत हुआ पानी के महत्व के प्रति सतर्क करके त है गीत वा सब सुनाए और खेल खेल में बहुत कुछ सकी हुई तम की धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में भर सक कोशिश करब जाकि लैका लोग हतीन नौजवान लोग हतीन तनी तनी भोजपुरी से संबंधित बहुत कुछ अंते रह जा त इसने महात्मा गांधी संस्थान में ई एगो पुस्तक तैयार करल गल बा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह एन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ भोजपुरी पोएम्स ऑफ मॉरिशस गैल हलाई कर में से एक दुगो कविता ले रहे जा आज भी एक दुगो कविता ले जा प्रसिद्ध कवि मॉरिशस के जो महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रहलन डॉक्टर हेमराज सुंदर और जो हम के भोजपुरी पैनल में भी रहलन उनकर तीन गो कविता बा है, है पुस्तक में है कविता संग्रह में सुनी जाए कविता कविता के शीर्षक है बोल बोल के भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी ना त उ लोग के दुकान ना चली ये तो सच बात बा आली लोग को दुगो चिनवा वो लोग भी भोजपुरी बोलत रंजा नहीं बोलते लोग के बुटीक नहीं चलत फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली फ्रीमैन नागाव के चर्चा करत हुन फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली जीरो से हीरो बनलन गा गा के गीत भोजपुरी माने पहले उकरा ढेर कोई नहीं जानत लन ई गीत जब गैलन तब बहुत ही लोकप्रिय होइलन डॉक्टर हेमराज सुंदर आगे लिखले हवन सोना रंभा हरी सब घूमलन जा देश परदेश गा गा के गीत भोजपुरी रेडियो टीवी हो या पॉलिटिकल रैली सब में सुने के मिलत बा भोजपुरी।

बोली, बोल बोल के ही भोजपुरी बोली, मिलल बा हमनी के आजादी। बड़ी सुंदर कविता ई डॉक्टर हेमराज सुंदर लिखले हुवन। ई कविता संग्रह में उनकर एगो और कविता बा, तू कौन खेत के मूली, चिनुआ बोले भोजपुरी, मौला बोले भोजपुरी, क्रिश्चियन बोले भोजपुरी, हिंदू बोले भोजपुरी, सब के सब बोले भोजपुरी, तू काहे बोले ले नहीं भोजपुरी, तू कौन खेत के मूली। बहुत सुंदर बा। और एगो एगो भोजपुरी शनिका डॉक्टर हेमराज सुंदर के, भोजपुरी कविता सब कोई सुनलक, न कोई थपरी बजेलक, न कोई देलक दाद, बांदर का जानी भला अदरक के स्वाद। हेमराज सुंदर जी के लिखल ई तीन गो कविता और साथ में एगो शनिका, तो देखला कितना सुंदर सुंदर कविता बनेला भोजपुरी संगे। भोजपुरी साहित्य ही के लेबा तो मॉरिशस में ई बहुत ही लोकप्रिय बा। वैसे हमनी के जो लड़का लोग सर्टिफिकेट इन भोजपुरी स्टडीज करेलन जा या महात्मा गांधी संस्थान में, वो लोग के दुगो मौजूल है, एगो भोजपुरी साहित्य के इतिहास और एगो मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य। कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा एगो गीत के।

0: RM3 Radio.
1: क्रिमेन नागा बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी गायक, भोजपुरी में गीत गए बहुत बड़ा बात है। लाली लाली कान प्लौतल सीमा में मकई, भोजपुरी के गो खूबसूरती ई भी है जे उ दूसर शब्द के अपन शब्द बना लेवेला। एकरा जैसे बोला से गो पिजिन बोला जाए, एकरा गो धलब भाषा के जब गो खिचड़ी बनेला तो एक दुगो शब्द चलावेला इधर। अब जैसे प्लौतल, प्लौतल शब्द जनबे करेला, प्लौतल बोला प्लांटे के, और ई प्लांटे शब्द से निकलल बा टू प्लांट इन अंग्रेजी में एकरा बोले जा, तो भोजपुरी ओकरा प्लौतल बना देलक। दम्बोर दम्बोर दम्बोर दम्बोर एगो बात बोल जाना कि मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लौतल बा, भोजपुरी बतियानी परिकर में ऐसा ढेर शब्द बा जो क्रियोल भाषा से आल बा पर ओकरा भोजपुरी में मिला दे जा। यह भाषा के खूबसूरती और धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में जन्मे करेला हमने भोजपुरी के कोनो ना कोनो चीज लेके आए ला जा, तो लोग के वो कविता के रूप में हो, वो कहानी के रूप में हो, जैसे भी चला ई लगे हाथ एगो छोटा सुन भोजपुरी किस्सा सुन ले ला जा।
2: एगो देश में एगो राजा रहल, उ राजा के सात गो रानी रहल, धन दौलत बहुत रहल, ओकर एको बाल बच्चा नै रहल। त जब आवे दान देवे सब भिकमंगा लोग के बात बोली, दान दे के का करब, हमरा सात गो रानी बा, एको बाल बच्चा नै बा। भीख मंगवा लोग के बड़ी चोट लगल, ओकर दिल दुखा गल, हमनी गरीब दुखिया आदमी भीख मांग के जिही लास। तब वो भीख मंगवा वन में गल साधु के खोजे, जब साधु सुनलक बात ऐसे ऐसे बा, कौन दिशा में वो रजुआ बा, हम रजुआ के जाय भेंट करे। तब साधु आल आके जय मनैलक, सब रानी लोग निकलल। तब राजा के बोलन स उ आल बा ओकरा दान देवे के, साधु के बात बोले लगल कि हमरा घर में बाल बच्चा नहीं बा, हम दान देके कौन ची करब। तब साधु बोललक नहीं तर कासे हुआ, कोनो चिंता के बात नहीं बा, बाल बच्चा होई। तब बोललक जा तोहर बगीचा में एगो गाछी बा आम फरल बा, जा अमवा तोड़ के ले अन्य। राजा जाके

अमुआ तुर के अनलक। तब साधु बोललक, है अमुआ लेके सातो रानी के दे के कि उ बाट के खा ले। सातो रानी के आम मिलल खाए की। ई में छह गो रानी निमन से अमुआ खैलन स, अपन में बाट लेलन स। छोटकी रानी के नहीं मिलल, तब पूछलक अमुआ कहाँ बा।

करल गए खर पत्ता सालते। छोटकी रानी जाके घूरा में से उठा के बैठ के उ लापो खैलक। अब साधु बाबा त चल गए इतना बोल के, अब नहीं आवब तोहर महल। संतान चल आए त अब भारी गोर से हो गल छोटकी रानी। राजा दूर में काम काज करेला, राजपात चलावेला। अब सोना के और चांदी के घंटी टंगावल गल और बजावल गल। जमे जब बाबा होय त दौड़ल आए राजा, हकासल प्यासल दौड़ल आए राजा कि हमर रानी के बाबा होय। तब उनकर छोरनिया बहुत दुख देवे लगलन सा। छोटकी रानी पूछलक कि बाबा कैसे होय। उ लोग बोलन सा कि ओखरी मुसर में मुड़िया ढुकैब त बाबा हो जाए। छोटकी रानी के तब एगो बेटा और बेटी होल। ई छौ गो रानी लड़कवन के मरमिट में भर के ले जाके घूरा में फेंक दिलन सा। त एगो ईंट एगो पत्थर उठा के रमास के आन के लपेट के रख दिलन सा और घंटा बजा दिलन सा। अब घंटा बजल राजा दौड़ल आए। तब बोलन सा तोहर रानी छोटकी रानी के एगो ईंट पत्थर होल बा। तब राजा बोले उफ ईंट पत्थर होल बा, ओकर सब बार मुंडली कर द और ओके विदा कर द चिरई लखेदे के धान कारो में होई जे मरई में रही। तब छोटकी रानी कौवा हकनी बन गल चिरई के लेखा दे और होजे खाय उई के ले जाके देवत रहलन सा। तब एगो कुम्हार और कुम्हारिन अइलन सा माटी खोने। माटी खोदलन सा त देखत वन सा दूगो लड़का घूरा में रोवता। उठा पुठा के ले गइलन सा त पोसे लगलन सा। माँ बाप उ लोग हो गइलन सा कुम्हार और कुम्हारिन। पोसते पोसते धरल होइलन सा 7-8-9 बरिस। अब सीमा में खेलत होवन सा लड़कवन। तब सीमा पर है छौ गो रानी लोग पासे होत रहलन सा। तब छोकरिया बोललक सुपली मौनी चाउर फटके। तब रनियन लोग गारी देलन सा कि सुपली मौनी चाउर फटके कब। तब लड़कवन बोललन सा त रानी के ईंट पत्थर बियाला। उ लोग के ई बात बड़ी करा लगल। जान गइलन सा कि ई लोग छोटकी रानी के लड़का हवन सा। तब अब जाके खटवास फटवास लेलन सा, न खात हवन सा न पियत हवन सा। त अब राजा पूछता का भल कोनो चीज लेब काहे नहीं खात हो जा। हमनी नहीं चाही बोलन सा, हमनी नहीं चाही। कुम्हार और कुम्हारिन लगे दूगो लड़का बा, ओकर करेजा निकाल के आन देब त ओकर से नेहा के अच्छा हो जाब सा। तब राजा कुम्हार कुम्हारिन लगे सिपाही के भेजलन। बोललक जल्दी से लड़का लेके आए के। तब लड़का लेके अइलन सा। राजा बोललक हमरा चाहे दूनो लड़का, तू लोग जा जा। अब जल्लाद के बोललक जा ई लोग के लड़कवन के मार के करेजा आन के छौ गो रानी के दे देवे के। जल्लाद लोग लड़कवन के लेके गइलन सा जान मारे दूर नय ले गइलन सा। जहाँ राजा के तखत बा सामना सामनी में जान मारे के जमे लौकी कहाँ मार के तोपल गल बा। तब एगो बाएं और एगो दाएं और लड़कवन के सुतैलन सा। तब दोनों के जान मार के उ लोग के करेजा लियान के देलन सा। रानी लोग उ पानी से नहैलन सा त राम राम कर के उठलन सा छौ रानी, अच्छा हो गइलन सा। त अब हुआ जहाँ लड़कवन के गारल गल बा दोनों एक एक गो फूल गइलन सा। तब अब हुआ जहाँ लड़कवन के गारल गर रहल दोनों एक एक गो फूल हो गइलन सा।
ऐसन महकता गमकता दूर ले रोज राजा

ताके बैठी तब बहुत सुंदर फूल के गमक आवी। सब सिपाही लोग के भेजलक खोजे के कि कहां से ई फूल के गमक आवता, जाके तोड़ के आने के। अब तुरे गैलन स, अब गैलन स फूल तुरे, तब फूलवा अब दोनों बतियाता।

गांव के जितना आदमी बा सब के राजा बोललक, फूल आने की जे आनी आधा राजपात ओके दे देव अब। तब सब कोई गांव में के फूल लोरे जाता। तब कुम्हार और कुम्हारिन गए।

राजा के ऐसे बुझाल कि ओकर गोर भीरी लगे अइलन स जैसे बुझाता कि गोदी में लेलक लैकवन के त लैकवन उड़ गइलन स तब चल गइलन स तब राजा बोले जा सिपाही लोग कौवा हकनी के बोला के आने के तब कौवा हकनी बोले काहे हमके बुलावत वन स त राजा बोले बा तोहरा हाली से आवे के तब राजा लगे गए त राजा ओके बोललक तोहरा हाली से आवे के जा फूलवा लोरे फूलवा गमता फूलवा लोर के ले आना अब गए कौवा हकनी फूल लोरे।

0: ना।
1: दारे पाते अपन माँ के गोदी में समा गयलन सा। तब हौजे से राजा बंबू कनात तनैलक अपन घर महल तक ले। सभा लोगन अयलक, सब आलम जुट गल और देखलक। अब सात परात के तवा बंधाल उ लोग के माँ के छाती पर कि ओकरे लैका होवन सा कि नहीं। नहीं होय त जानाई, उ होय त छतिया परे ओकर दुधवा उ तवा के पेड़ से कर के लैकवन के मुंह में जाए। तब दुधवा उ पार कर के धनाधन लैकवन पीलन सा। तब राजा पतियाल कि ओकरे लैका होवन सा। तब कौवा हकनी अपन महल में गयल। तब राजा जल्लाद के बोलक, तब छओ रानी के बार मुंड के दही उझिल के घर में से निकाल देलक। साधु के देवल फल रहल त छओ रानी मुआ दिलन सा।

धरोहर के सरोवर कार्यक्रम सुनत हुआ जा महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से तैयारी कार्यक्रम आज हमें अरविंद और साथ साथ में हमने के सहयोगी संजू साथ देवत हुआ न भोजपुरी के ई प्रक्रिया में आज फिर से तो लोग के हमी के जो स्वर्गीय दीमराला मोहित जी के पुस्तक बाग वो शब्द कोश तैयार कर ले हुआ हीरा मोती भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी शब्द कोश एकर में से एक दुगो शब्द लुअब जा और आप जनब इस शब्द के अर्थ कौन सी है तो अ से ही शुरू कर ले जा अ तो एकर में एगो शब्द आलबा अंकलक अंकलक अंकलक यानी कलंक लगाए के दोषी ठहराए के एक्यूजेशन कब कोई बोले अंगना जात है शौचालय जाना शौचालय

संजू का बुक कोई बोली अंग्रता, अंग्रता कौन सी अर्थ निकलेगा हमार गोर अंग्रता दुखाता, हाँ दुखाता अंग्रता तो टू मच पेन दुखाता ई डॉक्टर लोग के इस शब्द चाहना बोले कि डॉक्टर नर्स लोग के कहे कि कब हम के दादा दादी लोग जानन जा कबू अस्पताल में डिस्पेंसरी में तब बोली रन जा हमार गोर अंग्रता बीता डॉक्टर बेटा जानी अंग्रत तब न जानी कुछ करी नहीं तो जी नहीं जानी गोर कुछ तो कपार में लगी दवाई दे दे को कपार की तो जरूरी है ये सब जो भोजपुरी शब्द है डॉक्टर लोग के नर्स लोग के चहला जाने की अंग्रता ई सुन लो ही अनचितले में, अनचितले में टूट स्वीट, हाँ अच्छा बोल लक अनचितले में मैंने झट से एकाएक सडनली अनचितले में वो होता से निकल गल हाली से निकल गल अंगोरा अंगोरा यानी फायरबॉल फुटबॉल में कब बोल जाए ना कब एगो टीम एगो दूसर टीम के ऊपर पर चार पांच को गोल डालता तो बोल जा अंगोरा फेंकदबा अंगोरा फेंकदबा अंजोर अंजोर अंजोर शब्द जन भी कहला फजीर के बोल जा अंजोर हो गल उजाला हो गल लाइट अंजोरिया अंजोरिया चांद के जो प्रकाश बा मूनलाइट अंजोरिया रात वो बोले जा ऐसा रात जहां पर चांद के ऊपर प्रकाश मिलेगा अंजोरिया अंटी अंटी यानी समाएगा विल इट एंटर एक में और दो शब्द लेव जा अंटकल अंटक गल टू ब्लॉक या फिर अटक गल बुझ सक बोले अटक गल उकर गला में उकर गला में मच्छी के कंटा अटक गल मच्छी के कंटा मच्छी कंटा हो कबीर जा कंटा हो जुन हाउ ए जुन नहीं खा जला क्रियोली में क्या बोले जाओ करा हाँ ओकर पीका मच्छी के पीका मच्छी के कंटा गला में अटक गल फिर एगो और शब्द ले जा अनबन अनबन बा यानी दूजना में अनबन मान एक दूजना के बात नहीं मानत हो जा अन के बन अन के बन कोई के नाम हम अन के बन कब कोई इधर उधर बचियाला तो ओकर नाम डाल दिया जा अन के बन हम जानी रहे जना के ओकर नाम अन के बन अभी सुनत हुई तो ओकरा नमस्ते बोल दिला प्यार से बोलन जा ओकरा प्यार से अंड भंड कर दिलक यानी तहस नहस अनभन या फिर ई भी बोला वो अनभन बचाता अनभन बचाता अनभन माने वो कोनो मतलब नहीं नॉनसेंस बचाता अनभन बचाता ई शब्द सुने अंदर अंदर बोले जा घर के अंदर बाऊ तो आरो को अर्थ अंदर दूसर का अर्थ जाने ला अंदर एगो अंदर तो है जिसे घर के अंदर बा हाँ जो बाहर के उकर विलोम है अंदर तो और भोजपुरी में उगो अर्थ अंदर के अंदर महकता जब कोनो चीज सर जला तो कैसे महकेला अंदर अंदर महकेला अंदर हाँ दुर्गंध बैड स्मेल अवे और अंतराल अंतराल यानी मध्यांतर इंटरवल कोई बोला वो अंटी करता अंटी यानी जानबूझ के कुछ करता अंधरा अंधरा हाँ अंधरा एगो जो जो कि नहीं रोकेला अंधार तो जन भी कहला अंधार जब रात के अंधकार होला तो अंधार अंधुआ अंधुआ हरबरी में होला हरबरी में होना टेक क्विकली अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया

लुगवर्थ व्यर्थ विदाउट रीजन या फिर अंधेरिया रात ऐसे अकज बकज एकरा दुगु अर्थ में कब्जा ले जे कोई बोली अकज बकज नहीं खाइए जो चीज आई खाते नहीं जाइए इधर उधर की चीजें अकज बकज या फिर भी कब्जा बोले अकज बकज बचाता वो भी नहीं था कुछ बचाता अकज बकज बचाता अगबका गई ले अगबका गई ले यानी नहीं जाना था कुछ हो वो नहीं आशा करत हल कि ओकर संगे ई हो तो अगबका गल तनिको नहीं जानता कुछ करी और वह अकेले दुकेले अकेले दुकेले अकेले दुकेले माने अपने अखा अखा अखा मॉरिशस जाने लंजा कि धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के संजू भाई सहायता देवे लंजा अखा होल अखियान अखियान निरखना टू एडमायर अगरम बगरम अगरम बगरम है हम सुन ले हैं चाचा लोग के दादा लोग के शब्द के प्रयोग करे अगरम बगरम तरह तरह के अगरम बगरम के खाए के हजार रखल बा अगरम बगरम के अगरम बगरम के बुला लेल बा भला चौथारी में बोले बोले रहल बीस बीस जना आई तो उ एक बीस आदमी आन दिलक अगरम बगरम के लेके चला अंग्राता अंग्राता अंग्रता अंग्रता यानी बहुत दुलार से बिगाड़ना अंग्राता अगम जानी इधर कोई है अगम जानी फोटेल जो नागे से बोले बोले जा हई होई हव होई अगम जानी अगाड़ी अगाड़ी आगे आगे अग्याल बा उत अग्याल बा आग उगलता अग्याल बा माने टू बी एंग्री क्रोधित होना अगोरे की अगोरे देखे के साथ बैठना अटक गल अटक गैल ये बोली सा नहीं अटक गैल अट अट करता अट अट अट अट ये बहुत प्रयोग होल भाई जब धला कुछ नहीं जानत कुछ करब त अट अट अट अट नहीं कर सीधे काम काम पे आओ वो कर संगे अट अट नहीं कर लग फिर अदब से यानी इज्जत से अदब से अधीन में यानी वश में उकर अधीन में चलाल बा उ छोकरा उ छोकरी के अधीन में चलाल बा अंडर वन्स थम अन के कन बना देलक अन के कन बना देलक यानी उकरा बिगाड़ देलक तेकरे संगे धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के जा परी पूरा करब जा सब कोई के धन्यवाद दुआ जा जितना कोई हमके कार्यक्रम सुनला जा और सीखला जा बहुत कुछ हमनी के सहयोगी संजू के धन्यवाद फिर मिलब जाए गो नवा कार्यक्रम लेके धरोहर के सरोवर तबले भोजपुरी बोलते रहिया भोजपुरी सीखते रहिया RM3 Radio.

0: अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। इसका वजन करीब 4 टन है। चंद्रमा से टकराने पर करीब 10 लाख किलोग्राम धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है। हालांकि ये टक्कर नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी। नासा ने कहा कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड इक्वानियोमी 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड के रामचंद्र कसिगन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान इक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोड बुबासा में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड के सुरेश रामगुलाम की मृत्यु हो गई है। वे लातूकनिग पॉइंटू साहब के निवासी हैं। लोग उन्हें सुरेश कंट्रैक्टर के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के दौरान एलियंसन बुबासे से उठाई गई और अंतिम संस्कार के लिए इसी समय सिपाही भूली वाले तिपत की शमशान भूमि ले जाई जा रही है। एलियो स्ट्रीट सीते लोआजो फ्लोरियाल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी इंदसिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामजतन, लोग उन्हें देवरानी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के बल्कि कल गुरुवार को दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान सीते लोआजो फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

नमस्कार श्रोताओं, बुधवार का दिन 5 अगस्त आज की तारीख और आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बुधवार के दिन हम स्वास्थ्यवर्धक बातें करते हैं, स्वास्थ्य को लगकर कुछ ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और जी हाँ, जैसे कहते हैं ना कि शरीर का स्वास्थ्य जितना आवश्यक होता है, मानसिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से हमारे दांतों की देखभाल

0: करना, हमारा ओरल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी होता है। और ओरल हेल्थ अगर हम ध्यान ना दें तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर आज की चर्चा का कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा ताजू मेवाजी, आज के इस कार्यक्रम को हमारे साथ वे आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल हम उनसे बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: और आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए और आज हम ओरल हेल्थ पर बात करने वाले हैं, ओरल हाइजीन पर बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, ओरल हाइजीन ओवरऑल क्या है?
1: ओरल हाइजीन का मतलब सिर्फ दांत नहीं है, हम लोगों का पूरा जो मतलब जो हमारे दांत है, मसूड़े हैं, हमारा जुबान है, वो सब ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो बस दांत पे ध्यान देते हैं, नहीं, हम लोगों को लाइक दो बार ब्रश करना, ऊपर से फ्लॉसिंग वगैरह करना और जुबान को भी ठीक से साफ करना, वो सब ओरल हाइजीन का पार्ट होता है। तो ये सब करना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे कि हम लोग ओरल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं।
0: यानी केवल सिर्फ ब्रश करना ये ज़रूरी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। और जैसे डॉक्टर जी कहा गया, एक स्लोगन है कि दांत खराब तो पेट खराब, और मुंह की सफाई अपने हमारे जो पूरा शरीर है उसके स्वास्थ्य से कनेक्टेड होती है, तो इस पर आप थोड़ा सा खुलासा करें।
1: जो हमारा मुंह है ना, ये होता है दरवाज़ा है पूरा शरीर का ना। हम लोग सब कुछ यहाँ मुंह से ही डालते हैं, तभी पूरा शरीर में जाएगा। अब इतना है कि अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, अगर हमें मान लो दांतों में इन्फेक्शन हो गया, दांतों में जितने भी सड़न वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन हो गए हैं, अब वो जो इन्फेक्शन जो है पूरा शरीर के अंदर जाता है तो फैलेगा। और यही दिक्कत होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह, वो सब जो है ना उसको और भी इंक्रीज़ कर लेता है।
0: डेफिनेटली
1: किसी को मतलब डायबिटीज़ उसे तो और भी मतलब होते हैं कि हो सकते हैं उनको। और ये भी है ना कि अगर दांत नहीं है मुंह में तो कोई खाना कैसे खाएगा?
0: सही बात।
1: अब ये है कि ठीक से हम चबा नहीं पाएंगे, डाइजेशन की दिक्कत होती है, गैस के वगैरह इशू होते हैं, तो इसलिए दांत जर्म बोलते हैं कि दांत ज़रूरी है।
0: दांत मतलब दांतों की सुरक्षा मुंह की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हो कि वो गेटवे है, और अगर यहाँ कुछ खराबी है तो जो अंदर होगा वो
1: और भी खराब हो जाएगा।
0: और अगर हम अपने दांतों की सफाई पर ध्यान ना दें तो कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं डॉक्टर जी?
1: फर्स्ट थिंग मैं यही बोलूँगी, दांतों में सड़न जो कैविटीज़ बोलते हैं ना, वो ये तो फर्स्ट थिंग है
0: जी।
1: जो हम सब इसीलिए तो आते हैं कि चलो मेरे दांत में ना ब्लैक सा दिखने लगा है, तो कैविटीज़ एक तो ये, मुंह से बदबू आना, अगर मुंह से बदबू आने लगे तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे बात करने के लिए, और ब्रश करेंगे मसूड़ों से खून आना लगेगा, लाइक ब्लीडिंग गम्स जो बोलते हैं वो होगा, और बाद में ये है कि दांत जो हिलने लगते हैं, एक बार हिलने लगे तो बाद में ये होगा कि दांत निकालना पड़ेगा और हम लोग अपने दांतों को लूज करने लगते हैं।
0: बिल्कुल मतलब तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने एक दांत को नहीं कहीं पर मतलब किसी कारण उखाड़ना पड़ा तो आगे चलकर आपके और भी दांतों को वो प्रॉब्लम दे सकता है।
1: ये है ना कि दांत को क्यों उखाड़ना पड़ा, यह है कि कभी कभी जो कैलकुलस हम लोग बोलते हैं टाटा वगैरह, वो जम जाता है वहाँ पे, तो वो जो मसूड़े होते हैं ना वो नीचे होने लगते हैं, दांत को छोड़ने लगते हैं, तो दांत इसकी वजह से हिलने लगते हैं,
0: ढीले हो जाते हैं।
1: अब ढीले हो गए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चलो साफ कर लेते हैं, स्केलिंग करा देते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या पता वो मसूर जो है ना वो गम जो है फिर से अपना जगह ले लेगा, पर नहीं होता, तब ये हम निकाल देते हैं, और बाकी के दांत पे भी कैलकुलस जमे होते हैं तो बस निकालना पड़ता है फिर।
0: तो यानी एक तरह से देखा जाए तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये टाटर को का जमना ही कहीं ना कहीं आपके दांतों को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, तो उसको जैसे शुरू से ही आपको रेगुलरली उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
1: इसे हमेशा बोलते हैं चेकअप कराना, डेंटिस्ट के पास जाना, ये सब अगर डेंटिस्ट चेक करेंगे बताएंगे आपको तो वो
0: समस्या नहीं होगी। हाँ। और लॉन्ग रन तक आपके दांत जैसे हैं वैसे सुरक्षित रहेंगे। तो जैसे डॉक्टर जी अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, बच्चों की जब हम बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, तो उनके लिए ओरल हाइजीन बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तब की बात अगर करें, या डायबिटिक है स्पेशली तब की बात अगर हम करें, तो ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है।
1: बच्चों से शुरू करती हूँ, बच्चों में नए मिलती फाती है।
0: बिल्कुल।
1: अब उनका है जो एनामेल होता है ना, जो शुरू का जो व्हाइट पार्ट दिखता है, वो हम मतलब शुरू में हम लोगों की तरह थिक नहीं होता, थोड़ा सा थिन होता है.

0: और बच्चों का क्या है, मीठा ज़्यादा खाएंगे और अभी अभी दांत आए और अभी से केरीज वगैरह हो गए तभी दिक्कत होती है, दर्द होता है उनको। तो बच्चों में यही ध्यान देना पड़ता है कि वे जो टूथपेस्ट उनके लिए होता है वो यूज़ करें, जो फ्लोराइड वाला होता है वो यूज़ करेंगे, अपना ब्रश जो बच्चों का आता है वो यूज़ करें तो अपना दांतों का ध्यान रख सकता है। अब जो बुज़ुर्गों का होता है उनको ऑलरेडी कुछ कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, मान लो अगर बीमारी में बीमारी भी ना हो, कुछ कुछ दवाइयाँ जो वे लोग खाते हैं जो उनका जो सलाइवेशन होता है ना वो अलग हो जाता है, तो अब मुँह की सलाइवेशन चेंज हो गया हो तो अब यही है कि कुछ भी मुँह जो है ड्राई माउथ जैसे होता है तो कुछ खाते हैं ना तो वो अटकता रहता है मुँह में, जब अटकता रहता है तो वो जमा हो जाता है तो केरीज उनको जल्दी होती है। अब ये है कि वो जो सलाइवा वो एक फ्लश जैसा है, लुब्रिकेंट है मुँह के अंदर, अब जो भी कैलकुलस ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा हो गया तो उनका वैसे जैसे मसूरें नीचे हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि चलो उनके लिए। और डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना उनको इन्फेक्शन जल्दी पड़ जाती है, कुछ भी चाहे मुंह का हो कि उनको जल्दी पड़ जाती है,
1: तो इसीलिए टेंडेंसी उनको प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए। हाँ,
0: तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो आए डेंटिस्ट के यहाँ जाए, चेकअप करें, और अगर मान लो जो स्केलिंग बोलते हैं ना वो उनके लिए अच्छा है, ज़रूरी है कि करें, हम लोग चेक करें ताकि आगे से ऐसा इन्फेक्शन ना हो को आगे जाके उनको और भी दिक्कत करे।
1: तो डॉक्टर जी लगभग कितने समय में यानी कितने अंतराल में उनको एक डेंटल चेकअप होना बहुत जरूरी
0: है? हम लोग बोलते हैं कि हर साल में एक बार, हो सके तो हर 6 महीने, नहीं तो साल में एक बार जरूर, मतलब चेकअप,
1: रेगुलर चेकअप
0: जी। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट, वो लोग आते ही हैं क्लिनिक पे, तो वो लोग आए हम चेकअप कर लेंगे, उनको जो ट्रीटमेंट देना है दे भी देंगे, उनको बताएंगे भी क्या,
1: क्योंकि ये एक तरह से कई बार ऐसा होता है कि दांतों का जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत खराब हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा कैविटीज बढ़ जाती है, तब जाकर हमें पता चलता है।
0: सबको यही है कि अब मेरे मुँह से बदबू आ रहा है, तब मैं डेंटिस्ट के यहाँ जाऊंगा, ऐसा कि अब पेन हो रहा है तब आते हैं, इससे पहले कि कोई नहीं आता, बोलता है एक चेकअप करा दीजिए प्लीज, कोई नहीं आता उसके
1: बहुत लिए। बहुत रेयर लोग होते हैं। तो डॉक्टर जी जब एक टाइम था जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली ब्रश कितनी बार करना चाहिए और ब्रश करने का तरीका, सही तरीका क्या होना चाहिए?
0: सच बोलूँ, आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, हम अभी भी जा रहे हैं स्कूल में, हम लोग जाते हैं स्कूल में, सब बच्चों को से बात करते हैं और उनको सिखाते भी हैं कैसे ब्रश करना। फर्स्ट ही मैं ये बोलूँगी बच्चों को अपना ब्रश यूज़ करना, जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश वो यूज़ करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ब्रश को आप लीजिए, 45 डिग्रीज को अपने मसूरों के पास रखिए, सर्कुलर मोशन, सिंपल सर्कुलर मोशन कीजिए हर दांतों पे, सर्कुलर मोशन, गोल गोल जैसे बोलते हैं ना, वो करने का सब दांतों पे, सामने पीछे टंग के पास, और जो चूइंग वाला पोर्शन है ना जिसपे मास्टिक, उसके सब पोर्शन पे सर्कुलर मोशन आराम से, और ज़्यादा प्रेशर ना लगाए। कुछ लोगों को ये है ना प्रेशर जितना मैं लगाऊँ इतना
1: मतलब मेरे दांत चमकेंगे,
0: वही डेफिनेटली नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं चमकेगा,
1: बिल्कुल।
0: ये करने का दो बार सुबह। अब कुछ लोग हैं जो है सुबह खाना खाने से पहले, नाश्ता से पहले, नाश्ता के बाद ब्रश करते हैं जो भी उनको अच्छा लगे, और फिर रात को सोने से पहले।
1: ओके, मतलब मेनली दो बार होता है
0: मेन ये है, रात को सोने से पहले डेफिनेटली, खाना खाने के बाद नहीं, सोने से पहले
1: आप ब्रश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फूड पार्टिकल्स है अगर रह जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे जमा हो जाता है तो सड़ने लगते हैं दांत। तो बिल्कुल जैसे दांतों का ब्रश करना हम स्कूल से सीखते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग आज तक उस आदत को पाले हुए हैं। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि दांतों को जो साफ करने का तरीका है सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है, दांतों को गोल गोल सर्कुलर मोशन में उनको क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। और इतना ही नहीं, हर दांत को आप मतलब हर दांत के लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालें और क्लीन करें, लगभग 2 से 3 मिनट लगती हैं आपको ठीक से ब्रश करने के लिए। और कई बार ऐसा भी, हमने बहुत ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं जहाँ पर डॉक्टर ने हमें ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और दांतों को इस कदर घिसते हैं जैसे कि साली धो रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। बिल्कुल आपके दांतों का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो एक सॉफ्ट ब्रश के माध्यम से होना चाहिए। और आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम। आज हमारे साथ डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा ताजू जी जुड़ी हुई हैं जो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। और जी हाँ, जब हम ब्रश की बात करते हैं डॉक्टर जी, जब हम आजकल तो मार्केट में आप देखिए ब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश,

0: फ्लॉस करने के इतने सारे उपकरण आ चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो दांतों को क्लीन करना या माउथ को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस इन सारे प्रोडक्ट्स में से मेन क्या होना चाहिए?
1: सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अलग अलग। ब्रश, फर्स्ट थिंग मैं ब्रश ही बोलूँगी, ब्रश करना ज़रूरी है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
0: सही,
1: दो बार जैसे हमने बताया, ऐसे आप बोल रहे थे दो से तीन मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग 10 मिनट तक भी ब्रश करते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: कई बार आपने देखा होगा कि कितने लोगों के तो ब्रश पूरे फट गए होते हैं,
1: वो पूरे खुल गए। ऐसा लगता कि ऐसा बोले बहुत साली कर रहे थे, वैसे ही हो रहा था। तो इसलिए नहीं, एक ऊपर से बच्चों के लिए उनका, जैसे मैंने बताया, उनका टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट जो हमेशा फ्लोराइड वाला होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अब बच्चे जो है एज के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो जब बेबी था उसका तब वो, मतलब जब तक वो सब उसके परमानेंट टीफ नहीं आ जाते ना, हमेशा बोलते हैं कि तब तक उनको एडल्ट वाला टूथपेस्ट ना दें। तब से कुछ भी यूज़ करें चलेगा, लेकिन बच्चों का अलग से।
0: अलग से।
1: और जब ब्रश कर लेते हैं ना, कुछ लोग अपना जो टंग जो है ना सुबह, वो साफ नहीं करते। वो ज़रूरी है, टंग क्लीनर, मतलब जो हमारा जो टंग स्क्रेपर आता है ना, वो यूज़ करना। उसमें ये उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें वो जो सिलिकॉन के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं,
0: स्टील के आते हैं, बहुत सारे प्रकार।
1: स्टील का ये होता है कभी कभार
0: छिल जाती है,
1: वही कट जाता है, तो अब खून आते हैं, तो उसकी वजह से स्मेल आ सकती है मुँह में से।
0: ओके,
1: तो वो अलग चीज़ है। अब हम आएंगे उस पर फ्लॉसिंग पे। ब्रश, फ्लॉस जो है ना, फ्लॉस ज़रूरी है, क्योंकि दांतों के बीच में जितना भी हम लोग ब्रश करेंगे वो ठीक से साफ नहीं होता। अब फ्लॉस जो है उसके बीच में हम लगाएंगे दांतों के बीच में, तो जितना भी खाना कुछ हो वो निकल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: चलो दो बार नहीं कर सकते, वंस अ डे, शाम को सबको टाइम मिलता है, सुबह तो टाइम नहीं है किसी के पास, तो तब हम लोग कर सकते हैं। और जो हम लोग बोलते हैं माउथवॉश,
0: जी
1: माउथवॉश जो है, अगर आपको डेंटिस्ट बोल रहा हो तब यूज करने का।
0: ओके ओके।
1: इतना है ना कि कुछ कुछ आते हैं जो बस फ्लेवर्ड मिंट वगैरह है, वो चलो कोई यूज कर सकता है, बस अगर उनको लगता है कि बैड ब्रेफ आ रहा है, लेकिन ये उसका लाइक रीजन नहीं है।
0: ओके।
1: तो इसीलिए जो माउथवॉश होती है उसमें एक कंपोनेंट जो क्लोरहेक्सिडिन जो हम लोग बोलते हैं,
0: जी,
1: वो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं।
0: ओके।
1: तो इसी का कारण होता है, कभी किसी को ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं माउथवॉश यूज करने के लिए।
0: ओके।
1: लेकिन जैसे अगर डेंटिस्ट बोले तब,
0: ओके,
1: नहीं तो थोड़ा सा लुकवार्म पानी में नमक डाल के अब उससे
0: रिंस कर सकते हैं।
1: इजीएस्ट,
0: मोस्ट सबसे इजी, सभी के घर में नमक होता है, सभी के घर में पानी होता है, तो ये एक तरह से वो कम्प्लीटली आपके जो माउथ के जो बैक्टीरिया है उसे भी क्लीन कर देता है। तो डॉक्टर जी, हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अगर डिटेल में बता सके कि फ्लॉसिंग जो है, फ्लॉसिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं शायद ना भी जानते हों कि फ्लॉसिंग एग्जैक्टली क्या है, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सके।
1: फ्लॉसिंग, चलो अगर फ्लॉसिंग जो है नॉर्मली एक फ्रेज जैसा ना, जिफिल जैसे बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि चलो टू फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा जो लेंथ आपको चाहिए वो आप पहले एक डिब्बा में आता है, उसको जितना चाहिए आपको उसको तोड़ लें टू फिंगर्स के बीच में ऐसे रोल करके, फिर आप दांतों के बीच में
0: उसे फंसा कर आगे पीछे
1: करें, फिर नीचे फिर लें। लेकिन हम लोगों के पास ना फ्लॉस पिक आती है, जो फार्मेसीज में मिलता है। फ्लॉस पिक मच ईजी है, मतलब आसानी से हम लोग यूज करते हैं उसको।
0: बिल्कुल।
1: वो वैसे ही एक फ्लॉस होल्डर होता है वो, आप उसको बस पकड़िए और दांतों के बीच में डालिए और आसानी से,
0: और वो वन यूज होता है।
1: अगर मुझे अगर बुजुर्गों को बोलना है तो मुझे ये सबसे आसान लगता है। एक तो उनके जब मैं बोलूंगी कि चलो इतना फ्रेड लेना है, इतना करना है, नहीं, फ्लॉस पिक आराम से, लेकिन बस फ्लॉस वाला पार्ट यूज करना है।
0: जी जी।
1: उनका ये कि दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सा
0: पॉइंटेड होता है,
1: तो वो लेके अगर डालेंगे तो इन्फेक्शन करने
0: वो हो सकता है कि वो आपके मसूड़ों में घाव कर दे। बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसलिए हम अब फ्लॉसिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि माउथ पिक जो टूथ पिक होता है ना, वो यूज नहीं करने का। कुछ लोग होते हैं कि सीधा खाना खा लिया, टूथ पिक लेते हैं,
0: फिर दांतों को क्लीन करते हैं,
1: जो गम्स होते हैं ना उसमें हम लोग उसको चोट पहुंचा देते हैं। नहीं, जैसे मेरे पापा करते हैं, मैं आपको वो जो जैसे कि कोई भी दवाई खाता है ना, वो जो मेटल वाला पार्ट नहीं होता उसको वैसे टर्न
0: करके फिर उससे दांत क्लीन करते हैं, तो वो भी डेंजरस है क्योंकि जैसे खासकर जब हम डायबिटिक लोगों के लिए बात करें तो ये कहीं ना कहीं उनके मसूड़ों को घाव पहुंचा सकता है, और जैसे

0: डायबिटिक लोगों को इन्फेक्शन प्रोन ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके मुंह के छालों को बढ़ा सकती हैं, मुंह में घाव कर सकती है। और जहां हम छालों की बात करते हैं, तो आए दिन बहुत सारे लोगों को छाले हो जाने की संभावनाएं भी होती है। अभी थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि छालों का होना क्या कारण संकेत करता है, क्या सूचना देता है, और अगर हम इन छालों को छोड़ दें तो क्या ये तब्दील होकर और बड़ा घाव बन सकता है, मुश्किल में डाल सकता है। आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं, आते हैं एक गीत के ब्रेक के बाद।
1: मोरिस देश के हम छोड़ के ला फ्रांस गईली, वही पे रह गईली कहूं न फिर गईली, वही पे रह गईली कहूं

0: आज की चर्चा कार्यक्रम। आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें इस वक्त सहयोग मिल रहा है। टेक्निक पर हमारे साथ है फैजान जी, साथ है प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर जिनेश जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर पूजा ताजू जो एक डेंटल सर्जन है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि कई बार ब्रश करने से, कई बार हमारी ज़ुबान को साफ करने से कई बार ऐसा होता है कि कुछ खून निकल आता है और थोड़े ही दिनों के बाद उस पर एक छोटा सा छाला जम जाता है, तो छाला होना ये क्यों होता है आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। और अगर छाला बढ़ने लगे या आए दिन, बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या है कि छाले ठीक नहीं होते, आए दिन छाले उनके मुंह में पड़ते रहते हैं, तो क्या ये कोई संकेत या सूचना देता है कि हमारी ओरल हेल्थ मुश्किल में है? आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को आए दिन छाले पड़ते रहते हैं मुंह में, तो ये क्या संकेत देता है?
1: एक तो ये हो सकता है कि शायद ब्रश जब कर रहा हो ना, तो बार बार अपने आप को हर्ट कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। वही आइदर ये, या फिर ये हो सकता है कि उसमें कुछ दांत जो है ना शार्प हो गए हो, मान लो थोड़ा सा टूट गया हो या फिर थोड़ा सा केरीज हो गया, वो शार्प हो गया, बार बार जब वहां पे टकरा रहा है तो उसमें से छाले हो रहे हैं। ये हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि जैसे बोलते हैं कि जो छाले होते हैं ना बॉडी के, जब अंदर कुछ हो रहा हो तो वो मुंह में दिखेगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आइदर वो जो मतलब जो भी है, ज्यादा तीखा खा रहे हो, कुछ ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से,
0: पेट खराब है
1: इसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो ये भी है कि विटामिन के डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, तो कुछ कुछ विटामिन के डेफिशिएंसी होते हैं तो मुंह में छाले होने लगते हैं।
0: मतलब बहुत सारे कारण है,
1: बहुत सारे कारण
0: है। उसके लिए हमें डायग्नोस प्रॉपरली करना चाहिए, तब जाकर पता चलता है। तो क्या डॉक्टर जी, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आए दिन जो छाले होते हैं, कई सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े छाले मुंह में पड़ जाते हैं, तो क्या ये आगे चलकर कोई कैंसरियस फॉर्म ले सकता है या कोई ऐसी खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर सकता है?
1: इतना मैं बोलूंगी कि अगर कुछ ऐसा होना तो पहले चेकअप करा लेना चाहिए हमारे पास या फिर डॉक्टर के पास, ताकि हम लोग देखें कि क्यों हो रहा है। एक तो कि हिस्ट्री लेंगे हम कि क्यों हुआ, कब से हो रहा है और क्या ये मतलब लगातार होता रहता है। ऐसे जब हम लोग पूछेंगे तब अगर होगा तो हम लोग स्पेशलिस्ट के यहाँ भेजते हैं कि वो लोग देखेंगे, कुछ बायोप्सी वगैरह कुछ कराना हो, कुछ आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है। नहीं तो मैंने ये होता है कि कुछ डेफिशिएंसीज होते हैं या फिर कि अंदर कुछ हो रहा हो तब मुंह में जो रिफ्लेक्ट होता है।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर जी, जब हम दांतों की दुर्गंध की बात, मुंह में दुर्गंध आना, कई सारे ऐसे लोग हैं भले हालांकि दो बार तीन बार ब्रश करते हैं पर मुंह में उनको लगातार दुर्गंध आती रहती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है?
1: हमारे ना कि मुख्य कारण ये है कि प्लाक और टार्टार जो बोलते हैं, जो कैलकुलस बोलते हैं, वो हमारे मुंह में आ जाता है, प्लाक आ जाता है, लेकिन जो प्लाक जो है टाइम के साथ ये सख्त हो जाता है, सॉलिफाई हो जाता है, तो वो कैलकुलस बन जाता है, तो वो दांत में जमा हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन का एक मेन सोर्स होता है। अब इसी में, उसी कैलकुलस में सब कुछ जमा होता है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो जितना भी कोई ब्रश करेगा ये जो टाटा कैलकुलस होता है ना वो नहीं निकलता, तो इसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आती रहेगी। ये है। नहीं तो और एक रीजन ये है कि मान लो हमारे दांत आ रहे हैं, टीथ जो है ना, मान लो हमारे विजडम टीथ आ रहे हैं, तो वो खून नहीं आ जाता, तो इसकी वजह से भी हम ब्रश भी करेंगे तो बार बार वो जो गम है, वो जो खुल गया है ना, उसमें से ब्लड आ रहा हो और वो ब्लड मुंह में रहता है, उससे भी दुर्गंध आती है।
0: और डॉक्टर जी, मान लीजिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, बहुत हैवी डोज दवाइयाँ हैं, खासकर डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, क्या इन दवाओं के कारण भी उनके मुंह से दुर्गंध आना स्वाभाविक है?
1: जी, आ सकता है।

है जरूर ये है ना, एक तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ कुछ दवाइयों से ना उनकी जो गम जो है ना फूल जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है। अब स्वेलिंग आ गई तो उस वैसे जैसे स्वेलिंग आती है, जैसे टच भी करेंगे ना तो खून आता है।

0: जैसे खाने जो है ड्राइनेस की वजह से खाने वगैरह रहते हैं मुंह में, तो इसकी वजह से भी उनको दुर्गा ना सकती है. तो यही मेन है कि कुछ भी हो, अगर खासकर से वो जो गम जो है अगर फूलने लगता है तो हम बोलते हैं कि एक बार जो इनका डॉक्टर है उनको हम लोग बोलते जाके दिखाइए आप, अगर चेंज करना है दवाई कुछ हो तो वो लोग चेंज करते हैं फिर.
1: और डॉक्टर जी जब हम आए दिन आपने देखा होगा आजकल तो जैसे हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह का है, कोल्ड ड्रिंक्स लेना आए दिन, हम तो दिन में मतलब कई बार कुछ लोगों का तो मतलब पानी पीना कम होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेवन है वो ज्यादा होता है, अल्कोहल का जो सेवन है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, कुछ ऐसे भी हैं जो धूम्रपान करते हैं, तो क्या ये सारी चीजों के कारण भी दांतों में मतलब दांतों को खराब होना
0: दुर्गानाना
1: वो सब
0: और फिर मानो शुगर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है ना, एक तो शुगर इतना ज्यादा है उसमें तो दांत में कैविटीज होना बहुत
1: स्वाभाविक
0: है. तो एक तो ये है, उससे हम लोगों को दुर्गंध भी आ सकती है
1: जी.
0: अब जो हमारा एनामेल होता है ना जो व्हाइट वाला पोर्शन है, जितने भी हम लोग शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, जितना भी मतलब सोडा होता है ना उसमें, तो उससे वो कमज़ोर हो जाता है, तो जल्दी हम लोगों के केरीज हो जाते हैं. ये मतलब अब वो जो चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं,
1: बिल्कुल मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे चलो कोल्ड ड्रिंक्स ये तो है पर चाय कॉफ़ी भी बहुत हद से ज़्यादा अगर ले ली जाए तो क्या ये
0: स्टेन्स हो जाते हैं. मेन ये है स्टेन्स हम लोग को सामने चलो दिख नहीं रहा, लेकिन पीछे दांत के पीछे से ना वहाँ पे बहुत सारा
1: पीलापन वगैरह जम जाता,
0: पीलापन नहीं काला ही हो जाता है वो, तो
1: ओहो मतलब पूरी तरह से वो खराब कर देता है,
0: खराब कर देते हैं और वो एक लेयर जम जाता है वहाँ पे. तो वो जब वैसे हो जाता है तो ये है ना कि अब उससे भी दुर्गंध भी आएगी और वो जो स्टेन जो है उनको मतलब वो जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला वो भी फील होगा. अब तंबाकू पे आएंगे, तंबाकू पे यही है, उसमें इतने सारे चीज़ें हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन सब जो है सब धूम्रपान वगैरह करते ही हैं.
1: सही बात.
0: तो उससे भी जो फर्स्ट यही है कि उनका जो है ना उनका जो सैलिवेशन सेम उनका अलग हो जाता है, थिक होता है सेम उनका वो, इसी इसकी वजह से ही उनको ज़्यादा मतलब मुंह से दुर्गंध आती है और उनको कैविटीज़ भी जल्दी हो जाता है.
1: और मैं समझती हूँ जो तंबाकू का सेवन करते हैं धूम्रपान करते हैं उनको आगे चलकर ओरल कैंसर होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं.
0: हम लोग बोलते हैं कैसे वो पैकेट पे भी लिखा है ना,
1: बिल्कुल
0: फिर भी वो लोग करते हैं. और उनका ये भी मॉरिशस में चलो इतना नहीं है, वो लोग जो पान मसाला वाला खाते हैं यहाँ पे इतना नहीं है, तो वो लाइक वो ज्यादा
1: डेंजरस
0: था, लेकिन फिर भी स्मोकिंग जो है वो तो मुंह में चेंजेस करता ही आता है. और वो लोग इतना है कि जहाँ पे वो लोग वो सिगरेट लगाते हैं ना वहाँ पे आपको वो जो मसूर है ना उनमें हम लोग चेंजेस दिखने लगता है, जैसे मतलब वहाँ पे पूरा काला हो जाता है, ग्रे हो जाता है, उनको पता नहीं चलता. जब वो लोग आते हैं ना बोलते हैं कि चलो वहाँ पे घाव हो गया कुछ हो गया, तब हम लोग बोलते हैं कि चलो और जांच
1: कराकर पता चलता है, तब जाकर पता चलता है कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खराब हो चुका है. डॉक्टर जी यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम छालों की बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आया है कि जब हमें छाले पड़ जाते हैं या आए दिन जिनको छाले पड़ते हैं, कई बार घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये ले लो बाइकार्बोनेट ले लो उससे आप गागल कर लो, या फिर कोई ऐसे फिजी ड्रिंक्स ले लो उससे आप गागल कर लो, तो डॉक्टर जी इस पर मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगी क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नमक वाले पानी से गागल कर लो, क्या मतलब कौन सा हमें करना चाहिए अगर घरेलू नुस्खे अगर हम इस्तेमाल करते हैं?
0: घरेलू को बोलूँगी मैं इतना ही बोलूँगी नमक पानी थोड़ा सा लुकवाम पानी में नमक डालो आप रिंस कर सकते हैं, लेकिन ये जलेगा डेफिनेटली जलेगा. लेकिन जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है और मैं इतना
1: एडवाइस
0: दे सकती हूँ कि नहीं मत कीजिए आप,
1: क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक होता है, आई बिलीव
0: एसिडिक होता है, मेरे ख्याल से उनको और भी दर्द होगा, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम रिलीफ मेरे ख्याल से उनको और भी पेन होगा इसकी वजह से.
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो सकता है कि वर्सन कर दे,
0: वर्सन कर दे
1: ये आपके घाव को या छालों को और भी ज्यादा उनको खराब कर दे या बिल्कुल, और ये पेनफुल होता है, तो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा छोटा भी होता है तब भी
0: पेनफुल होता है. और अब वो कुछ मतलब जो वहाँ पे एसिडिक टाइप लगा रहे हैं तो और भी पेन होगा उनको,
1: बिल्कुल.
0: इसलिए मैं ये बोलूंगी लुकवार्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिए आप, वो काफ़ी होगा।
1: बिल्कुल। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूजा ताजू जी, जो कि एक डेंटल सर्जन हैं, और बिल्कुल जैसे आजकल हमने देखा है बहुत सारे घरेलू नुस्खों में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि कहीं छाला पड़ गया तो कहते हैं कि एगो बिकोबनाद लेके तनी गगारीजे कर द, या एगो कोनो फिजी ड्रिंक लेके गगारीजे कर द, लेकिन कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, बेटर है आप थोड़ा सा नमक वाला पानी

गुनगुना पानी लेकर अगर आप अपने मुंह को क्लीन कर देते हैं तो ये ज़्यादा आपको रिलीफ देता है इंस्टेड ऑफ वो चीज़ को ख़राब करने के बजाय। और इसी के साथ चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: चलिए आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं। डॉक्टर पूजा आज हमारे साथ हैं, जो कि खुद एक डेंटल सर्जन है। और ओरल कैंसर के लक्षण क्या है, ओरल कैंसर होता कैसे है, इस पर थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भी ओरल हाइजीन का ही एक हिस्सा है। तो डॉक्टर पूजा हमें ज़रूर बताइए कि ओरल कैंसर्स जो होते हैं उनके लक्षण शुरुआती तौर पर कैसे आपको पता चले।
1: ये हो सकता है कि किसी को मुँह में ना कुछ घाव हो गया हो, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहा, ये मतलब शायद हो सकता है,
0: मतलब एक संकेत दे सकता है।
1: संकेत दे सकता है, क्योंकि कुछ भी घाव ठीक नहीं हो रहा तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ये, या फिर कुछ दाग सफ़ेद या फिर लाल, कुछ दाग जो आपको मतलब यहाँ ही है, जा ही नहीं रहा, आप ब्रश भी करते हैं, मतलब जो हमारे जो चीक के उस पर वहाँ पर हो गया हो, या फिर ये भी हो सके गांठ फील हो रहा हो, कोई भी गांठ फिर आ रहा हो, मतलब कहीं भी कहीं पे भी,
0: मसूड़ों में या कहीं पर भी,
1: या फिर शायद गले के पास गांठ फिर रहा हो और ये मतलब अचानक से आ गया, ये भी कुछ हो सकता है। या फिर जैसे बोलते हैं ना कि आवाज में बदलाव आ गया, हम लोग बात कर रहे हैं अचानक से,
0: और मतलब वो पर्सिस्टिंग है, बहुत दिनों से है,
1: बहुत दिनों से है, और वो बदलाव आ गया, वो समझ में भी नहीं आया कि ऐसे कैसे हो रहा है ये, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को मुंह खोलने में दिक्कत हो रही हो,
0: मतलब दर्द महसूस हो रहा है,
1: दर्द हो रहा है, या फिर अचानक से कुछ तो अजीब है कि मुझे दिक्कत हो रही है मुंह, जैसे पहले मैं काफी मुंह जो है काफी
0: वाइड खोल पाते थे, अब मतलब बड़ा मुंह खोल पाते थे, पर अब वो नहीं खुल पा रहा है,
1: खुल पा रहा है। तो ये सब जो है ना हमेशा बोलते हैं जांच कराना चाहिए,
0: मतलब ये सिम्टम्स है, हम ये नहीं कहते कि यही हो सकता है कि आपको कैंसर हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग प्रोग्राम में सुनकर भी कई सारे लोग अपने दिमाग में मनगढ़ंत ऐसी बातें हो सकती है कि भाई ये दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कैंसर हो, ऐसा नहीं है, पर इसकी जाँच करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम जब ओरल कैंसर के बारे में जानते हैं, इसी के साथ हम ये भी जान लें कि जो हमारी गर्भवती महिलाएँ हैं, जो जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, कई बार उनको भी डेंटल केयर के लिए कहा जाता है। डेंटल केयर क्यों आवश्यक होता है महिलाओं में जो गर्भवती
1: हो, जो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें है, उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ना
0: जी, जी।
1: इतना कुछ उनको कुछ जो है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनको सब कुछ नया नया सा लग रहा है,
0: बिल्कुल।
1: अब मुझे उनमें भी चेंजेस आती हैं कि कुछ ये हो सकता है कि उनके जो गम थोड़े से फूलने लगते हो हार्मोनल की वजह से, ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये सब ना जांच करानी चाहिए। इसी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी उनको पता चल गया ना कि प्रेग्नेंट, वे लोग प्रेग्नेंट हैं, उनको मतलब वो जो बुक वगैरह मिलता है ना वो लोग लेके आए, हम लोग चेक करते हैं, उनको बोलते भी हैं कि अगर कुछ कराना वगैरह हो तो, लेकिन मेनली उनका ये हार्मोनल के साथ, हार्मोनल के
0: यानी एक तरह से वो ट्रीटमेंट में उनको ये बता दें कि उनके मसूड़े जो हैं, उनके दांत जो हैं, वो स्वस्थ हैं ताकि आगे चलकर उनको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, तो कई सारे लोग जो है अपनी अपॉइंटमेंट स्किप कर देते हैं या नहीं जाना पसंद करते हैं, या डर के मारे कि डेंटिस्ट के पास जाना, कई सारे लोगों के लिए जैसे बोलता ना कुस्मो नाइटमेयर्स, बहुत सारे लोग डरते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन देखा जाए तो ये सारी अपनी सुविधाओं के लिए है और आपके ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी के साथ डॉक्टर जी, जैसे जब हम स्केलिंग के बात करते हैं तो स्केलिंग करवाते रहना, यानी उसका कितना ड्यूरेशन में हमें स्केलिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे आपने बताया कि टाटर जमा हो जाता है और ये आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकता है, तो स्केलिंग हमेशा कितने समय के अंतराल में हमें करवाना चाहिए?
1: मैं ये बोलूँगी साल में एक बार जब चेकअप कराने आते हैं ना, अगर हम लोग को लगता है कि चलो इतना सा वो जो प्लाक जमा हो गया थोड़ा सा मतलब थिक होने लगा, क्लीन कराना ज़रूरी है। इसलिए स्केलिंग जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ना चेकअप कराने आइएगा, हम लोग को लगता है स्केलिंग कराना है तो ज़रूर हम लोग, लेकिन अगर कोई अपने ठीक से फ्लॉस

0: भी करता हो, ठीक से ब्रश भी करता हो, इसका मतलब नहीं है कि उनको स्केलिंग करना जरूरी नहीं है। तो स्केलिंग कराना जरूरी, खास कर से जब वो प्लाक और टाटा जमा हो गया हो, तो साल में एक बार मेरे ख्याल से काफ़ी है।
1: हाँ। और डॉक्टर जी, जब हम रूट प्लांट, आजकल आपने देखा है कि रूट कनाल करवाते हैं, रूट कनाल क्या होता है और रूट कनाल क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए?
0: रूट कनाल तभी हम लोग करते हैं कि जब आप जो इन्फेक्शन होता है ना दांत में, वो पल्प तक चला गया हो। मतलब वो जो दांत में जो डिफरेंट लेयर होता है ना, शुरू में जब एनामेल में ही है तब हम लोग फिलिंग थोड़ा सा फिलिंग कर लेते हैं, अगर डेंटिक तक भी चला है तब भी हम लोग फिलिंग करते हैं, लेकिन जब वो पल्प को छू लेता है तभी बहुत दर्द होता है।
1: बिल्कुल।
0: तब हम लोग रूट कनाल के लिए बोलते हैं, तब हम लोग स्पेशलिस्ट होते हैं ना हॉस्पिटल में, उनके यहाँ हम लोग भेजते हैं। यही है ना कि रूट कनाल के साथ जो दांत है वो आपके मुंह में ही है, ऐसा नहीं कि दांत जो है वो पल्प टच हो गया निकालना पड़ा, नहीं। रूट कनाल ये एक सुविधा है जो हम लोग हमेशा एनकरेज भी करते हैं कि आप रूट कनाल कराइए। दांत में पेन हो रहा है, पेन होता है हाँ, लेकिन रूट कनाल कराइए आप। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पेन हो रहा है बस दांत को निकालना चाहते हैं, नहीं। हम एडवाइस करते हैं कि चलो टच हो गया पल्प, कोई ना, हम लोग रूट कनाल के लिए भेज देते हैं।
1: और क्या रूट कनाल की सुविधा यहाँ मॉरिशस में अब अवेलेबल है?
0: जी, जितने भी हॉस्पिटल है ना हमारे, हम सब में एक एक जो एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं इनको, वो लोग सब है और हम लोग उनको रिफर करते हैं।
1: ओके।
0: और ये सुविधा है और हम लोग एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को रूट कनाल कराने के लिए।
1: डॉक्टर जी, कई सारे बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट एक बार में फिनिश नहीं होती, मतलब उनको हर बार अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि भाई आज आए हो आप, थोड़ा सा ये मतलब उसमें क्लीन करके फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद आओ, और लगातार मतलब हर 2 हफ्तों के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो डॉक्टर जी, इसका क्या कारण है कि मतलब हर बार एक बार में ट्रीटमेंट फिनिश नहीं होती, उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है?
0: मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई आता है जो वो दांत है ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, मैं बोल रही हूँ कि उसका पल्प टच हो गया हो, लेकिन काफ़ी बड़ा कैविटी है, अब उसमें दवाइयाँ लगाते हैं, फिर उसके ऊपर जो बोलते हैं पौसमा करते हैं, तो सेम एक दवाई लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग एक और एक फिलिंग चढ़ाते हैं जो टेम्पररी होता है वो, तो वो जो दवाई है ना उसको 21 डेज रखते हैं नॉर्मली।
1: ओके।
0: बुक के हिसाब से 21 डेज, लेकिन हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसा है, तो अपने अंदाजे से फिर हम लोग 2 हफ्ते के बाद भी हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये एक कारण हो सकती है कि हम लोग क्यों ट्रीटमेंट उसी दिन नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है छोटा सा कैविटी है, छोटू सा है, बिल्कुल ड्रिल करूँगी बस फिलिंग कर देती हूँ, लेकिन अगर डीप हो, ये एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी है कि ब्लीडिंग हो रहा हो, मसूरों में से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो मैं जो भी फिलिंग करूँगी ना वो रहने वाला नहीं है। इसके वजह से हम लोग सेम थोड़ा सा टेम्पररी फिलिंग डालते हैं कि वहाँ पे उस ब्लीडिंग पे, उस मसूर पे काम करेगा, फिर हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं कि चलो आप इतने दिन में आएंगे, वो ठीक भी हो जाएगा और आपका फिलिंग कर देंगे। क्योंकि जब परमानेंट फिलिंग है ना, उसको ठीक से दांत में रहने के लिए जो भी अराउंड सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर उसमें जब कि सलाइवा वगैरह है, खून चला जाएगा, तो वो निकल जाएगा कुछ दिनों में, फिर ये भी सुनने में आएगा कि डेंटिस्ट ने ठीक से काम नहीं किया।
1: इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है इतने दिनों तक, मतलब उसकी ट्रीटमेंट को जारी रखा जाता है, ताकि धीरे धीरे करते हुए उसकी ट्रीटमेंट को कम्प्लीट करें।
0: अब ये भी है ना, मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग चारों तरफ काम नहीं करते। हम जिस तरह मैं राइट साइड काम कर रही हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि चलो आप इस तरफ खाइएगा मत आज, अगर मैं लेफ्ट राइट दोनों काम कर लूँ तो कैसे खाएंगे?
1: सही बात है, सही
0: इसी वजह की शायद मैं, हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि मैंने इस तरह काम, तो आपको 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट दे रही हूँ उस तरफ काम करने के लिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: ये एक रीजन भी होता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कई बार होता है कि पेन भी बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2-3 दांत एक ही दिन में ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक तरह से इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है।
0: दांत भी अगर निकालना पड़े तो अगर बोलते हैं कि 3 दांत निकाल दो, तो ये पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं अगर कैसा वो कर सकते हैं तो हम लोग करते हैं, लेकिन
1: रेकमेंड करते हैं कि मतलब उसकी जो ट्रीटमेंट है ग्रेजुअल, धीरे धीरे होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो लगभग हम आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा तेजू मेवा जो हैं आज हमारे साथ जुड़ी, जो कि एक डेंटल सर्जन है। डॉक्टर जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को ओरल हाइजीन पर अगर आप समअप करना चाहें आज के इस प्रोग्राम को, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं इतना बोलूँगी कि जो स्वस्थ दांत है ना, सिर्फ एक सुंदर मुस्कान।

0: बस नहीं देता हम लोग के ये ना पूरा शरीर को जितना भी पूरे बॉडी को झोड़ा जो मुंह है दांत है वो सब प्रभावित पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इतना बोलूँगी कि यहाँ पे हमारे पास मॉरिशस में लगभग 55 डेंटिस्ट लाइक
1: सर्विसेज
0: हैं, डेंटिस्ट है
1: जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा
0: जी तो 55 काफी ज्यादा है।
1: हाँ हाँ।
0: मतलब आप उसका उपयोग कीजिए आए हम लोग। और ये है कि हम लोग चेकअप करते हैं और शुरू में अगर हम लोग को दिख गया कि चलो छोटा सा कैविटी है हम लोगों ने फिलिंग कर दिया तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: अगर खैर स्केलिंग भी कराना हो हमने देख लिया करा दिया तो ना ब्लीडिंग होगी तो इसीलिए जल्दी अगर कुछ पकड़ लेते हैं
1: हाँ
0: तो दिक्कत नहीं होगी।
1: बिल्कुल। समय से पहले पेन
0: भी नहीं होगा और मेन यह है कि किसी को दर्द भी नहीं लगेगा डेंटिस्ट से।
1: सही बात।
0: जब कोई आता है ना पेन में है तब दर्द लगता है डेंटिस्ट से बोलते हैं उसने मुझे दर्द कर मतलब
1: दर्द में थे और दर्द बिल्कुल जब आप उसको छुओगे तो भी वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तरह से दर्द होने से पहले ही अगर आप रेगुलर चेकअप करवा दें तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपके दांतों की सड़न बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि सीरियस हो जाए या जो भी है आपके आपकी जो ओरल हेल्थ है जो ओरल हाइजीन है उसको समय दर समय आप उसको चेक करवाते रहें डेंटिस्ट के पास जाते रहें। और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि हो सके तो 6 महीने में या तो फिर 1 साल में पर्याप्त है यानी आप जा सकते हो। और 55 यानी 55 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर दांतों की चेकअप की जाती है डेंटिस्ट जो है हमारे जो उपलब्ध है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा तेजूजी से आज का हमारा ये कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग प्राप्त हुआ। तकनीक पर हमारे साथ जुड़े रहे फैजान, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा बानो और जिनेश हमारे प्रोड्यूसर जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रहे हैं। तो आपने इस कार्यक्रम को सुना समझा बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे पूजा जी को जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई। आपकी और आपकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और बेस्ट विशेस के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करेंगे। पुनः उपस्थित होंगे एक नए कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। लापरेही के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी दुख का माहौल है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही, साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की। ये जांच का एक अहम चरण है ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। मॉरिशस के बंदरगाह की गतिविधियों में लगातार 2 साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2026 के बीच माल की आवाजाही, कंटेनरों के कारोबार और जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराने जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान जहाजों को 11 लाख टन ईंधन बेचा गया। वहीं 2024

0: 2020-2025 के वित्तीय वर्ष में एमपीए ने 639.6 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया। इन अच्छे नतीजों के बाद अब फोर्ट विलियम में नया मछली बंदरगाह बनाने और कंटेनर रखने की जगह बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल शाम अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। ग्रैनवर नॉर्थ वेस्ट में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन देश की एकता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता का भी आह्वान किया। कथित रिश्वतखोरी और अवैध धन के मामले में आज दो पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया। राजकुमार सिंह, जिन्हें 2025 में चर्चित रिवॉर्ड मनी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, और रंजीत देवजी पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर फायदा लेने का अस्थाई आरोप लगाया गया है। ये मामला मार्च 2024 में वाली दिपखत में की गई एक तलाशी और वहां से बड़ी रकम बरामद होने से जुड़ा हुआ है। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा आज चंद्रमा से टकरा गया। करीब 4 टन वजनी ये हिस्सा पिछले साल रॉकेट प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था। वैज्ञानिक अब दूरबीनों की मदद से इस टक्कर की पुष्टि करने में जुटे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। इन खबरों को हम बेशक विस्तार देंगे 6:30 के समाचारों में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: Continuous music.
2: नमस्कार दोस्तों, शाम के 4:03 हुए हैं और शाम की सुनहरी बेला में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और आप सुन रहे हैं
3: से मिले दिल।
2: जी हाँ, दिल से मिले दिल, जहां हर गीत दिल की धड़कनों से जुड़ता है और हर बात दिल को छू जाती है। मैं हूं अनुराधा और अगले 55 मिनट तक हम साथ बिताएंगे प्यार, अपनापन, यादों और बेहतरीन संगीत के साथ। तो मुस्कुराइए, आराम से बैठिए और इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ दिल से दिल मिलते हैं।

रेडियो मनोरंजन 94.5 छः 98.2 मेगा हर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम। अगर हमारी बातें और गीत

आपके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं तो जुड़े रहिए क्योंकि अभी तो महफिल और भी रंगीन होने वाली है। चलिए ये अगली भेंट साथ मिलकर के सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की मधुर आवाजों में।

जहाँ दोस्तों अभी आपने आजाद फिल्म का गीत सुना। शाम के 4:16 हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो बेझिझक 4028070 पर आप फोन कर सकते हैं या फिर मैसेजेस भेजना है व्हाट्सएप के जरिए 5250600 पर। हर शाम कुछ खास होती है लेकिन आपकी मौजूदगी इसे और भी खूबसूरत बना देती है, तो बने रहिएगा दिल से मिले दिल

जिंदगी की भागदौड़ में अपने लिए कुछ पल निकालिएगा और इन मधुर गीतों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत सा तराना है जो सुनते ही कुछ बीते हुए लम्हों को जरूर याद करेंगे आप।

यंग दोस्तों, अगर कोई गीत आपको किसी अपने की याद दिला दे तो समझे हमारी कोशिश सफल हुई। मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए दिल से मिले दिल प्रोग्राम।

मेरा दिल भर सोना है, सोने को ना खोना है, ये लाइन तो दिल को छू गई। ऐसा लगता है जैसे दिल के बात बोलती हो, पूरे इमोशंस और प्यार से भरा हुआ गाना।

0: और हाँ दोस्तों आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद
1: Continuous music. RM3.
2: दिल से मिले दिल.
0: अनु जी नमस्ते. मैं कविता. कविता आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कविता मोचता के रहने वाली हैं. आपके प्रोग्राम के सभी गाने लाजवाब हैं. बहुत धन्यवाद. प्लीज़ आप मेरे लिए एक महल हो सपनों का फिल्म का ये गाना चला देना. दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया ये गाना हमें बहुत पसंद है. प्लीज़ चला दीजिएगा. तो ज़रूर आपने इतनी प्यार से मैसेज भेजा है कविता जी. मैं ज़रूर आपके लिए ये गाना ज़रूर चला दूँगी. और एक श्रोता है. हेलो अनुराधा जी. सुपर्ब. इन गानों में बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं. गुड मेमोरीज विज फैमिली. हार्ट टचिंग. थैंक यू जी. सरिता फ्रॉम गुडलैंड्स. तो जितने श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं उन सबों के नाम हम करते हैं प्यारे प्यारे ये सारे गाने आप ही लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आप ही के प्यार सहयोग और सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया जाता है.

मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है दोस्तों, और जब साथ अपनों की दुआओं का होता है, हर शाम नई उम्मीद लेकर आए, यही दिल से दिल की सच्ची दुआ होती है। यह शेर माता अलबे की अनिल जी की

0: शाम के 4:42 हुए हैं।
1: 94.95.6 98.2 आप सुन रहे

0: है RM3।
1: दिल से मिले दिल।
2: अरब पेश है बॉलीवुड फिल्म्स ये वादा रहा का सदाबहार और बेहद लोकप्रिय गीत किशोर कुमार आशा भोसले की मधुर आवाजों में। वैसे ये गाना रोहवान ने डेडिकेट किया लवली सॉन्ग टू माय लवली वाइफ तबस्सुम, उनकी बर्थडे है आज। तो चलिए रोहान जी आपके लिए ये गाना आरती बर्मन के शानदार संगीत से सजा है ये वादा रहा। तो आइए प्यार भरी यादों से भरे इस खूबसूरत नगमे का आनंद लेते हैं।

दोस्तों आज काजोल जी हाँ अभिनेत्री काजोल बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनका पूरा नाम काजोल मुखर्जी देवगन है और आज 5 अगस्त हैं और काजोल की आज सालगिरह है, बर्थडे है। और उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में गिनी जाती हैं। तो इनके नाम पर करते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत।

वैसे दोस्तों आज के दिल से मिले दिल में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस एक घंटे की हमारी मुलाकात ने आपकी शाम को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। आपका साथ और आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और वैसे अपनों के साथ दिल से जुड़े रहिएगा। बस ठीक 5 बजे विश्वानंद जी आपका साथ देंगे। तो अब मैं अनुराधा आपसे अनुमति चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते तानवी यमी रिद्धि लेहक ईशानवी मोक्ष द्वेना प्रिशा और एनी के नाम पे ये अंतिम भेंट। तो मेरी ओर से नमस्कार और शुभ संध्या।

0: त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, अतः इनका त्याग करना चाहिए। श्रोताओं, इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना विनाश का कारण बनता है। क्रोध या गुस्से में लिया गया निर्णय प्रायः गलत ही होता है। लोभः पापस्य कारणम्, अर्थात लोभ या लालच करना पाप का कारण माना गया है। स्वर्णयुक्त हिरण का अस्तित्व ही नहीं होता, फिर भी सीता माँ स्वर्णिम हिरण को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाती हैं और बाद में वे अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करती हैं। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। प्रोफेसर राजशेखर भी अपनी स्वरचित कहानी लेकर हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, आज एक विशेष दिन है, क्योंकि आज ही हमारा 50वां कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इसलिए हम महात्मा गांधी संस्थान और MBC के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। इन्हीं के सौजन्य से हमारी आवाज़ हर सप्ताह आप तक पहुंच रही है। तो अब देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का है, क्योंकि आज हम अनकही एक कहानी का 50वां एपिसोड लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। इस सुखद यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर श्रोताओं ने हमें अपना स्नेह, विश्वास और निरंतर प्रोत्साहन दिया है। आपने हमारी कहानियाँ न केवल सुनी हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन से जोड़ा, अपने विचार हम तक पहुँचाए और इस कार्यक्रम को सफल बना दिया। इसके लिए हम अपने सभी श्रोताओं के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। इन 50 कार्यक्रमों में हमने इतिहास, पुराण, संस्कृति, पर्यावरण, विज्ञान, महापुरुषों, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी अनेक प्रेरक कहानियां आपके साथ साझा की हैं। हमारा प्रयास सदैव यही रहा कि प्रत्येक कहानी केवल मनोरंजन न करे, बल्कि जीवन को नई दृष्टि, नई प्रेरणा और सकारात्मक दिशा भी प्रदान करे। हाँ प्रिय श्रोतागण, आज इसी के अगले चरण में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मारीच की कथा। मारीच का जीवन हमें यह बताता है कि जब मनुष्य सत्य का मार्ग छोड़कर छल और अधर्म का साथ देता है, तब उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता भी उसे विनाश से नहीं बचा पाती। यह कहानी केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन की एक शाश्वत सीख है। तो आइए इस विशेष 50वें एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए और सुनिए एक ऐसी कथा जो हमें सत्य, विवेक और सही निर्णय का महत्व समझाती है। मारीच की कथा त्रेता युग के विशाल दंडकारण्य की भयावह छाया से लेकर हिंद महासागर के उत्तुंग तरंगों से घिरे स्वर्णिम मॉरिशस तक की यह यात्रा केवल भूगोल का विस्तार नहीं, बल्कि पश्चाताप, परिवर्तन और भक्ति की एक अलौकिक गाथा है। यह कथा है रामायण के उस विवादित पात्र मारीच की, जिसने

0: दंभ और कपट से जीवन की शुरुआत की, परंतु श्री राम के एक बाण से ही और उसके स्पर्श मात्र से ही उसका जीवन दर्शन सदा के लिए बदल गया। यह कथा हमें उस पौराणिक लोक कथा से भी जोड़ती है जहां मारीच का अंतिम अवसान हुआ और कालांतर में वही निर्जन भूभाग भारतीय गिरमिटिया पूर्वजों के पसीने व आस्था से सिंचित होकर आज का नया मॉरिशस बना। दंडकारण्य के भयानक वन में तारका के पुत्र मारीच और सुबाहु का भयानक उपद्रव कायम था। यज्ञ वेदी से उठती पवित्र सुगंध के बीच अचानक आकाश में काले बादल छाने लगते। मारीच और सुबाहु अपने भयानक रूप में प्रकट होते हैं और सुबाहु कहता है, भ्राता मारीच, तनिक नीचे देखिए, ये दुर्बल मुनि पुनः अपनी वेदियां सजाकर हवन की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। क्या इन्हें हमारी माता तारका के भय का तनिक भी स्मरण नहीं रहा? मारीच भी अहंकार से हंसते हुए कहता है,
1: भ्राता सुबाहु, संसार का नियम यही है कि निर्बल सदा बलिष्ठ के आगे झुकता है। महर्षि विश्वामित्र और उनके शिष्य भूल गए हैं कि यह दंडकारण्य हमारी माता तारका का साम्राज्य है। हमारी माता के आते ही दिशाएं कांपने लगती हैं और सूर्य का प्रकाश भी छिप जाता है। जब स्वयं प्रकृति तारका से भयभीत है तो इन मुनियों का दुस्साहस देखिए।
0: दोनों भाई आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तभी तारका का अदृश्य से गूंजती भयानक गर्जना के साथ प्रस्तुत होना और यह कहना, पुत्रों, विलंब किस बात का? इन ऋषियों के धार्मिक अनुष्ठानों को भ्रष्ट कर दो। इनकी यज्ञियों पर रक्त, मांस और अस्थियों की वर्षा करो, ताकि कोई भी इस वन में धर्म का नाम लेने का साहस न कर सके।
1: माते, आपका आदेश शिरोधार्य है। भ्राता सुबाहु, उठो, अपनी कपट विद्या और मायावी शक्ति से आकाश में घोर अंधकार उत्पन्न करो। आज हम इन हवन कुंडों को अपवित्र कर ऋषियों के मन में ऐसा भय बिठा देंगे कि उनका तपोबल सदा के लिए खंडित हो जाएगा।
0: मारीच का आदेश सुनते ही सुबाहु भी कह उठता है, सत्य कहा भ्राता, ना यहाँ कोई मंत्र गूंजेगा, ना ही कोई आहुति दी जाएगी। यहाँ केवल हमारा अधर्म और राक्षसी अधिपत्य ही अंतिम सत्य रहेगा। तारका के आतंक और मारी सुबाहु के छल से दंडकारण्य का वातावरण दिन प्रतिदिन भयावह होता गया। ऋषियों की वेदियां खंडित होती रहीं और धर्म का सूर्य राक्षसी अंधकार में छिपने लगा। परंतु अधर्म की यह लीला अधिक दिनों तक चलने वाली ना थी। ऋषियों के संताप और प्रकृति की आर्त पुकार सुनकर महर्षि विश्वामित्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के हेतु मांगते हैं। बालक श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सिद्धश्रम में प्रवेश करते हैं, जहां पहली बार दंभी मारीच का सामना साक्षात धर्म स्वरूप श्री राम से होने वाला था। सिद्धश्रम में यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना होती है और मारीच तथा सुबाहु अपने राक्षसी दल के साथ रक्त और मांस की वर्षा करने लगते हैं। सुबाहु अहंकार में हंसता है, भ्राता मारीच, देखो ये मुनि फिर से यज्ञ रच रहे थे। आओ अपनी मायावी शक्ति से इस वेदी को अपवित्र कर देते हैं।
1: सत्य कहा भ्राता, ये मुनि कभी नहीं सुधरेंगे। परंतु ठहरो, यज्ञ वेदी के समीप धनुष लिए वे दो सुकुमार बालक कौन खड़े हैं? कौन है वे? क्या विश्वामित्र ने बच्चों को हमारी बलि चढ़ाने के लिए बुलाया है?
0: यज्ञ वेदी के पास से नीलमणि के समान कांति वाले राजकुमार श्री राम

0: अपना मानवास्त्र धनुष पर चढ़ाते हैं और बहुत ही गंभीर और शांत स्वर में श्री राम कहते हैं, हे अधर्मियों, महर्षि विश्वामित्र के इस पवित्र यज्ञ में विघ्न डालकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रित किया है। सुबाहों का अंत निश्चित है, परंतु मारीच, तुम्हें मैं जीवन दान देता हूं ताकि तुम राम के बाण का सामर्थ्य जान सको।
1: एक छोटा बालक मुझे चेतावनी दे रहा है। संभल कर राजकुमार, मारीच का क्रोध, अभी तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं।
0: श्री राम धनुष की प्रत्यंचा खींच कर बाण छोड़ते हैं। बाण की प्रचंड वायु मारीच की छाती से टकराती है। मारीच बिना किसी घाव के केवल उस बाण के प्रचंड वेग से उड़ने लगता है।
1: अरे, यह कैसा बाण है? इसमें अग्नि नहीं पर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। मेरी शक्ति, मेरी माया सब व्यर्थ हो गई। सुबाहु, कहाँ हो तुम?
0: सुबाहु श्री राम के अग्न्यास्त्र से भस्म हो जाता है। मारीच शत योजन सौ योजन दूर समुद्र पार जाकर गिरता है।
1: क्या हो रहा है? यह बालक सामान्य मनुष्य नहीं, साक्षात काल है। बाण बिना फल का था, पर फिर भी मुझे सौ योजन दूर फेंक दिया। अब जहां भी र और म अक्षर सुनाई देगा, वहां मारीच का हृदय भय से कांप उठेगा। मैं कभी उस राघव के सामने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं।

श्री राम के मानवास्त्र की अपार वायु शक्ति से उड़ा मारीच गगन मार्ग को चीरता हुआ शतयोजन दूर समुद्र तट पर जा गिरता है। बाण का प्रहार इतना प्रचंड था कि उसकी देह के साथ साथ उसका राक्षसी अहंकार भी चूर चूर हो गया। जब उसे होश आया तो आंखों के सामने भाई सुबाहु का अंत और श्री राम का अमानुषी तेज घूम रहा था। मृत्यु के भय और रघुनाथ की असीम शक्ति के एहसास ने मारीच की आत्मा को झकझोर कर

0: रख दिया। अब वह उपद्रवी राक्षस नहीं रहा। उसने अपने हिंसक शस्त्र और कपट विद्या को सदा के लिए त्याग दिया तथा शांत गोकर्ण क्षेत्र के एकांत वनों की ओर प्रस्थान कर गया। श्री राम के बाण से आहट होकर गिरा मारीच अब राक्षसी वस्त्र त्याग कर भगवा वस्त्र पहने और गले में रुद्राक्ष धारण किए मुनि वेश में बैठा है। उसका राक्षस मित्र विकट उससे मिलने आता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है, भ्राता मारीच, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तारका का शूरवीर पुत्र, जिसके नाम से कभी दंडकारण्य के ऋषि कांपते थे, आज गेरुए वस्त्र पहनकर मुनि बना बैठा है। क्या तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है?
1: विवेक नष्ट नहीं हुआ विकट, विवेक तो अब जागृत हुआ है। जिस अहंकार और राक्षसी प्रवृत्ति का तुम आभूषण समझकर बखान कर रहे हो, उसने मेरे भाई सुबाहु का के प्राण ले लिए और मुझे अधमरा कर दिया विकट, अधमरा कर दिया।
0: परंतु एक साधारण मानव बालक के भय से अपनी मर्यादा और कुल का त्याग? आओ भ्राता, हम पुनः अपनी सेना संगठित करें और उस अयोध्या के राजकुमार से बदला लें।
1: चुप हो जाओ विकट, चुप हो जाओ। राम नाम मत लो, वे सामान्य मानव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। उस विश्वामित्र के आश्रम में उनके बिना फल वाले बाण की प्रचंड वायु ने मुझे 100 योजन दूर समुद्र पार फेंक दिया। सोचो, कल्पना करो, यदि वे फल युक्त बाण चलाते तो मेरा क्या होता विकट, क्या होता?
0: मारीच की बात सुनकर विकट भी घबरा गया। तो क्या तुम जीवन भर इस एकांत तट पर इस तरह सन्यासी बनकर पड़े रहोगे?
1: हाँ विकट, अब यह गोकर्ण क्षेत्र ही मेरी शरण है। वृक्ष के पत्ते वायु से हिलते हैं तो मुझे लगता है राघव धनुष की प्रत्यंचा खींच रहे हैं। र और म वर्ण सुनते ही मेरे प्राण सूखने लगते हैं। अब केवल राम नाम का जप और यह तपस्वी जीवन ही मुझे शांति दे सकता है। राक्षस कर्म से केवल विनाश मिलता है, धर्म की शरण ही जीव का एकमात्र उद्धार है।
0: गोकर्ण के शांत वातावरण में वर्षों बीत गए। मारीच का जीवन अब ऋषियों की भांति अत्यंत सात्विक और राम नाम के काग्र जप में लीन हो चुका था। राम बाण का भय अब उसके लिए आत्म साक्षात्कार और भक्ति का संबल बन गया था। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। पंचवटी में शूर्पणखा के अपमान और खर दूषण के वध के बाद लंकापति रावण प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। श्री राम से बदला लेने और सीता हरण की अपनी दुष्ट योजना को सिद्ध करने के लिए रावण को एक मायावी छली की आवश्यकता थी। अंततः अपनी इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर रावण पुष्पक विमान पर सवार हो मारीच के शांत आश्रम की ओर बढ़ता है। मारीच अपनी कुटिया में राम नाम के ध्यान में लीन है। अचानक पुष्पक विमान की गड़गड़ाहट के साथ लंकापति रावण का आगमन होता है। रावण का मुख क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला से लाल है। मारीच को देखते ही रावण उबल पड़ता है। मातुल मारीच, उठो, तुम्हारी तपस्या का स्वांग अब बंद करो। उस अयोध्यावासी राम और उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट कर पूरे राक्षस कुल का अपमान किया है। तुम्हें तुरंत मेरी सहायता करनी होगी।
1: लंकाधिपति, शांत हो जाइए। राघव का नाम सुनकर ही मेरा हृदय कांप उठता है। आप उनसे कैसा वैर मोल ले रहे हैं, कैसी दुश्मनी है ये? वे सामान्य राजकुमार नहीं है लंकाधिपति, सामान्य राजकुमार नहीं है।
0: चुप रहो मारीच, पर्याप्त हुआ तुम्हारा भय। मैं लंका का स्वामी रावण हूं, जिसके भय से नवग्रह भी थर थर कांपते हैं। मेरी योजना सुनो, तुम्हें अपनी माया से एक सुंदर स्वर्ण मृग बनना होगा।

0: और सीता को आकर्षित करना होगा। जब राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे जाएंगे तब मैं पीछे से सीता का हरण कर लूंगा।
1: लंकाधिपति, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं। हे रावण, आप मेरी बात सुनिए। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। अनजाने में पूरे लंका राज्य और राक्षस कुल का सर्वनाश बुला रहे हैं आप। लंकाधिपति, सर्वनाश बुला रहे हैं। किसी पर स्त्री का हरण महापाप है। सीता का हरण लंका के विनाश का कारण बनेगा। आप मेरी बात मानिए, सुनिए मेरी बात को। राम से क्षमा मांग लीजिए, वे परम दयालु हैं, आपको भी क्षमा कर देंगे। लंकाधिपति, क्षमा कर देंगे।
0: मारीच की बात सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ जाता है। अपनी म्यान से तलवार खींचकर वो चिल्ला उठता है, मूर्ख मारीच, राजा के सम्मुख सेवक का कर्तव्य केवल आज्ञा पालन होता है, नीति का उपदेश देना नहीं। यदि तुमने मेरी योजना में विघ्न डाला या जाने से मना किया तो मेरी यह चंद्रहास तलवार अभी तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर देगी।
1: हे रावण, आप मेरी बात सुनिए। रावण की तलवार से मरना व्यर्थ और अधर्म की बलि चढ़ना है। इससे तो अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों बाण खाकर मोक्ष प्राप्त करूं, मोक्ष प्राप्त करूं।
0: रावण गहरी सांस लेता है और सांस लेने के बाद मारीच की तरफ देखता है। मारीच कहता है,
1: जैसी आपकी आज्ञा लंकाधिपति, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं।

0: रावण के कठोर धिक्कार और चंद्रहास खड़क के भय ने मारीच को विवश कर दिया, किंतु उसके मन में धर्म की ज्योति बुझी ना थी। उसने समझ लिया कि रावण के हाथों अधर्म की मृत्यु से अनंत गुना श्रेष्ठ श्री राम के कर कमलों से मुक्ति प्राप्त करना है। भारी मन और प्रभु के दर्शन की गुप्त लालसा लिए मारीच रावण के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर पंचवटी के शांत वनों की ओर प्रस्थान करता है। पंचवटी की पावन भूमि पर पहुँचते ही, जहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण विराजमान थे, मारीच अपनी मायावी शक्ति से एक अलौकिक कंचन मृग का रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। दंडकारण्य के सुरम्य वातावरण में मारीच रावण के साथ आता है। उसका मन घोर धर्म संकट में फंसा है। मारीच मन ही मन आत्मसंवाद करते हुए कहता है,
1: अहो भाग्य, आज जीवन के अंतिम मोड़ पर कैसा अद्भुत धर्म संकट खड़ा हुआ है। एक ओर दुराचारी रावण की खड्ग है जो मुझे अधर्म की मौत देना चाहती है, और दूसरी ओर साक्षात परब्रह्म श्री राम का बाण है जो मुझे जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त कर सकता है। नीच रावण के हाथों मरण निष्फल है, परंतु राघव के हाथों मृत्यु का अर्थ है परम गति, परम मोक्ष।
0: मारीच को देखते ही रावण गुस्से से कहता है, विलंब मत करो मारीच, अपनी माया का अंतिम और सबसे सुंदर रूप धारण करो। ऐसा मृग बनो जिसे देखकर सीता मोहित हो जाए।
1: जो आज्ञा लंकाधिपति।
0: मारीच अपनी राक्षसी माया से एक अलौकिक स्वर्ण मृग का रूप

धारण कर लेता है। उसकी त्वचा कंचन सी चमकती है, जिस पर मणियों जैसे धब्बे जड़े हैं। वह सीता जी के आश्रम के समीप अटखेलियां करने लगता है। मृग को देखकर हर्षित होकर माता सीता कहती हैं, आरिपुत्र तनिक देखिए, कितना अद्भुत और मनोहर मृग है यह।

0: अपनी भाभी सीता को यह कहते देखकर लक्ष्मण को थोड़ा संदेह होता है और वह कहते हैं, भ्राता राम, इस निर्जन वन में ऐसा कंचन मृग संभव ही नहीं है। यह अवश्य किसी मायावी राक्षस की कपट लीला है, कृपया सावधान रहें। श्री राम मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हारी आशंका उचित है, परंतु यदि यह मायावी राक्षस है तो इसका वध आवश्यक है, और यदि यह वास्तव में कोई अलौकिक जीव है तो वैदेही की इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम आश्रम और अपनी भाभी की रक्षा करो, मैं इस मृग के पीछे जाता हूं। यह कहकर श्री राम धनुष बाण लेकर स्वर्ण मृग रूपी मारीच के पीछे वन की घनता में प्रवेश करते हैं। मारीच श्री राम को देखकर आनंद और भय की मिश्रित भाव से छलांगे लगाने लगता है। मारीच श्री राम को अपने सम्मुख पाकर एक ओर जहां भक्ति भाव से बाव विभोर था, वहीं रावण की योजना अनुसार प्रभु को आश्रम से दूर ले जाने के लिए छलांगे लगाता हुआ घने जंगल की ओर भागने लगा। श्री राम भी उसकी चपलता और कपट लीला को भली भांति तार गए थे। जब मारी श्री राम को वन के अत्यंत गहन और एकांत क्षेत्र में ले आया, तब प्रभु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर एक अंतकारी दिव्य बाण का संधान किया। श्री राम कंचन मृग का पीछे पीछा करते हुए वन के बहुत भीतर तक आ चुके थे। जब मारी छलांगे लगाते हुए श्री राम को अत्यधिक दूर ले जाता है, तब श्री राम को लगता है कि यह जरूर ही कोई मायावी प्रपंच है, और वे अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींच लेते हैं। बाण छूटता है और सीधा मारीच रूपी मृग की छाती को भेद देता है। बाण लगते ही मृग का छद्म रूप विलीन हो जाता है और मारीच अपने विशाल राक्षसी रूप में पृथ्वी पर गिर पड़ता है। मारीच उस बाण के लगने के बाद अत्यंत तीव्र वेदना में रावण के वचन याद करते हुए कपट स्वर में चिल्लाते हुए कहता है,
1: हा सीते सीते, हा लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण सीते।
0: उस मायावी आवाज से आकाश गूंज उठता है। दूर आश्रम में बैठी सीता यह पुकार सुनकर व्याकुल हो जाती हैं, परंतु यहां बाण के स्पर्श मात्र से मारीच के भीतर का राक्षस भाव सदा के लिए भस्म हो जाता है। उसका हृदय निर्मल और भक्ति रस से भर जाता है। श्री राम मारीच के समीप आकर शांत और करुणामय स्वर में कहते हैं, मारीच, तुमने भय और छल के वशीभूत होकर यह आचरण किया, परंतु तुम्हारा अंत समीप है। हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भरकर प्रभु श्री राम के रूप को निहारते हुए मारीच कहता है,
2: हे प्रभु, हे दीन बंधु, रावण की आज्ञा तो केवल छल की थी, पर मेरी जीवात्मा तो जन्मांतर से आपके हाथों इस मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही थी विश्वामित्र के यज्ञ से लेकर आज तक आपका भय ही मेरी भक्ति बन गया था। मेरे पापों का प्रायश्चित आपके इस पावन बाण ने कर दिया।
0: मारीच की बात सुनकर भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वे बहुत ही प्यार से कहते हैं, मारीच, भय से ही सही,

0: तुमने निरंतर मेरा स्मरण किया है। तुमने अपने प्राणों की आहुति देकर सिद्ध कर दिया कि अंतकाल में जो मुझे याद करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। तुम्हारा यह भौतिक देह यहीं छूट रहा है, पर तुम्हारी चेतना मुक्त हो गई है।
1: जय श्री राम। हे राघव, आपकी अनुकंपा से मेरा राक्षस जन्म धन्य हुआ, धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ।
0: मारीच के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लोक परंपरा के अनुसार श्री राम के बाण के अद्भुत वेग और प्रभाव से मारीच का देह सुदूर दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर प्रवाहित हो जाती है। श्री राम के दिव्य बाण के प्रहार से मारीच का राक्षसी अस्तित्व विलीन हो गया और उसके शरीर सुदूर हिंद महासागर के निर्जन तरंगों की ओर बह निकला। युगों युगों तक लोक कथा के अनुसार वह पावन भूभाग लोक स्मृतियों में मारीच द्वीप के नाम से संजोया गया। समय का पहिया घूमा और औपनिवेशिक दौर में यही द्वीप पश्चिमी मानचित्रों पर मॉरिशस बनकर उभरा। 19वीं शताब्दी में जब भारत से हजारों गिरमिटिया पूर्वज अपनी जड़ों से उखड़कर यहाँ पहुँचे तो वे अपने साथ तुलसीकृत रामचरितमानस भी लाए। प्रचलित लोक कथा के अनुसार मारीच के अवसान की इस भूमि पर पहुँचकर उनके पसीने और राम भक्ति ने मॉरिशस को एक नए सांस्कृतिक तीर्थ के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। गंगा तालाब के शांत जल और किनारे बने विशाल शिव मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच दादाजी और आर्यन, जो आज का आधुनिक समय है, वहाँ अपने हाथ में तुलसीकृत रामचरितमानस की पुरानी प्रति लेकर बैठे हैं। आर्यन अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, हमारे पूर्वज भारत से हजारों मील दूर समुद्र पार कर इस सुंदर द्वीप पर आए थे। यहाँ चारों ओर गन्ने के खेत और नीला समुद्र है, फिर भी यहाँ रामायण की गूंज क्यों है? इस देश का नाम मॉरिशस कैसे पड़ा? दादाजी आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और अपने पोते के सिर पर हाथ रख कर कहते हैं,
1: बेटा, यह कोई साधारण भूमि नहीं है। हमारी लोक परंपराओं और प्राचीन लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि श्री राम के बाण से मोक्ष पाकर मारीच की देह और पवित्र आत्मा जिस सुदूर दक्षिणी सागर तट पर आई वही मारीच द्वीप कहलाया। कालांतर में जब यूरोपीय नाविक यहाँ आए तो नक्शों में यही नाम बदलकर मॉरिशस हो गया।
0: अद्भुत दादाजी, अद्भुत। तो क्या हमारे गिरमिटिया पूर्वज इस लोक कथा को जानते थे?
1: हाँ बेटा, 19वीं सदी में जब हमारे पूर्वजों को गिरमिट अर्थात अनुबंध के तहत जहाज़ों में भर कर लाया गया तो वे अत्यंत दुखी और भयभीत थे, पर जब वे आप्रवासी घाट पर उतरे तो उन्हें इस पौराणिक संबंध का बोध हुआ तो वे समझ गए कि जहाँ राम कथा का प्रसंग है वहाँ वे अकेले नहीं है। वे अपनी पोटली में रामचरितमानस लेकर आए थे।
0: फिर तो उन्होंने गन्ने के खेतों में पसीना बहाते हुए भी अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी।
1: बिल्कुल नहीं। दिन भर की हार तोड़ मजदूरी के बाद वे शाम को बैठकाओं में तुलसी मानस गाते थे। मारीच का अहंकार श्री राम के बाण से समाप्त हुआ था और हमारे पूर्वजों की भक्ति ने इस द्वीप को पवित्र धाम बना दिया। आज मॉरिशस का यह गंगा तालाब हमारी उसी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है।
0: अब मैं समझा दादाजी, नाम और युग भले बदल जाएं, पर राम कथा के तार हमारे मॉरिशस को

मारिच की कथा हमें यह गहन संदेश देती है कि अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों ना हो, अंततः उसके कर्म ही उसके विनाश का कारण बनते हैं। मारिच जानता था कि भगवान श्री राम धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। वह यह भी जानता था कि रावण का मार्ग अन्यायपूर्ण है, फिर भी भय, स्वार्थ और विवशता के कारण उसने असत्य का साथ दिया और स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता हरण की योजना का भाग बन गया। उसका अंत हमें यह

0: सिखाता है कि सत्य को जानकर भी उसका साथ न देना अंततः स्वयं के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है पर वही अस्थाई और कल्याणकारी होता है। गलत व्यक्ति का साथ देना स्वयं को भी संकट में डाल देता है। विवेक, साहस और नैतिकता ही जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं। क्षणिक लाभ के लिए किया गया अधर्म अंततः पश्चाताप का कारण बनता है। मारिच की कहानी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि जीवन के प्रत्येक निर्णय में हमें सत्य, धर्म और सदाचार को ही अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। तो हमारे प्रिय श्रोतागण, अब मुहावरे की बारी है। इस बार के जो मुहावरे हैं वे राम नाम से ही जुड़े हुए हैं। पहला मुहावरा है राम राम करना और दूसरा है राम राम हो जाना। फिर से सुन लीजिए, पहला है राम राम करना और दूसरा है राम राम हो जाना। इसका अर्थ आप स्वयं खोजेंगे और वाक में भी प्रयोग करके आप देखेंगे। पिछली बार जो मुहावरे पूछे गए थे वे मुहावरे गुरु से संबंधित थे जिसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे। पहला जो मुहावरा था गुरु गुर और चेला चीनी होना।
1: जी हाँ प्रोफेसर जी, इसका अर्थ है शिष्य का अपने गुरु से भी अधिक चतुर, ज्ञानी या आगे निकल जाना। और यदि इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो इस प्रकार से होगा, विज्ञान की इस प्रतियोगिता में छात्र ने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया, इसे ही कहते हैं गुरु गुड़ और चेला चीनी।
0: जी, और जो दूसरा मुहावरा था गुरु मंत्र देना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है कोई गुप्त सलाह, विशेष सीख या मंत्रणा देना। जैसे कारोबार शुरू करने से पहले उसने अपने बड़े भाई से सफलता का गुरु मंत्र ले लिया। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक हर कार्य में असफल हो रहा था। वह निराश होकर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे एक ही गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर छोटा कदम, स्मॉल स्टेप अवश्य बढ़ाओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन ने इस सलाह का ईमानदारी से पालन किया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। तब उसे समझ आया कि गुरु का सच्चा गुरु मंत्र जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: तो हमारे प्रिय श्रोतागण, गुरु विश्वा को हम हार्दिक बधाई देते हैं क्योंकि वे हर बार की भांति इस बार भी उन्होंने मुहावरे पर आधारित एक छोटी सी स्वरचित कहानी आपके सामने प्रस्तुत की।
1: धन्यवाद
0: आपको, इसके लिए आपका हृदय से आभार।
1: धन्यवाद।
0: गुरु विश्वा, आप खुद गुरु हैं और आपको पता है कि गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। संस्कृत में गुरु के बारे में क्या कहा गया है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?
1: जी हाँ अवश्य। संस्कृत में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब हम गुरु को ही ब्रह्मा मानते हैं, गुरु को ही विष्णु मानते हैं और गुरु को ही शिव मानते हैं।
0: जी,
1: इसके पीछे रहस्य क्या है? गुरु को हम ब्रह्मा इसलिए मानते हैं क्योंकि वे ही विचारों के रचयिता है, ज्ञान के रचयिता है, सृष्टिकर्ता है और हमारा पालन भी गुरु ही करते हैं अपने निर्देशों के द्वारा। और उसके साथ अज्ञान जो होता है, अंधकार रूपी अज्ञान, इग्नोरेंस, उसका नाश करने के लिए वे स्वयं शिव भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश की संज्ञा से संबोधित करते हैं और वे ही हमारे जीवन में परमात्मा के तुल्य होते हैं। प्रोफेसर जी, आपको ये भी याद होगा कि यदि कबीर जी ने कहा है कि यदि आपके सामने गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर दोनों सामने आ जाए तो आप किसका चयन करेंगे?
0: बिल्कुल,
1: चयन करेंगे हम गुरु का, क्योंकि

0: गुरु ही हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाते हैं
1: जी।
0: इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है
1: जी। कहते हैं कि गुरु ही वे प्रमुख व्यक्ति है
0: जी
1: जिसने ईश्वर के सत्य के बारे में हमें बताया। यदि उसने हमें सही रास्ता नहीं बताया होता तो हम ईश्वर के सत्य को
0: नहीं जान पाते।
1: कई लोगों को यह भ्रम की स्थिति होती है कि ईश्वर कौन है
0: जी।
1: मेरा मानना है कि हमारा ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहां से ईश्वर का ज्ञान प्रारंभ होता है।
0: जैसे विवेकानंद जी को ईश्वर के बारे में किसने बताया था? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने
1: जी। बिल्कुल,
0: ये एक सटीक उदाहरण
1: जी। तो हमारे प्रिय श्रोतागण, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए
0: जी
1: और उनका आदर सत्कार करना चाहिए, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारा मार्ग जीवन में प्रशस्त हो सके। तो अब हमारे प्रिय श्रोतागण के लिए आमंत्रण संदेश भी है। आज अनकही एक कहानी के 50वें एपिसोड के इस विशेष अवसर पर हम एक बार फिर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका स्नेह, आपका विश्वास और आपका निरंतर प्रोत्साहन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि आने वाले प्रत्येक एपिसोड में आपकी सहभागिता और भी बढ़े। यदि आपके पास कोई प्रेरक घटना, लोक कथा, पौराणिक प्रसंग, ऐतिहासिक कथा, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान, महापुरुषों या मानवीय मूल्यों से जुड़ी कोई अनकही कहानी है तो उसे हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। आइए इस 50वें पड़ाव पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अच्छी कहानियों के माध्यम से सत्य, संस्कृति, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। आप अपनी रचनाएँ professorrajshekhar@gmail.com पर भेज सकते हैं। एक बार फिर इस अविस्मरणीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण व आवश्यक जानकारियों और सूचनाओं के लिए हृदय की गहराई से आपको हम धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, कहा गया है, त्वज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यताम। अर्थात दुष्ट लोगों का साथ छोड़ो, सज्जनों का साथ ग्रहण करो, दिन रात पुण्य कर्म करो और जीवन की नश्वरता को सदैव स्मरण रखो। श्रोताओ, एक व्यक्ति की जैसी संगति होती है उसका व्यक्तित्व और उसका आचरण भी उसी के अनुरूप हो जाता है। दुर्जनों के साथ यदि प्रतिदिन किसी व्यक्ति का उठना बैठना हो तो यह बात निश्चित है कि एक दिन उसका पतन अवश्य होगा। बुरी संगति का प्रभाव तुरंत नहीं लेकिन निश्चित रूप से दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सज्जनों के सानिध्य में रहता है वह मन से पवित्र होता है और सदैव प्रगति, उन्नति के पथ पर अग्रसित रहता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को आजा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही दिलचस्प व रोचक कहानी लेकर आपके मध्य में हम उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लापरवाही में सी प्लेन हादसे के बाद जांच तेज, नेशनल कोस्ट गार्ड ने मलबे की तलाश जारी रखी और दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने का अभियान चलाया। इस बीच 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की मौत से शोक का माहौल बना हुआ है। मॉरिशस के बंदरगाह ने लगातार 2 वर्षों में गतिविधियों का नया रिकॉर्ड बनाया। कंटेनर कारोबार और जहाजों को ईंधन की आपूर्ति में बढ़ोतरी के साथ एमपीए ने अच्छा मुनाफा दर्ज किया। अब फोर्ट विलियम में नए मछली बंदरगाह और कंटेनर सेक्टर के विस्तार की तैयारी। मॉरिशस तेलुगु महासभा ने मनाया अपना 80वां स्थापना दिवस। समारोह में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका पर जोर देते हुए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। जूनियर मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद सिडनी पियर ने अपने राजनीतिक भविष्य पर दी पहली प्रतिक्रिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले रेमी फ्योये का स्वदेश लौटने पर शानदार स्वागत। उन्होंने 28 साल बाद मॉरिशस को इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिलाया है। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराया। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। लापरवाही के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी दुख का माहौल छाया हुआ है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही। साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की। ये जांच का अहम चरण है ताकि ये समझा जा सके

0: के कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले अभी सुर्खियों में कि मॉरिशस के बंदरगाह की गतिविधियों में लगातार 2 साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2026 के बीच माल की आवाजाही, कंटेनरों के कारोबार और जहाज़ों को ईंधन उपलब्ध कराने जैसे सभी प्रमुख सेक्टरों में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान जहाज़ों को 11 लाख टन ईंधन बेचा गया। वहीं 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में एमपीए ने 629.6 मिलियन रुपए का मुनाफा भी कमाया। इन अच्छे नतीजों के बाद अब फोर्ट विलियम में नया मछली बंदरगाह बनाने और कंटेनर रखने की जगह बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। सुनिए,
1: बंदरगाह ने अपना वित्त वर्ष रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ समाप्त किया। पिछले वर्ष की तरह जब 9.8 मिलियन टन माल की हैंडलिंग, 7 लाख कंटेनरों का संचालन और 4,000 से अधिक समुद्री जहाज़ों का आवागमन दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष 2025-2026 में बंदरगाह ने और बेहतर किया। इस दौरान माल यातायात 10 मिलियन टन पार कर गया, जबकि कंटेनरों की संख्या बढ़कर 7,90,000 तक पहुंच गई। इसके अलावा कई जहाज़ों ने पोर्ट में ईंधन भरा, जिसकी कुल मात्रा 1.1 मिलियन टन रही। एमपीए की महानिदेशिका अरुणा बनवारी रामसाहा ने कहा, बंकरिंग के लिए भी बहुत से जहाज पोर्ट में आते हैं, 4,100 से अधिक, 2,500 केवल बंकर के लिए आए अथवा अन्य सेवाओं के लिए। कई कारणों से पोर्ट में बंदरगाह फायदेमंद है, राजनीतिक स्थिरता, सेवा की किस्म, जलवायु को लेकर ज्यादा सुरक्षित है। डबान जैसे बंदरगाह में लंबी कतारें होती हैं। हालांकि वित्त वर्ष 2025-2026 की वार्षिक रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार एमपीए ने 629.6 मिलियन रुपए का लाभ अर्जित किया। इस उपलब्धि के पीछे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि रही। आयातित माल की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला, सीमेंट और गेहूँ सबसे प्रमुख रहे। उदाहरण के लिए इस अवधि के दौरान 7,95,000 टन सीमेंट मॉरिशस लाया गया। इन अच्छे परिणामों की बदौलत एमपीए की खुद की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की क्षमता बढ़ी है। अगले 5 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 5 बिलियन रुपए निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें फोर्ट विलियम भी शामिल हैं। फोर्ट विलियम में 50 हेक्टेयर से अधिक हैं। वहाँ एक तीसरे ड्राई डॉक की योजना निर्धारित है। एक फिशिंग पोर्ट भी कॉन्ट्रैक्टर पाने के लिए टेंडर पर काम किया जा रहा है। पोर्ट भी केवल व्यापार ही नहीं बल्कि क्रूज बंदरगाह भी हैं। इस अवधि में 47 क्रूज जहाज लगभग 58,000 यात्री लेकर यहाँ पहुँचे। अभी 124 मीटर की जेटी को बढ़ाने की योजना है, ताकि बड़े क्रूज जहाज को बेहतर सेवा मिल सके। बिडिंग प्रोसेस जारी है कंसल्टेंट के लिए। अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 4 टगबोट की खरीद भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जहाज़ों के लिए डिजिटल कस्टम्स प्रणाली लागू होने के बाद मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ये जहाज़ों के आगमन, बंदरगाह पर ठहराव तथा प्रस्थान के दौरान आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराएगी।
0: तो लाप्रेरी के समुद्र में मंगलवार को हुए सी प्लेन हादसे के बाद लोगों में अब भी वहां पर दुख छाया हुआ है। आज विमान के बचे हुए मलबे की तलाश जारी रही। साथ ही नेशनल कोस्ट गार्ड की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बाहर निकालने की भी कोशिश की, लेकिन इस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई एक 21 वर्षीय पोलैंड के युवा पर्यटक की असमय मौत है। सुनिए रिपोर्ट।
2: लाप्रेरी में मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे तट से 600 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त जल विमान के आखिरी मलबे तलाशे जा रहे हैं।
3: C'est un énorme débris qui a flotté, nous le récupérer, nous le finir à nouveau en inquiring officer de la police. C'est la station de Bellom qui occupe ça. Nous, l'intention, c'est de retirer l'avion là depuis la mer. Mais pour nous qu'à faire, nous avons une directive de la Department of Civil Aviation. Nous attendons un

0: instruction. C'est les autres qui peuvent dire nous comment nous procéder pour nous récupérer ça épave.
1: विमान में पोलैंड के 21 साल के पर्यटक डोमिनिक पोटेप्स्की सवार थे जो 29 जुलाई को यहां छुट्टियां मनाने आए। उनकी मां ने उन्हें सी प्लेन की ये सवारी उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में दिया था। एक ऐसा सफर जो उनकी छुट्टियों को यादगार बनाने वाला था, लेकिन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। उनका शव समुद्र में 2 मीटर की गहराई पर मिला। बचाव दल उन्हें मलबे से बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
2: Actuellement, dans les intensive care unit de l'hôpital Welking, ils font undergo and surgery. Apparemment, il y a un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Aussitôt qu'il est récupéré, nous pouvons pas avoir un petit peu plus éclaircissement sur l'incident qui est arrivé hier.
1: फाइबर ग्लास से बना ये हाइड्रोप्लेन पिछले 10 सालों से कार्यरत मॉरिशन कंपनी बोन टू फ्लाई का है, जो लगून के ऊपर हवाई यात्रा के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से मोन इलाके में लगून फ्लाइट नाम से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।
2: Le propriétaire là actuellement nous peut prendre ce statement à la station et nous peut gagner un coup avec tout ce ban condition avec tout ce ban permis qu'il y a, c'est pas tout ce ban d'affaires liées à jour. Et nous avons une instruction qui ne faudrait pas les venir les tamper avec une évidence avant qu'ils décident de faire sur une investigation.
1: सामान्य यात्री विमान के विपरीत इस प्रकार के हाइड्रोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स नहीं होता, इसीलिए नेशनल कोस्ट गार्ड द्वारा बरामद विमान के मलबे का विश्लेषण और मौसम की परिस्थितियों के अध्ययन से जांचकर्ताओं को हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।
2: L'équipe FSL et Forensic Science Officer qui pour découvrir.
1: अब नजर जांचकर्ताओं पर है। उनका एक ही उद्देश्य है ये समझाना कि आखिर क्यों एक रोमांचक हवाई यात्रा और जन्मदिन का ये तोहफा एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गया।
3: मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल शाम अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन देश की एकता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता का भी आह्वान किया।
4: मॉरिशस तेलुगु महासभा ने कल अपनी सीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई। समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। मॉरिशस तेलुगु महासभा को अपने लंबे सफर के लिए बधाई देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने देश के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के योगदान की सराहना की।
5: Pour préserver l'unité, pour préserver l'harmonie sociale. Nous n'avons pas les ici qui nous pas connaît. Nous n'avons la fosse qui nous pas connaît. Nous la fosse, c'est ça même, nous diversité culturelle. Un grand la fosse, mais nous peut faire ça venir une source de division. Parfois tout le monde dit hein, que tel monde nous mettait le gaz à telle communauté. Pas comme ça qu'elle peut progresser. Elle peut progresser quand on met dans du monde qui est capable de vivre.
4: आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए सरकारी नेता ने देश के सामने पाई जा रही विभिन्न चुनौतियों के समक्ष राष्ट्रीय एकजुटता की अपील की।
5: Faudrait pas nous laisser un agenda politique gâte l'avenir du pays. Et c'est moins facile ça. Qui empêche moi de me dire là, ben, hein, ça que du monde pour 100 000 roupies dans ce bus. On regarde la banque centrale, on dit, hein, print money. Et Fanny, mais je connais qui conséquence, nous pouvons payer sa conséquence à aujourd'hui. La cause simple, je dis, nous pays besoin de priorités. Et sa solidarité, ben, moi aussi, a montré là bien important. Nous avons une décision difficile, pour le moment, il n'est pas pour éternel ça. Mais si et si nous prenons une décision qui besoin de payer, pays là pour redresser.
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
5: Le grand problème maintenant, c'est la drogue. Mais quand la drogue, là, c'est 10 ans. Depuis 10 ans, la drogue peut proposer dans Maurice. Pas si on prend le contrôle. Mafia la drogue, puis invité dans réduit. Vous autres pouvez rentrer sur le quand vous voulez.

0: कथित रिश्वतखोरी और अवैध धन के मामले में आज दो पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया। राजकुमार सीवू, जिन्हें 2025 में चर्चित रिवॉर्ड मनी मामले में भी गिरफ्तार किया गया था, और रंजीत देवजी पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर फायदा लेने का अस्थाई आरोप लगाया गया है। ये मामला मार्च 2024 में वैली दिप्रैत में की गई एक तलाशी और वहां से बड़ी रकम बरामद होने से जुड़ा हुआ है।
1: 2024 में वालिदिपट में मारे गए छापे के वक्त पूर्व एएसपी राजकुमार सीयू और इंस्पेक्टर रंजीत देवजी एसएसयू के स्पेशल इंटेलिजेंस सेल में थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या दोनों संदिग्धों ने तलाशी के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, बरामद रकम को किस तरह जब्त किया गया, कैसे ले जाकर रखा गया और क्या कुछ प्रक्रियाओं को जानबूझ कर नहीं किया गया और क्या पैसों की मांग की गई या नहीं। अदालत में एफसीसी ने दोनों संदिग्धों की रिहाई का विरोध किया। आयोग ने मुख्य रूप से गवाहों को प्रभावित किए जाने या जांच में हस्तक्षेप की आशंका का हवाला दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
0: जूनियर मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद सिडनी पियर ने अपने राजनीतिक भविष्य पर दी पहली प्रतिक्रिया। उन्होंने लेबर पार्टी में बने रहने और सरकार के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ उठाने की बात कही है। आज उन्होंने प्रेस से मुलाकात की।
2: ब्राज़ील में अपने दफ्तर में सिडनी पियर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना बयान दिया। पिछले शुक्रवार को उन्हें पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया गया था। कारण, उन्होंने फाइनेंस बिल की धारा 12 जो पेंशन सुधार से संबंधित हैं के विरुद्ध मतदान किया। इस बुधवार को मीडिया से बातचीत में सिडनी पियर ने बताया कि वो सरकारी बहु पक्ष में बैकबेंचर के रूप में ही संसद में बने रहेंगे।
3: D'ailleurs, nous étions en minorité la semaine dernière, mais pour le bien de la population, fait entendre ça la voix minoritaire là au sein de la majorité. Donc, si on connaît la place qui m'occupait dans l'Assemblée, donc je suis un backbencher du gouvernement, du Parti travailliste, pas pour une opposition du gouvernement.
2: Média qui a une question.

0: वाब में चुनाव क्षेत्र नंबर 19 स्टेल न्यूरोज हिल के सांसद ने बताया कि फाइनेंस बिल पर मतदान से पहले या उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी बात की, जो उनके पद से हटाए जाने का मुख्य कारण बना।
1: Donc nous dans la constitution mentionné que cabinet ministres zot bizan al avec la solidarité collective parce qu'ils faisaient partie du cabinet du nouveau ministre, pas faire partie du cabinet. Connais ce qui n'est arrivé vendredi là, c'était un précédent mais intéressant dans la vie démocratique d'un pays. Basel là nous bizan pousse le débat encore plus loin, est-ce qu'il nomme du nouveau ministre dans cabinet?
0: सिडनी पियर ने आगे कहा कि उनके सभी निर्णय सबसे पहले जनता के हित को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। उनके लिए यदि भविष्य में उन्हें लेबर पार्टी छोड़नी पड़ती है तो वो विपक्ष में एक निर्दलीय सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
2: स्वास्थ्य के सेक्टर में बांग्लादेश ने आज मॉरिशस को चिकित्सा उपकरण भेंट किए। इस सहायता में अस्पताल के बिस्तर और व्हीलचेयर जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उपकरण शामिल हैं। उनका उपयोग पोर्ट लुई के जीतू अस्पताल में किया जाएगा। ये सहायता मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच मजबूत मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। कई वर्षों की देरी के बाद प्लेन मान्यों में डीबीएम के एसएमई पार्क परियोजना का काम जल्द फिर से शुरू होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बनाई जा रही इस परियोजना का काम बाढ़ और उससे जुड़े सुरक्षा खतरों के कारण रुक गया था। इस पर अब तक करीब 200 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए अब एक समाधान भी तय कर लिया गया है, जिससे परियोजना का काम फिर से आगे बढ़ पाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 किलो से कम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले रेमी फोये आज स्वदेश लौट आए हैं। ग्लास्गो में मिली इस जीत के साथ उन्होंने 28 साल बाद मॉरिशस को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। देश पर लौटने पर उनका भावनात्मक स्वागत किया गया। और हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में सुर्खियों में कि स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का एक हिस्सा चंद्रमा से टकराया है। वैज्ञानिक अब इस टक्कर के सबूत जुटाने में लगे हैं, जबकि विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में बढ़ती मलबे पर चिंता जताई है।

और अब चलिए जानते हैं कि मॉरिशस में मौसम का हाल स्थानीय स्तर पर कैसा रहेगा। मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है और पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। देर रात को और कल सवेरे के दौरान रह रहकर देश के ऊंचाइयों और पूर्व में रह रहकर वर्षा हो सकती है, ऊंचाइयों पर धुंध छाई रहेगी। कल दोपहर बाद के मौसम की बात करें तो पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर मौसम कुछ खराब ही रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18, अधिकतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्यास्त 5:53 पर, 6:37 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे लुडोविक, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।

लेन कोइची में कोइची में 68 साल के 68 इयर्स ओल्ड के जगदीश गोपी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी मिसेज गोपी कमला देवी के मकान तुलसीदास लेन कोइची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोइची की शमशान भूमि ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM नंबर 2 सेंट एस्प्री लेन एवेन्यू सर वर्जिल नाज कटरोबोन में 77 साल की 77 इयर्स ओल्ड की श्रीमती अरावती मानिक की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राखा, लोग उन्हें अनीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज बल्कि कल गुरुवार को सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान कटरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैतू कटरोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM एलियो स्ट्रीट सिटी लोआजो फ्लोरियाल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी इंदसिया की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामजतन, लोग उन्हें देवरानी के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भ्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM टागोर रोड अर्नेस्ट फ्लोरों में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड के राजनाथ बिमल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें हारी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे चंद्र प्रकाश बिमल के घर एनएस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशरों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM पिटी पाके रोड मोंटाई ब्लॉश में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड के दयानंद कातुना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से ज्यादा जानते थे। श्री दयानंद कातुना की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 उनके बेटे अशीव कातुना के मकान मोंटाई ब्लॉश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

MBC Radio 24 hours a day. सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 6 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रामशाई रोड में बाला रोड, शिबनोट लेन, स्कूल रोड, शोभा लेन, लाफ्लोरा में कुतवाहू रोड, बॉम्बे रोड, चमन रोड, रंगलाल रोड और बोस्टन रोड लाफ्लोरा में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल गुरुवार सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक मोशवाजी और आसपास के इलाकों में काजवारीना, कोरल आजो, मोसलमान लेवियो, मेडिटेरानी, मिस्टिक होटल और एक्स एमसीबी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Nee so. सारे 6 बज चुके हैं। नमस्कार, श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ, और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। जी हाँ, कैसे हैं आप? आज बुधवार 5 अगस्त 2026, और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 7 बजे तक इस कार्यक्रम में, नई सोच प्रोग्राम। और इसके बाद भूलिएगा नहीं दिनों की आवाज़ प्रोग्राम, चंद खूबसूरत गाने भूले जो हम भूल नहीं सकते, ऐसे 80s और 90s के प्यारे गाने। लेकिन यहाँ पर कुछ भावगीत आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है, बस इन्जॉय कीजिए। ज़िंदगी का सफ़र जो है ना, बहुत ही सुहाना है, बहुत ही खूबसूरत है, बस हंसते मुस्कुराते चलना चाहिए साथ मिलकर।

सॉरी क्षमा कीजिए। नई सोच कार्यक्रम और इस आखिरी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है, लेकिन कहीं मत जाएगा, 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज,
4: दिलों की आवाज,
5: सात बजकर 2 मिनट हुए हैं श्रोताओं, बहुत धन्यवाद आप साथ दे रहे हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। जी हाँ, अभी आप सुनने जा रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम 9 बजे तक चलेगा। धन्यवाद, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी। और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम रोमांटिक प्रोग्राम, रोमांटिक गाने, और आप भी बहुत ही रोमांटिक हो। 80s और 90s के खूबसूरत गाने, कहते हैं ना, जब दिल की आवाज़ हमेशा धीमी होती है लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझनों का भी रास्ता दिखा देती है। दुनिया भी भीड़ में अक्सर हम दूसरों की राय को इतनी अहमियत देने लगते हैं

कि अपने दिल की पुकार सुनना भूल जाते हैं लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान अपने दिल की सच्ची आवाज़ को पहचान लेते हैं उसे ना किसी ताली की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी की मंजूरी उसका हर कदम उसके विश्वास का प्रमाण बन जाता है दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे और आज का जो पहला गाना है जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाले सुर ताल साथ मिलकर ऐसे धुन है जो प्यार को ही याद दिलाता है

कभी झूठ नहीं बोलता वो हमें वही एहसास करवाता है जो सच में हमारे लिए सही होता है इसीलिए जब भी जिंदगी किसी दो राहों पर खड़ी कर दे कुछ पल के लिए खामोश हो जाए अपने अंदर झांकिए अपनी सांसों को महसूस कीजिए और अपने दिल की आवाज़ सुनिए हो सकता है वो आवाज़ बहुत हल्की हो लेकिन उसमें वही सच छुपा होता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे ये खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों के नाम। कहते हैं दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई रिश्ता सच्चा होता है, जब कोई सपना हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है, या जब कोई रास्ता हमारे लिए बना होता है, तब सबसे पहले हमारा दिल जो है ना उसकी खबर होता है। और लेकिन हम डर, संदेह और लोगों की बातों में हम उलझ कर उस आवाज़ को दबा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, जीवन में हर फैसला सबको खुश करने के लिए नहीं होता। कुछ फैसले सिर्फ अपनी आत्मा की शांति, और जब आप अपने दिल की सच्ची आवाज़ के साथ चलना सीख लेते हैं, तब हार भी एक सीख बन जाती है। और यहाँ पर दिल दिया गल्ला टाइगर जिंदा है फिल्म से लिया गया, और ये गाना खासकर अनुषा के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम काटरबॉर्न।

किसी ने ना जाना ये जिंदगी क्या कहती है, लेकिन जिसे जीना आता है वो हमेशा के लिए खुश रहता है। आतिफ असलम का ये खूबसूरत गीत और कुछ प्यार ऐसा होता है। यहाँ पर ये गाना खासकर हम चला रहे हैं विमला के लिए जो हमें सुन रही है न्यू ग्रोव से। गाना खासकर वो मांग रही है अपने लिए और जायद के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:52 हुए हैं श्रोताओं कभी-कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती वो तो आंखों की चमक चेहरे की मुस्कान और खुश किसी के नाम का जिक्र होते ही धड़कनों की रफ्तार से अपनी पहचान बना लेता है और कहते हैं ना लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल ही जाता है क्योंकि सच्चा प्यार कभी चेहरे पर ना सही लेकिन व्यवहार में और जरूर नजर आता है किसी की फिक्र करना उसकी खुशी में मुस्कुराना और उसके जो दुख और सुख है खुद को बेचैन पाना ही प्यार की असली पहचान है चलिए इट इज का ये खूबसूरत गीत किशोरदा की आवाज में और ये गाना जाएगा देव साहब के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम मेबर्ग गाना उनके लिए और उनके दोस्त राजन के लिए और जितना कोई हमें सुन रहे हैं इस समय आपके लिए भी गाना जाता है कुछ लोग काम से वापस घर जा रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ये गाना आपके लिए है

देखते देखते आज बजकर 13 मिनट हो गया है और यहाँ पर आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। चलिए यहाँ पर खूबसूरत गाना हम चलाने जा रहे हैं, खासकर रिहाना के लिए जो हमें सुन रही है इस समय फिनिक्स से, और गाना वो मांग रही है अपने लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। और संध्या जी जो रहती है सैपिया, आप ही हमें सुन रही है, धन्यवाद। गाना जाता है आपके नाम।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: कभी कभी नजर के सामने रहकर भी कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि फासले सिर्फ दूरियों से नहीं खामोशियों से भी बनते हैं। नजर के सामने रहने वाले हर चेहरे को हम पहचान लेते हैं, लेकिन दिल के करीब बस वही रहता है जो बिना कहे सब समझ लेते हैं। तो चलिए अगला गाना आशिकी फिल्म से लिया गया, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। और ये गाना जाएगा जय साहब के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम रोजियर, और ख़ासकर गाना वो मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी देवीना के लिए।

चोरी चोरी दिल में बसना, ये भी एक कला है फिल्म मोहब्बत का ये खूबसूरत गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा पृथ्वी के लिए जो रहते हैं औसनाल, और इस समय हमें सुन रहे हैं गाना उनके लिए और पूरे रघुनाथ फैमिली के लिए, और साथ में हमें सुन रही हैं वाकवा से हमारी प्यारी योगिनी जी, धन्यवाद साथ देने के लिए, गाना आपके नाम।

चलिए अगला गाना सुनते हैं। उदित नारायण की आवाज़ में गरम मसाला फिल्म से लिया गया और ये गाना जाएगा विवेक के लिए जो हमें सुन रहे हैं बासा रोड का ट्रिबोन से। और अंकिता आप रहती है वाकवा, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। रोमांटिक गाना है इस रोमांटिक मौसम में।

आंखों से दिल में उतर कर तू ही है जो हमेशा बसते हैं। और यहाँ पर गाना फरेब का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे हैं, ये गाना जाएगा निशा के लिए। जी हाँ, आप रहती हैं पृथ्वी और इस समय साथ दे रही है। और इसी गीत के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। 8:55 हुए हैं, उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रंजन।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: Continuous music.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
4: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा।
5: सब संगतियों के आज प्रताप सिंह को से प्यार भरा नमस्ते। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी के दुगो चैनल है। एगो एफएम मोड पर वह और एम फ्री रेडियो मनोरंजन 94.6 FM पर और रेडियो मॉरिशस आईएम मोड पर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। दर्जित आपको हमने किस्मत आज सबको किस स्वागत करते हैं जय भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे ले। आज है बुधवार की रात, बुधवार 5 अगस्त साल 2026। तो बेशक हमने तो लोग के साथ ही सा नाचब सा गावब सा कमरवा डुलावब सा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमाइया कज्जो दे विज्जो विज्जैंक कज्जो दे विज्जो विज्जैंक। तो आज भूत की रात, गमत की रात, जलसा धमा की रात, चल नाचे गावे झूमे कमरवा डुलावे कदम से कदम मिलावब जा और शुरू कर जा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के बीच मावती संपत्ति गावल गीत के साथ मांग के सिंदुरवा।

संगते लोग बुद्धिमान व्यक्ति के को बात समझेबा तो बतवा समझ जाए पर मूर्ख व्यक्ति के तू चाहे कितना भी समझेबा वो कबो नहीं समझी मूर्ख व्यक्ति थेतर के थेतर ही रह जाला यही अंतर है को बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में बुद्धिमान व्यक्ति अपन दिमाग से काम करे पर मूर्ख व्यक्ति उकर दिमाग न काम करे रहा कुछ नहीं काम करे रहा और जिके तू कितना स्पीके कर बा तो समझे के नाम वो नहीं करे रहा काजा होते हुए जगह बिच्छा काजा होते हुए जगह बिच्छा कमरी त्याग ने से पीताओं से टेलीफोन करा था लन्ना गीत और खातिर अगला गीत ताम ताम हुए रहा अमराज मधुर कविता मनहिर गीत वगैरह वन और ताम ताम करा तो नमृत गणेश पीतों से संजय हरिचंद वैसे अवन कर पत्नी संध्या बेटी हुविष्कार सब हरिचंद परिवार के नाम और ये अगला गाना जो हम चलावते सर सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के श्रोतालों के नाम साथ में जितना कोई अभी भी रेडियो सेट ऑन कर लगभग तब बता दे रहा जा यह रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस भोजपुरी का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली चल अभी तेरों के संगे हम यू ताम ताम करब स नाचब स गावब स झूमब स और बेशक है गीत तो आपने चाहते स वीना की ओर से हेलो वीना वीना की ओर से घर वाला और बेटा बेटी और उसका सब परिवार के नाम और है गीत चाहते स कंचन की ओर से राजेश के नाम और सोनिया के नाम भी और एक गीत चलिए हमके सब श्रोता मॉरिशस में विदेश में जहाँ ले हमकी आवाज़ पहुँचा था जिकर जिकर घर में हमकी आवाज़ पहुँचा था जहाँ ले हमकी आवाज़ जाता था सब संगत्यालों के नाम जन सुनतवन भोजपुरी तड़का

आजकल श्रावण मास चलता, घर में पूजा पाठ होता, वेद पाठ होता, वेद मंत्र के उच्चारण होता। जब हम वेद की बात कही ला सर, तो हमने के हिंदू धर्म संस्कृति में चार गो वेद बा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवता की स्तुति और प्रार्थना होला। घर में भगवान अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम के देवता के वर्णन होल बा। और ऋग्वेद में प्रकृति, ब्रह्मांड, मानव जीवन और सत्य के बारे में बोलल चला। जबकि यजुर्वेद में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बोलल गल बा। यज्ञ कौन कौन मंत्र, यज्ञ में कौन कौन मंत्र के उच्चारण होला, कर्म अनुशासन और समाज के कल्याण पर बोलल जाला। फिर सामवेद इत एगो संगीत के वेद है, संगीत में रहेला। और हम के अथर्व वेद, ई वेद में जीवन से जुड़ल विषय के वर्णन होला। स्वास्थ्य, औषधि, शिक्षा, गृहस्थ जीवन, शांति, संविदा और समाज संबंधित मंत्र बा। एक सामान्य जनजीवन के वेद बोलल जाला। तो हमेशा याद रखे हमने के चारों वेद या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद,

ऋग्वेद है। चारों वेद के चेहरा पठन पाठन करते रहे कि आजकल श्रावण मास है तो घर में यज्ञ हवन होता और जब यज्ञ हवन होला तो संस्कृत में यही मंत्र के उच्चारण करी जासा। तो चराइसन में सुनब जाए अगला गीत भगवान के काम, शालिनी पोपिया और अमराज मधु के गावल गीत और है गीत चलावत खास हम खास इंदिरा लौथन के नाम और इंदिरा मेमोरियल सेवन साथ में चित्रा और ज्ञान विश्राम जी मौदालबे से और सब विश्राम परिवार के नाम शोभा वन काटबोन से शोभा बाकवा शोभा बबासन शोभा पॉम्बलिमुस से और है गीत चलावते जा भाई राफिक मोहित के नाम आप हवन तयाग से भाई आबू वन वाकवा से इब्राहिम पोटवी से मैजबीन प्लान बैच से और रोजीदा हाईलैंड से। चले सब श्रोता के बचन पर गीत चली भगवान के काम और भगवान के काम के आगे हमने कुछ नहीं सकी जा सके जो भगवान चाहेला वही होला भगवान के मर्जी के बिना एगो पत्ता तक ना ही लेला हमने ते खाली नर चोला ही सर बोले था

0: भगवान के काम बड़ा महान, वही धरती आसमान इंसान जानवर पक्षी पेड़ पौधा सब वही बने लगभग। और भगवान जाने ला कब कोई की प्राण दे के और कब प्राण हरे के। और प्राण हरे वाला भगवान का नाम है यमदूत। यमदूत महाराज जब इंसान के जीवन पूरा हो चला तब वो अपन पास से वो इंसान के प्राण लेके जाला यमपुरी यमलोक। और वहाँ पर ही न्याय होला। ये कहते बोल चला कि जब ले जीवा भैया अच्छा कर्म करिया अच्छा काम करिया अच्छी बोली बोलिया जब ये अंत समय हमने की अच्छी तरह से हमने की प्राण हमने के शरीर में से निकल के यमदूत संगे जाए। रात के 9:20 होता है और आज बुधवार के देख मौके कर ली सर कि दिन के दौरान काफ़ी पानी बरसल मौसम हवा रहा। कहे कि मॉरिशस के दक्षिण में कुछ जोरदार आंधी साइक्लोन पावल जाता। ये कारण हमने के देश में रह के जिसे पानी बरसाता जोरदार हवा बा और पर ये ठंडा करता। दिन के तो ठंडा कर भी करेगा पर आज रात के भी काफ़ी ठंडा करी। तापमान में गिरावट भी आई है और जब इससे ठंडा करी तब अंतरिको जैकेट पोलो पास्को इस जीवन से डाल लिया। और ये ठंडा के मौसम में कोनो रिस्क नहीं लेके चाहला खासकर जगह घर में चिबेबे लोग बा और बड़ा आदमी लोग बा जिन वृद्ध जन है तो जैसे भी निगाब रहे से कहे कि आजकल खांसी सर्दी जुकाम देखो के हुआ था लाफी देखो के हुआ था तो ठंडा मौसम से बच के रहिए। और ऐसे में सुनम जा शशि सहोदय प्रियावल गीत ठंडा ठंडा पानी। और देखो सभी लाइन पे के हवन जा चाची ललिता हवन प्रियोले से चाची ललिता नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते बेटा
0: कैसी समाचार चाची।
1: सब कुशल मंगल बा बेटा।
0: तोरे बगल बड़ी ठंडा कर रहा था ना।
1: बड़ी ठंडा
0: आज काफी
1: हो जो तो हो जो ठंडा बाना
0: ना ढे ठंडा भाई मौका ठंडा के था और वहाँ ठंडा हवा कर लग बा
1: हवा दिन भर हवा
0: पानी का कर बा मौसम ऐसे ही बा। और बोला था चाची अगला गीत के कर खाते
1: आज बेटा हमार बहिन के जन्मदिन बा हाँ। चला दिया
0: कौन नाम बा
1: चंदा बिचुक
0: के ढेर बना प्यार और आशीर्वाद।
1: अच्छा और हमार सब बहिन के बोल देवत है आज
0: गतुआ के लिए खा ले गतुरानी वैसे हुआ
1: बड़ी दूर बना बेटा।
0: हाँ जानते हैं चाची बाजी नहीं करते हैं आले तो हरगी चार जोड़ी
1: बहिन सुदेवी डाल दिया बहिन सुदेवी
0: आली बहुत
1: देवीना ज्ञानी ज्योति
0: हाँ
1: और मीता
0: हाँ
1: और
0: जिता कोई के जन्मदिन बा तो लोग खाते भी होगी चाव अब सर तो चाहे सुनब जाए गीत वा सब भोजपुरी सब भोजपुरी लवर्स के नाम भी ठंडा ठंडा पानी पे लद मोरे जान। अरे भाई ठंडा ठंडा पानी नहीं पिया पनिया के गर्म कर दिया पानी चेत पिया या गर्म पानी पिया पर ठंडा पानी नहीं पिया वरना हो जाइबा बीमार।

आगे के जमाना कुछ और रहल और अभी के जमाना कुछ और बा। पहले के जमाना में जब स्कूल के छुट्टी में रहता था सब लड़का सीमा में दिखबद हो गए तो फुटबॉल खेलता वन सा कोई गुड्डी उड़ावता कोई कानित खेलता कोई लमाके खेलता कोई रस्सी सोते हुआ था तो कोई लारू रूले करता तो ये सब आगे के जमाना के लिए कालुक रहल और आगे लमागे छोकरी लमागे खेल छोकरा लोग कानित खेलते रहन सा और छोकरा लोग गुड्डी हो रहा हुए आजकल ये सब गेम नहीं रोक रहा है ये सब खेल नहीं रोक रहा आजकल खाली लेकर लोग पोता में टिक टिक टक टक टिक टिक टिक टक टिक टक टिक टक टिक टोक हाँ ये पर पहले के ज़माना में जो लड़का लोग सीमा में फुटबॉल खेलते रहन सा और ढेर ऐसे खेल रहा जो आज नहीं रोक रहा शायद आज के लड़का लोग नहीं जानी तो समय समय की बात है उस समय की बात है और अभी समय जो कर दूसर अभी नया जमाना बात है लड़का लोग नवा नवा टेक्नोलॉजी के खेल खुशी रह

द शो इलेक्ट्रॉनिक सब पर आगे के लिए का लोग इलेक्ट्रॉनिक के सब नहीं जाना था कंप्यूटर पोता भी सब नहीं रहा तो जिससे लोग नेचर में प्रकृति की गोद में खेलते रहन सब अगला गीत हंके दे दे को चुमा हम हाई हम चुमा नहीं मांगे तेरी बाप ये मुकेश छेदी गीत गाओ तो चुमा और है कि चली खासम खास संजय के और शेखर भाई मोलक को भाई बीबी खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत डॉक्टर अंजू के और शेखर मंगेतर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चाहती से कमला जिन्हों के और शेखर चीज़ों पर रोहित खातिर और प्रेमीरा का चोन से वन हाई प्रेमीरा है गीत तो रोनाम अनिता लाल जी मॉडल बी एस ए हाई अनिता जी कैसे बा और अनिता अफ्रीकन फ्लैग से हमके साथ देवतवन कुल खतरे गीत चली और जितना को रेडियो मोशा से रेडियो मनोरंजन सुनता था गीत तो लोग के नाम चुमा दे दे चुमा

कभी कभी हालात के कारण परिस्थिति के कारण कोनो कोनो इंसान जो है बड़ा ही चिलचिला हो जाला छोटा छोटा बात में गुस्सा करेरा और ओके भूखा से बचाए के बड़ा मुश्किल रहेला और क्या करेला ये अपने आप तो फुसबन फुसाशन लोगन पर भी उतारेला तो ऐसे टॉक्सिक लोगन से जहाँ दूर रह के जन देख पर जो व्यक्ति थे स्ट्रेस में रह रहा था लोग तनाव में रहे और जब दो के सीमा में पर गए रहता भूत हो रहा हिन्ने हिन्ने बोई लगी तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाला समय के साथ साथ परिस्थिति के कारण बोल बोले सुना नोन गीत गए देवन और गीत चलावते से हमने देवेश के नाम का माता जी पिताजी और सब कर परिवार खाते फिर अभिनव हम के साथ होता कौन कौन सा है अभिनव और एक गीत हमें चलावते उदय धनी राम के नाम उगर पत्नी बेटा पत्र बेटी दामाद और सब धनी राम परिवार के नाम प्रीतम राज्य मिला है गीत और खातिर और एक गीत विक्रम निको और सब बच्चन परिवार के नाम आप रहे रिव्या जी पोस्ट चल एक साथ सुने गीत बोल बोले

सन ठंडा के मौसम में गरम गरम दाल कच्चू पीमा के आचार चलेगा रात के 9:50 हुआ था उनके साथ देखा तेरे बहुत बहुत धन्यवाद सुना तो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम एम टू रेडियो मोशन और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे ली और हमने जो नहीं सर सब एगो आत्मा है सर और एक दिन ऊपर आत्मा में लीन हो जाए सर जब ये शरीर हमने के नहीं बात तो कौन बात के घमंड कौन बात के गुरूर हमने सब कोई आत्मा है सर एक दिन परमात्मा में लीन हो जाए सर तो यही जीवन की कटु सत्य है ढेर कोई बोलेला हमार लगे ढेर पैसा बा कोई बोला हम सबसे जोली हैं और बड़का गाड़ी बा पर इस सब कुछ नहीं निकालने से भैया कौन चीज लेके जाए सर यहाँ से सब कुछ यहाँ भरी छोड़ छाड़ के जाए के खाली हाथ आने सर यहाँ से खाली हाथ जाए सर हम के साथ जन जाए हम के अच्छा करनी कमाई के फल हमने के पुण्य हमने के साथ जाए हमने के धर्म हमने के साथ जाला अगला की दगा दे रे सुनरवा और गीत चलाते सर शालिनी हीरो की और उसे कर पति विशाल हीरो का दुगो बेटी और भाई कृष्णा और सब हीरो परिवार के नाम प्रवास है और भाई दनियन के साथ होते हैं भाई दनी गीत तो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और हे गीत चलाते सर रीता की और से संगत्या देविका फिर हवन मिसेज द्वारका देविका मिसेज रामभा और सबका संगत्या के नाम और रीता अपन संगत्या के नहीं भुलाल बाए अपन संगत्या के याद करते रहे लन्ना तो चले साथ सुने गीत तो अभिनोद शिवदत्त गावल दगा दलेरे सुनरवा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: घरे में नहीं चले रात के ठीक 10 बजल बा और अभी से अभी और एक घंटा बा ये प्रोग्राम भोजपुरी तड़का समाप्त करी में और जो लोग फोन को सही बा का जाओ दे हुए जाओ हुए और बेशक हमने के साथ देती रहा।

बहुत जोरी तार का प्रोग्राम चलेगा लेंदी से लेके दिमाग से रात के 9 से 11 बजे रे बारी बारी से सब प्रस्तुत करता आइला सा हमने की बारी रहेला मंगल के और बुध के आज बुध के रात है और हमने की प्रसारण चलता 94.5 मेगाहर्ट्ज एफएम पर और रेडियो मॉरिशस पर और साथ में हमने की प्रसारण चलता हमने की टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने के लाइव सब देखे अभी से रात के 11 बजे तब बने समय सब यों पर विजय करे हमने के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के तो अगला गाना अजब तोरे लीला भगवान की लीला परम पार है वही जानेला कब को छा करेगे तो गीत चलावत ऐसा संध्या अमृता पादू फिर हई गीत चली सुनील नुगा करिश्मा संध्या तोरो खतेर बटरफ्लाई हमने के साथ देव तो बटरफ्लाई गया अगला गीत तोहर नाम ही और हई गीत चलावत ऐसा वेल जी के नाम और अंतिश बिहारी हेलो अंतिश कैसी से बात समाचार गमटवा हुआ था ना हाँ अभी गमटवा होते रही रात के 11 बजे ले और हमने के साथ देवत्वन जय हेमंता राणा माँ अमृता तिलक आशवीर कैसे आशवीर आशा करते तोरा प्रोग्राम पसंद आवा था और बेशक अगला गीत और खातिर और जितना को ये भी हमने की रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर सुना था और हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था वंसा लाइव इन डायरेक्ट हो जाए गीत तो लोग के नाम अजब तोरे लीला

अजब तोरे लीला अजब तोरे माया प्रभु के माया हा कोई नहीं चकरा जाने कि कौन सी होई की बात सब प्रभु ही जाने रहा। और अब बनी बात कर सा आयुर्वेद के बारे में ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद जैसे कि धीमाना प्लांट बाजी कर से दवाई बनेला हल्दी बा अदरक बा लहसुन बा कारीपुले बा जीतें बा हैं अपना बा ताई सब जन प्लांट है कर से दवाई बनेला एक के हमने हिंदी में आयुर्वेद बोला सर तो ढेर कोई खुशी रहला आयुर्वेद की दवाई से भी करे के धीमाना रोग बा जोन आयुर्वेद से कोई थ्रेट मोहला और मॉरिशस में गांव के नंबर लिस्कालिए वहाँ पर एगो मेडिक क्लिनिक बा जहाँ पर आयुर्वेद के सब दवाई मिलेला ओकर लाखेम बा डेलविल बा कॉम्प्रीमे बा और बेशक है जो आयुर्वेद है ये हमने के दादी लोग नानी लोग बता दे रहा आगे के ज़माना में उतना डॉक्टर सब नहीं रहा तो आयुर्वेद के प्रयोग होता है उस सबसे भी जैसे अभी आजकल सर्दी खांसी जुकाम बा थे बना बीमारी बा तो आयुर्वेद से भी ये सब बीमारी के इलाज सकल जरा करे और ढेर कोई सुई भी करेला और जैसे कि बोली है जो आयुर्वेद है एक में ढेर माना दवाई बाय जब हमें कभी कभी ना घोंसी उची कबार के बिग बाग दे रहा सब पर कोनो कोनो घोंसी के पत्ता से भी दवाई बनेला नीम के पत्ता बा अब करेला बा करेला के जूस बनेला नीम के कर साबुनेत बनेला जानेला नीम के साबुनेत वो जब खुजली होला ले को में तो साबुनेत से भी कर बता सब खुजली भाग जाला हाँ तो ढेर माना ऐसा बा आयुर्वेद के और आयुर्वेद जो है वो ताज़ा और पौष्टिक रहेला है जोन भी प्लांट से जुड़ल बा है और प्लांट में जितना दवाई रहेला है तो उकर प्रयोग हमने करी रहा सर तब सुनब जग लगा ना कमल चिंतामणि केवल मार छोंका है गीत चावते से लकी वुमन के नाम है गीत चली जयराज रानी अंतीश अंकुश स्नेहा और सब जुड़ल परिवार के नाम आप हवन लाल माटी से यह शनि के साथ देवथवन साबिरू नमस्ते श्रुति रूपक विलियम भीम के साथ देवथवन हाय रजनी अभिषेक भवानदीन आश्ले भवानदीन हेलो लेडी जागो अमन के साथ देवथवन संवीर संध्या आश्ले भवानीदीन नमस्ते जी

फिर कुछ टाइम के साथ देवा धवन, पुवना शर्मा और तेज सनातन. हाय चाचू, हाय भतीजा, कैसे बा? साथ में हयु गीत जुन चरावत ऐसा तेज सनातन खातिर आश्रय बवानी जीन हमने के साथ सकुन भी अरदास भी उनके साथ देवा धवन और जितना कोई भी रात के हमने के सुना थवन रेडियो पर देखा थवन से हमने के टिकटॉक पर तह गीत तलो के नाम मार छोंका. आगे के खाना है पुरान्या पकवान ही मार छोंका.

संगचालक बोला जला कि बीता समय कब फिर से लौट के वापस नहीं आवेला जोन बीत गए तो बीत गए और फिर से वापस नहीं आ रहा बीते बीते बात सोच के तू दुखी नहीं हो या जोन होगा ता होगा जोन बात अभी है और तुहर आने वाला भविष्य ता जोन बुद्धिमान इंसान हुआ जोन अपन वर्तमान में जीरा और अपन भविष्य के बारे में सोचेला हो कि नहीं तो बीते बात की भुला जाइया ठीक बा हंसते गाते रहिए हमने लिखा और सुनते रहिए रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन रात के 10:15 हुआ था और अगला गीत काम करवा रे काम करवा साकू ने गीत और खातिर साथ में आश्री बोवानी जी ने गीत और नाम यू की ओर से गीत चली कर माता जी इंद्रानी बिहारी खातिर टीका नाथ योगी सुनील राम नोचन गीत चली वाली दिफात के सब राम नोचन परिवार के नाम यतीन आनीश तानवी अनुषा और निधि खातिर मीना जोल भीम के साथ देवतन अनिता लाल जी हेलो आश्रय भवानी जी हाईलैंड से हाँ और एंजल मी हमने के साथ देवतन हेलो एंजल मी और ये वक्त रिनियन आइलैंड से भी थे कोई हमने के सुनाता जेगोबा स्टेफानी बा और जेसिका भी हेलो जी और फिर कनाडा से वन दीपा तिवारी दुखित तो कर घरोला को लेकर दुखित परिवार के नाम ऑस्ट्रेलिया से अजय और पूनम चिंताराम उकर्मा इंदिरा बहिन सलोनी भाई चंदन भौजी प्रिया और सरिता उनके प्रणाम बोलता हाय सरिता है गीतरो नाम ईशा है गीतरो नाम लीना जीत है गीतरो नाम काम करवा रे काम करवा

मस्ती म्यूजिक और हंगामा द्वारा अपन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम हो चुकी दर का मैं रात के 11 बजे ले और बेशक हमने नचते गए थे आले से और नचते गए थे जाप सा यहाँ से जोली छोकरी से प्यार करी रहा कुणाल हीरा गीत आ गई वन गीत चली कासम खास मनीषा खातिर हाय मनीषा गीत और खातिर मनी खातिर फिर गिचरी साकुन के नाम स्वीटी प्रिया नसीमुली सायरा दाहू सरिता और है गिचरा जैसा ईशा खातिर भी हमने के बहुत बहुत प्यार से देखा था वन हमने के टिकटॉक रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर रोजी भी साथ देवा था वन हाय रोजी हेलो कैसे समाचार सब ठीक ठाक आपके यहाँ यहाँ पर सब कुशल मंगल बा और हमने चलो के मनोरंजन करे के पूरी पूरी कोशिश करते हैं सब ये रात के 11 बजे रे तो के पसंदीदा भोजपुरी गीत चलावत है जा और चला भाई अगला गीत सुने जोड़ी छोकरी से प्यार करीला जकर खतिर हम रोज जीला बहुत प्यारा सुन गाना कुणाल हीरालाल की आवाज़ में और गीत चलावत है सर अश्विना के नाम अश्विना काठोबोन से वन के साथ देवतवन हाय रवि जिनू नमस्ते है गीत तोहर खतिर तोहर घरोली तोहर लेका तोहर माता पिता तोहर सब दिनों परिवार खातिर रवि दिनों खातिर भी और रवि दिनों जोड़ी छोकरी की खुशी रहेला जैसे हम गीता में बोला था जोड़ी छोकरी से प्यार करेला जकर खातिर हम रोज जीरा लापिनू अरे भाई है कि का नाम है लापिनू ओके लापिनू तो है गीत तोहरों खातिर लापिनू फिर राजेश सिंह सिंह स्किंग राजेश सिंह महामुदाली हेलो जी और चला गीत सुनब जा जोड़ी छोकरी से प्यार करीला

इराहल हमने के संगत है कुनार हीरा जोरी चोकरी से प्यार करीरा और प्यार जो ना एको एहसास है एको जज्बात है दिल से दिल जब मिलेला तो ओके बोलिया सब प्यार लव मोहब्बत कोई बेला प्यार एक बार होला तो कोई बेला प्यार बार बार होला कोई बेला प्यार इबादत है प्यार खुदा है तो कोई बेला प्यार बेवफाई है प्यार नफरत है सब कोई के पर नजरिया है प्यार के बारे में पर हम तो मानेना कि प्यार ईश्वर की देन है अगर प्यार मोहब्बत नहीं रहता आज तू नहीं रहता हम नहीं रहती आज यहाँ पर रेडियो पर हम इतलोग से बात नहीं करती सर अभी लाइव टिकटॉक नहीं करते प्यार मोहब्बत है जो हमने के तलोक से जुड़े रहा एगो परिवार है सर वो चाहे कोनो भी समुदाय के है सब कोई संगे सी सॉरी दिए जी हमने सब कोई एक साथ ही सा और बेशक तो लोग के साथ देवत है भी रात के तो अगला गीत है भाई शराबी प्रकाश गहरे वो ने गीत उमिला जो ढका तेर और फिर है गीत चली यज्ञ क्षेत्री के नाम फिर है गीत चलाते सर रोशन भाई के नाम मनीषा मनीषा डसो ये कुणाल हिरी राम के साथ देवत हाय जी हेलो जी रवि जी नू और चल अभी जितना कोई हमने के देखा था रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर जितना कोई सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर जितना कोशिश करता पर थोड़ा लाइन नाम ही रहता 4985 पर तय तो लोग के नाम चला सब भाई शराबी तेज शराब जो ना चीज है बड़ा खराब शराब

नेचिय शराब सिगरेटे सब नेचिय भैया इस सब घर परिवार तो डेवेरा बर्बाद कर देवेरा। तो उमीरा जोधा हमने के बहुत बहुत प्यार से देखा था और सुना था वन तो उमीरा जोधा गीत खासम खास तोहर नाम भाई शराबी।

0: पहली पाई शराबी बन गईली।
1: हाय का इतने गमत बाप रे बाप। सब कोई नाचता गावता झूमता हमी के संगे संगे और अगला गीत देखी मैं पकैया राजा। कौन सी पकल बाहू गर्मा गर्म पूरी कटहर के टकारी कच्चू और कौन सी पीमा के अचार। हाँ सावन मास चला था आजकल सब कोई वेजिटेरियन खाना खाता क्या बात है क्या बात है। तो है गीत जन है देखी मैं पकैले राजा है गीत चाहते ऐसा हमने की भौजी स्वयं प्रभा खातिर ओकर घरोला रविराज के नाम ओकर बेटा ओकर सासू माँ और सब बोहादू और बिचुक परिवार के नाम आप हवन लाल माटी से अमृता डुंगुर वहाँ से हवन जा और बेशक हमने के साथ देवतवन राज नारायण जी भी हमने के साथ देवतवन बतन प्रताप जी प्रोग्राम एकदम चकाचक टन टना टन टन बहुत बहुत धन्यवाद। और उमीरा बुलतवन हमने से दो दिन के जिंदगी वाद जी रे भैया हंसी खुशी से काज नहीं काल कौन थी कि बा काल तक कोई नहीं दिख रहा बा कल हो ना हो। और बेशक यहाँ पर यहाँ से हमने तो लोग के साथ देखा थे भोजपुरी टर का प्रोग्राम है रात के 11 बजे ले और समय देखा थे सर हाली हाली जाता फिर कोई 9 बजे रहा अभी 10 बज के 35 हो गल बा बहुत जल्द समय जो है भगते जाता। हाँ तो स्वयं प्रभा आई गेट चली भौजी तोहर का थे तोहर घरोला रविराज तोहर बेटा प्रत्यक्ष

और सब बहादुर और बिचुक परिवार के नाम ठीक बा भौजी और भौजी बड़ा जोर नाचता भाई रवि के साथ तब प्रत्यक्ष बाबू के चाचू प्रताप की ओर से चाची रानी की ओर से हमार परी की ओर से हमार बेटी परी की ओर से प्रत्यक्ष के ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद ठीक बा और चला भी सुनब जाए गीत।

कैसे भाई ऐसा पनीर के तकादी पनीर उगाए में पनीर मसाला में और कौन सी बा कटहर की तकारी बा दाल भाज जागदों दाल कटहर में दाल दाल की जोड़ी से पका दिया पूरी पका दिया भैया आ हा हा मत लगे अगर दाल कटहर दाल दाल में कटहर पकी और कुनों की कुचा रही टेक सेवन हम है खा भैया के नहीं चल आप चित खाए के हमारे सब्जी हमारे फल हमारा आगे बस एकदम टॉप ऑफ द टॉप तो देख ची में पकाइए राजा चल एक साथ सुनब जाए गीतवा गैले हवन सुम्बावती धूमन और चल एक साथ गीतवा सुनब जा जितना कोई हमने की देखा था टिकटॉक पर जितना कोई रेडियो पर सुना था है गीत सब कोई के नाम

यो बाप को तई सब त्राका नहीं लिया भैया, वरना तोहर समय से आगे तोहर कपार के सब बार पक जाए। जैसे जाता जिंदगी ओके जाए जा चलता उसे धीरे धीरे हौले हौले रगड़ा गेत मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार हमर संगे। बहुत ही प्यारा सुन गाना गुरुदेव मन्ना जी के नाम, शशिका राम सहाय और गुरुदेव मन्ना जी। बोला तो अन कल तो हर जन्मदिन रवल पिंडी भाई बता पे। हाँ तो जन्मदिन रहा गुरुदेव मन्ना के, हैप्पी बर्थडे हे मना प्यार हे मना आशीर्वाद गुरुदेव मन्ना जी। और वास्तव भी हमके साथ होता है लॉन्ग चिबुक राजा प्रवीण भैरव स्टीव और जितना कोई हमके साथ होता है मीरात के है गीत और के नाम मार ताली मार। फिर इटली से हवन विशाल मंडप और बेटी और पत्नी और सब परिवार के नाम और बेशक दीपा तिवारी जो खेत कनाडा से हमने देखा तो वन जा लाइव टिकटॉक पर हाय दीपा। और है गीत चाहते यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बी ए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एम ए फ्रेंच ईयर वन एम ए फ्रेंच ईयर टू पी एच डी फ्रेंच पी एच डी इन फ्रेंच कोर्स में एनरोल सब स्टूडेंट्स वहाँ के प्रोफेसर अध्यापक लोग के नाम और जितना कोई स्कूल के कौंजे में स्कूल के छुट्टी में बाले कुल के कौंजे में हैप्पी स्कूल हॉलीडेज स्कूल के छुट्टी के भरपूर मजा ला एक महीना के कौंजे में डाल बा खूब गमत करिया। चले एक साथ सुनब जा गाओ जा नाचब जा मार ताली मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार हमर संगे।

थपरी बजाते रहिए, ताली मारते रहिए और उनके साथ देते रहिए रेडियो मॉशस रेडियो मनोरंजन पर। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम टन तना टन टन एकदम चकाचक कार्यक्रम चला था। अगला गीत जलसा लाल बा, जलसा बा धूम धड़ाका बा, नाच देसा गाव देसा झूमा देसा सब कोई संगे संगे साथ में। हमकी नाचत वन बबीता सुब्रन जी, हाय बबीता। फिर फ्रांसिस का भी, हेलो फ्रांसिस का, नमस्ते। और बेशक प्रभु जी हमके साथ वन, हेलो प्रभु। चल अभी जलसा करब सर, जलसा लाल बा, लाली लाल बा, जलसा बा तो ही जलसा में हम यू जलसा करब सर तो लोग संगे संगे। रात के 10:50 हुआ था, चल जलसा करते जाएला सर तो लोग नचते जाएला सर।

और शादी में तो खूब गमत होला जलसा होला और जब शादी होला तो सुख से लेके लेंदी रही है सुख के गीत गवाई होला सामदी के हरदी दिमाग के शादी लेंदी के चौथारी और जब दुल्हन जाला दूल्हा लगे तो ओकर संगे जाला लुकनी अब लोकनी का करे जा रहा दुल्हन संगे इतने लोकनी में जाने रहा पर लोकनी हाली से लोटे में चांद जा रहा जैसे दुल्हन जा रहा था दुल्हन के कराकुते में बैठ जा रहा और लोकनी चोरी से अब ये होला और लोकनी जा रहा दूल्हा लगे तो लोकनी वहाँ दूल्हा दुल्हन के स्वागत होला पर लोकनी के भी स्वागत होला अभी नहीं लोकनी जा रहा था दुल्हन के संगे हाँ पर लोकनी के छाँ लौटे के लोकनी हमेशा नहीं रही हूँ भाई दिमाग के जाला दुल्हन संगे दूल्हा लगे पर लेंदी के लोकनी अपन घर छिड़ावेला अब हमेशा लोकनी तो नहीं रही ना क्या बोला था वह अब लोकनी आके रही तो नहीं छबा गुरु छा अपन घरे जाए के क्या बोला था तू चलो अब मिलब जब दुल्हन के दादी से अब दुल्हन के दादी का बोला चले साथ सुनब जा और एक गीत वा जुन शोभा रामचरण फकीर गैलेवन दुल्हन के दादी तो आगे की पुरनिया जानने के सामान्य उन से ना बात बात पर तत्तर तत्तर तत्तर तत्तर करने जान से तब सुनब जा भी दुल्हन के दादी की कहानी

आगे तो बाद गुंतिन गीत और सुनाओ अब जा भोजपुरी के मधुरोशन सरा सिंह की आवाज में और उगनाली के हमने के जाए प्रोग्राम के अंत तक 11 बजे सुबह जा सुनहरी पल प्रोग्राम रात के 12 बजे नॉन स्टॉप फिर मित्राने कल फजीर के 5 बजे रे रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिला जा फोन कॉल्स और एसएमएस का धन्यवाद हमने के टिकटॉक पेज पर देख ला हमने के फॉलो कर ला सो स्वीट ऑफ यू हमने की तोरे की मुलाकात हो अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे ले एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर तब तक हमें की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते शुभ रात्रि

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। मैं हूँ आपकी प्यारी प्यारी दोस्त और अगले कुछ पलों तक हम मिलकर चलेंगे यादों के उस हसीन सफर पर, जहाँ हर गीत के साथ जुड़ी होती है एक खूबसूरत कहानी। शायद आज का कोई गाना आपको बचपन की शरारतों का या कॉलेज के दिनों का या किसी खास इंसान की याद दिला दे। तो बस आराम से आप बैठ जाइए और खो जाइए पुराने बॉलीवुड।

तो दोस्तों कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, हमेशा हम आपको ये एहसास दिलाते हैं। रेडियो मॉरिशस के इस खास शो में सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत जो आज भी दिल को सुकून देते हैं। कैसेट का जमाना, संडे की फिल्में और परिवार के साथ बिताए हुए लम्हे आज फिर से ताज़ा होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जिए अपने सुनहरे पल।

स्वागत तो हमने कर लिया है आप सभी लोगों का बड़े प्यार से इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों के जरिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी पुरानी यादों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं यादों को फिर से जीने वाले हैं। लता जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी जी और मुकेश दा के अमर गीत आपका इंतजार कर रहा है, तो दिल खोल कर इन

वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपको याद है वो दिन जब रेडियो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, जब एक गीत सुनते ही पुरानी यादें आंखों के सामने आ जाती थी। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वही एहसास और वही सुकून। तो चलिए दोस्त, वक्त की घड़ी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं और खो जाते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर में।

हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आप बड़े प्यार से बड़े शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे देखा जाए ये सिर्फ गानों का शो नहीं है बल्कि यादों का एक खूबसूरत सफर है। हर गीत के साथ जुड़ी है एक कहानी, एक मुस्कान और कई अनमोल लम्हे जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। शायद आज कोई गीत आपको अपनी पहली दोस्ती या पहला प्यार की याद दिला दे। तो बस यूं ही साथ देते रहे ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल किनिशा के साथ।

पुराने बॉलीवुड गीतों की मिठास और यादों की खुशबू लेकर हाजिर हैं सुनहरे पल में। वैसे आज मिलकर हम उन लम्हों को याद करेंगे जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर रेडियो सुना करते थे। तो आज की ये खूबसूरत सी रात को और भी खास बनाने के लिए तो चलिए अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो आराम से बैठे हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, या शायद अगर आप काम पे हो तो हम आपको विश करना चाहेंगे बॉन कुराज। और वैसे अगर गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइव केयरफुली और बस इस खूबसूरत नगमे आप खो जाइए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशातु से गुड बाय टू यू। आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के बहुत ही प्यारे से शो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और बस अपना ख्याल रखना जी।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: लड़की बनी

0: This is Radio Voices.
1: नमस्कार
2: श्रोतृंदी हृदयपूर्वक नमस्कार
3: वणक्कम
4: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशियस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस
0: रेडियो मॉरिशियस।